नदियां कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वे रास्ते में आने वाले चट्टानों के बीच में भी अपना रास्ता बना लेती है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, चलते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।

तो आइए इस नई सुबह से तीन बातें सीखें। फूलों से मुस्कुराना, दरिया से चलते रहना और सूरज से हर दिन नई शुरुआत करना। बीती रात चाहे जैसी रही हो, आज का दिन हमारे हाथ में है। उठिए, कदम बढ़ाइए और अपने आज को उम्मीद, मेहनत और मुस्कान से खूबसूरत बनाइए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। छोड़ के जा रही बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 सितंबर 2026, सुबह के 5:53 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब जानते हैं आज आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। छह बजकर दस मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का।

6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा गोल्ड सुप्रभात का। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी।

सुबह 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम तस्वीर। दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम घर आंगन का।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। 2:30 का समय रहेगा प्रोग्राम संगीत.com का। 3:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मन भावन।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हर श्रृंगार का और रात्रि 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल

0: शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the 2-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive 2-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium Bart De Wever will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a 3-day visit to India. Prime Minister De Wever is accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a confederation.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं बहुत ही प्यारे से भजनों के साथ। मिलकर कहते हैं जय श्री राम।

अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हार रहे हैं, तो उम्मीद बनाए रखें। जानते हैं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है वो ताला खोल देती है। इसीलिए उम्मीद बनाए रखें और कोशिश करते रहें।

जीवन हमारा बहुत ही अनमोल है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। अगर इंतजार कर रहे हैं कि जब तूफान या बरसात चली जाएगी तो जीवन का आनंद ले पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। जीवन को जीना है तो बरसात में भी भीगने की आदत डालनी होगी, तभी जीवन का सार आपको पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर चाहते हैं जिंदगी में हर एक पल जो है सुकून भरा हो, खुशियों भरा हो, तो आपको परेशानियों का सामना करके उन्हें समझना होगा, तभी आप असली जिंदगी को, असली जीवन को, या फिर ये कहा जाए कि असलियत में जीवन के सार को समझ पाएंगे।

अवसर जो है वो सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। इसीलिए जब आपको मौका मिले तो कोशिश करिए कि आप उस मौके का लाभ तुरंत उठाएं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

संबंध हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसे, एक जो कुछ मांगता नहीं और एक जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपका साथ दे रही हूं मैं सुरती।

मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और संस्कार हैं। धन और बल जो है वो एक वक्त के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जानते हैं अच्छे विचार और संस्कार जिसके पास हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान है।

समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, ये सदा साथ नहीं देते, लेकिन जानते हैं स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है अब श्री रामचरितमानस का, तो आइए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर श्री रामचरितमानस का अगला भाग अब।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की कल अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृपया से फिर से सुन लें, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Belgium Bert De Wever will hold bilateral talks in New Delhi today. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations, as well as the regional and global issues of mutual interest. The Belgian Prime Minister arrived in the national capital last night on a three-day visit to India. Prime Minister De Wever has been accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Franken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will also deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. We have more from a correspondent.
3: India and Belgium share historical ties spanning over three centuries. Belgium was among the first European countries to establish diplomatic relations with independent India in September 1947. Belgium is an important economic partner for India in Europe. Bilateral trade reached over $13 billion in 2025-26. Diamond trade, with Antwerp as a major global diamond hub, remains a significant component of bilateral commerce. Belgium is also an important source of investment in India. FDI inflows from Belgium amounted to approximately $4.2 billion between April 2000 and December 2025. Science, technology, and innovation cooperation is an important pillar of the partnership, and India and Belgium have developed cooperation in renewable energy, clean technologies, and sustainability. Defense cooperation is also emerging as an important new dimension of the partnership, reflecting the diversification of bilateral ties into strategic and security-related areas. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers

सुबह की पहली किरण के साथ दिन की नई शुरुआत हो, हर लम्हा आपके लिए बहुत खास हो, यही मेरी दिल की बात है आपके लिए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात, और आज गोल्ड सुप्रभात में आपके साथ हूं मैं सुरति। आइए इसी के साथ प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से गानों के साथ, फिर करेंगे ना ढेर सारी बातें।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदार दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम
1: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2020.

0: 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रोग्राम है गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरदी के साथ. आजकल हम अलग अलग तरह के मौसम जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसके अंदर गर्मी भी है, हल्की सी ठंडक भी है, बारिश की फुहार भी है. यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए सुबह से लेकर रात तक टेम्परेचर में काफी बदलाव देखने को मिलता है. ऐसे में अगर हम बात करें आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है, अधिकतम न्यूनतम तापमान क्या रहेगा, तो मौसम विभाग कहता है कि भाई आज भी जो है मौसम कुछ मिला जुला रहेगा, यानी कि धूप भी होगी और बारिश के भी आसार हैं. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: फोर्टी के पार अगर आपकी एज हो गई है ना तो कुछ भी जादुई उपाय काम नहीं करेंगे. बस आपको अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जैसे कि नाश्ते में पर्याप्त प्रोटीन, रोजाना शरीर को एक्टिव रखने के लिए वॉक या एक्सरसाइज, अच्छी नींद लेना, तनाव को कम करना और इसके अलावा अपने रूटीन को परफेक्ट बनाना. छोटी छोटी आदतों में यदि आप बदलाव करते हैं, अपने डेली रूटीन को यदि चेंज करते हैं खुद को एक्टिव रखने के लिए, तो यकीन मानिए ये आने वाले टाइम में आफ्टर 40 आपको बहुत हेल्प करेगा.

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझ दिम सही हा, हा। इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम।

0: गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का वक्त हो गया है। ठीक 8:45 पर म्यूजिकल दिलगी में करूंगी ढेर सारी बातें।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे। आज के संग के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: गुड मॉर्निंग देवेंद्र एंड टू आवर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी वेलकम यू अलोंग, दिस इज आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा एंड देवेंद्र। वेल यस, वेदर यू आर पैकिंग लंचेस फॉर द किड्स, फॉर द मदर्स स्पेशली आई एम सेइंग दैट, एंड वेदर यू आर सिपिंग योर फर्स्ट कप ऑफ कॉफी और टी, well, this is the time that we are going to give you the latest national, international news, also Metro City updates. So much information, and in this half an hour program, historical information also. Today it's 3rd of September. Well, most of the year has passed already. So, focus on your goals, listeners. This is the best time to do that. Mm-hmm. With that, should we begin with the headlines?
0: Jee.
1: Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Belgian Prime Minister Bart De Wever in New Delhi today. The two leaders are expected to take a close look at the entire range of India-Belgium relations along with important regional and global issues. Belgian Prime Minister Bart De Wever arrived in India last night for a three-day visit. This is his first visit to India since becoming Prime Minister in February last year. During his visit, he will also address a Confederation of Indian Industry event focusing on the India-EU Free Trade Agreement. The visit is expected to give a fresh push to cooperation between India and Belgium in areas such as trade, investment, defence, security and renewable energy.
0: कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की सहयोग की खबर के बाद अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जो साहसिक खेलों की दुनिया में अपनी सीमाओं को चुनौती देने वाले भारतीयों की उपलब्धियों का जश्न मनाती है। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पुरस्कार चार श्रेणियों भूमि, जल, वायु और लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिए जाते हैं। इस साल लैंड एडवेंचर श्रेणी में बलजीत कौर और स्काल जांग रिगजिन को चुना गया है। वाटर एडवेंचर में रीमो साहा को सम्मान मिलेगा, वहीं शिव प्रसाद चमोली को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15,00,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ प्रदान करेंगी। समारोह की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
1: Okay, and from the heights of adventure, we now look towards the skies for another important development, of this time involving India's space program. India is preparing for another important space mission. ISRO chairman Veera Narayanan has said that the EOS-05 Earth Observation Satellite will be launched tomorrow, EOS. The satellite is scheduled to lift off at 2:55 a.m. aboard the GSLV-F-17 rocket from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. EOS-05 will be India's first imaging satellite to be placed in geosynchronous orbit. The mission is expected to strengthen India's Earth observation capabilities and thereby improve services based on satellite imagery. How great!
0: जी, अंतरिक्ष शक्ति जहां ऊपर से हमारी धरती पर नजर रखती है, वहीं स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। हमें सतर्क और अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और इसी सिलसिले में रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य पहल की ओर। उत्तर प्रदेश में आज से एक विशेष HPV टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव को बढ़ावा देना है। यह अभियान 17 सितंबर तक चलेगा और राज्य के सभी 75 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु वाली करीब 10 लाख लड़कियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने पात्र लड़कियों और उनके माता पिता से अभियान में शामिल होने की अपील की है। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।
1: राइट, HPV वैक्सीन इज इम्पेरेटिव नाउडेज।
0: जी,
1: and from protecting the health of the next generation, the coming generation, we will now transition to cultural news that takes us through the streets of Tokyo across nearly a century of change. Well, a fascinating photographic journey through Tokyo has opened in New Delhi. Listeners, you have to listen intently now. Culture Secretary Vivek Agarwal inaugurated the exhibition. This exhibition is titled Tokyo Before After, A Photographic Journey Through Time. This is the name of the exhibition, and Vivek Agarwal inaugurated it yesterday. And this is organized by the National Gallery of Modern Art and the Japan Foundation, and it opens to the public today. and will continue till the 19th of this month. Visitors can see photographs of Tokyo from 1930s to 1940s alongside images taken after 2010. And this exhibition offers a visual look at how Tokyo has transformed over the decades, while also showing glimpses of the city's enduring character. So if you have got the time, and you can take out necessary time, and if you can spare some time, listeners, you can visit there.
0: जी, तो तस्वीरों में इतिहास देखिए, लेकिन तेलंगाना में इतिहास को पत्थरों और वास्तुकला के जरिए भी संजोकर रखा जा रहा है. इसी ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी हमारी अगली खबर है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने तेलंगाना के पालमपेट स्थित गोलाल गुड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है. ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल रामप्पा मंदिर के पास स्थित है और अपनी खूबसूरत नक्काशी और विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है. ये एक त्रिकुटालय मंदिर है जिसमें तीन गर्भगृह हैं और पूर्व दिशा की ओर बना मंडप इसकी खास विशेषता है. राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित होने के बाद अब ASI प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसका संरक्षण और रखरखाव करेगा.
1: प्रिजर्वेशन, दैट्स द गुड आइडिया.
0: एंड
1: फ्रॉम प्रिजर्विंग आवर रिच हेरिटेज, let's now turn to a decision that looks towards the future. So in Arunachal Pradesh, the retired Agniveers will now get 20% reservation in recruitment to several state services. The reservation will cover posts in police, armed police battalions and fire and emergency services, forest guards, mineral guards as well, special tiger protection force and prison wardens. State Home Minister Mama Nathung said the Agniveers can bring their discipline, training and experience into the public service, and this move is expected to provide new career opportunities to Agniveers after their military service. Devendra.
0: जी, ये अच्छी खबर अग्निवीरों के लिए, क्योंकि इससे अग्निवीरों के लिए एक नई राह खुली है. और अब लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी सुविधा शुरू हुई है. चलते हैं कारगिल, जहां पासपोर्ट सेवाएं अब लोगों के और करीब पहुंच

0: गई हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में कारगिल में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी POPSK का उद्घाटन किया। ये केंद्र स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। पहले कारगिल और आसपास के लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए लेह या श्रीनगर जाना पड़ता था। इससे अतिरिक्त समय यात्रा और खर्च का बोझ बढ़ता था। अब नया केंद्र छात्रों, मरीजों, तीर्थयात्रियों, पेशेवरों, उद्यमियों और विदेश यात्रा करने वाले अन्य लोगों के लिए पासपोर्ट सेवाओं को ज्यादा आसान और सुलभ बनाएगा। ये केंद्र विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने मिलकर स्थापित किया है, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में जरूरी सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि लद्दाख में करीब 34 सरकारी विभाग अब ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं।
1: Well, greater ease now.
0: जी।
1: And finally, we are now entering the sporting arena. Where Team India is ready for another important challenge in the Women's T20 Asia Cup. India will take on Hong Kong in their second Group A match at Dubai International Stadium today, and the match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue made a strong start to their campaign, defeating Thailand by a convincing 94 runs win in Dubai on Sunday. And a win against Hong Kong would put the Harmanpreet Kaur-led Indian side in a strong position to secure a place in the semi-finals of the 8-team tournament. So cricket fans, keep an eye on the score. Team India will be looking to make it 2 wins in a row.
0: तो ये रही देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जो आपके साथ जिनका सरोकार है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं महानगरों से जुड़ी कुछ खबरें, क्या खबरें हैं आपके पास चेन्नई और बेंगलुरु से। सगुन,
1: सो देवेंद्र, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई, द फर्स्ट अपडेट।
0: जी,
1: द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज वॉर्न्ड पीपल अगेंस्ट इलीगली कीपिंग एग्जॉटिक पेस्ट्स सच एज मकॉ, पैराकीट्स, लेमर एंड अदर प्राइमेट्स एज वेल, सम अदर प्राइमेट्स। The government said that the owners must register these animals, these exotic animals, on the Union Government's Parivesh 2.0 portal. So existing owners have 6 months to register, while the new buyers must register within 1 month. Another update from Chennai. The Madras High Court has directed the police to register criminal cases against TASMAC retail outlets across the state if complaints are received about not issuing liquor bills. The Home Secretary has also been asked to provide police protection at these specific TASMAC shops to manage the crowds and to maintain queues and ensure public order. These were the two updates from Chennai. Now we are heading now to Bengaluru.
0: Ji.
1: The Karnataka State Handicrafts Development Corporation is upgrading its Kaveri Handicrafts online portal to increase sales in India and abroad. And this new portal, it is expected to launch during the upcoming Ganesh festival, Ganesh Utsav, and aims to raise annual online sales from 70 lakh rupees to 5 crore rupees in 3 years' time. Customers, they will be able to customize products based on size, design, color, material, engraving and packaging. This was about the Karnataka State Handicrafts Development Corporation upgrading Kaveri Handicrafts online portal. Another update, Maharashtra-based Carver Aviation is interested in setting up a flying training academy at Vijayapura Airport in Karnataka. The company has sought 2.5 acres of land for training facilities, hangars and aircraft maintenance, and the academy is expected to provide pilot training, MRO services and jobs in North Karnataka. Devendra, now over to you for updates from Delhi, Mumbai, Kolkata.
0: जी, पहले दिल्ली की खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। इस बिल का उद्देश्य राजधानी में कारोबार करने को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है। बिल के अंतर्गत कारोबार से जुड़ी मंजूरियों, पंजीकरण, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सिंगल विंडो ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। इससे नए निवेश को आकर्षित करने और बड़े स्तर पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने शगुन, विशेष तौर पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाली शोभा यात्राओं को देखते हुए लोगों से अपना समय एडवांस में लेकर चलने की अपील की है ताकि किसी भी तरह की उनको असुविधा न हो और दिल्ली पुलिस को, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने का भी आह्वान किया है। और राजघाट स्थित महात्मा

0: गांधी स्मृति स्थल पर होने वाले एक कार्यक्रम के कारण राजघाट और आसपास के क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था आज लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कल दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ नालों के रख रखाव के लिए समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि नालों की सफाई और रख रखाव में अब कोई बहाना या जिम्मेदारी को टालना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्राधिकार और आपसी समन्वय की समस्या के बीच नालों का रख रखाव नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हर एजेंसी को स्पष्ट जिम्मेदारी लेकर तय समय सीमा में काम पूरा करना होगा और लापरवाही हुई तो जवाबदेही तय की जाएगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत अगस्त महीने में 159 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया है। इनमें 27 बच्चे और 132 वयस्क शामिल थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बस और रेलवे स्टेशनों की जांच, स्थानीय पूछताछ और मुखबिरों की मदद से इनका पता लगाया। पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 1149 लापता बच्चों और लोगों को उनके परिवारों को सुरक्षित सौंपा है। ये बड़ी खबर और इसे कई परिवारों को बड़ी राहत मिलती है।
1: फाइनली यस
0: जी, चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानमंडल की महिला एवं बाल मामलों की समिति ने कल मुंबई में कई सरकारी और सामाजिक संस्थानों का दौरा किया। समिति ने आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी सुविधाओं की समीक्षा की। समिति ने बच्चों और लड़कियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी समझा। अधिकारियों ने बताया कि अनाथ प्रमाण पत्र शीघ्रता से उपलब्ध कराने और 18 वर्ष की आयु के बाद लड़कियों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्यभर के विद्यालयों में सुधार लाने के लिए चला शालेट जया अभियान शुरू करेगा। स्वच्छता, पेयजल, बुनियादी ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी विद्यालयों का दौरा करेंगे, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मिलेंगे और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित भी किया जाएगा। और महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने एक अच्छी पहल की है, जहां स्कूलों में कक्षा 7 से 10 तक के विद्यार्थियों और कॉलेजों में युवा पर्यटन क्लब स्थापित किया जाएगा। विद्यार्थी युवा पर्यटन राजदूत बनकर महाराष्ट्र के पर्यटन, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देंगे। ये कार्यक्रम नेतृत्व, टीम वर्क और सामुदायिक सेवा कौशल विकसित करने के साथ साथ जिम्मेदार और सतत पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल, शुरुआत में एक बार स्वभाव आपका बनेगा तो आप निश्चित तौर पर वो अपने बड़ी बढ़ती उम्र में भी इस तरह के काम करते रहेंगे, जो समाज के लिए हमारा दायित्व है।
1: एग्जैक्टली, इट एड्स अप टू योर पर्सनालिटी एज वेल, अ ट्रेट एक्चुअली।
0: जी, चलते हैं कोलकाता, जहां अमरीकी महावाणिज्य दूत कैथरीन गाइल्स डियाज ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री शंकर घोष से मुलाकात की। उन्होंने अमरीकी पर्यटकों की सुरक्षा, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। बैठक में पश्चिम बंगाल के आधिकारिक पर्यटन ऐप और सरकार द्वारा अनुमोदित होटलों, होम स्टे, ट्रेवल एजेंटों और परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी अपने श्रोताओं को बताते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल। आज यहां पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने, बीच में धूप भी रहने की संभावना है, हल्की बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और कोलकाता में सुबह आसमान साफ रहेगा लेकिन बादल धीरे धीरे छाएंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है।
1: सो देवेंद्र, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन एंड द टेम्परेचर विल रेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस।
0: जी,
1: Bengaluru is expected to have again generally cloudy sky with light rain. The temperatures will be ranging from 21 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The temperature will range from 24 degrees Celsius to 34 degrees Celsius in Hyderabad. These were our weather updates, Metro City weather updates.
0: Ji, aur ab palatte hain itihas ke pannon ko aur jante hain 3 September ki kuch mahatvapurna घटनाओं के बारे में।
1: सो लेट्स ट्रैवल वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1783, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन ऑफिशियली साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग अमेरिकन सॉवरेंटी एंड एस्टैब्लिशिंग पीस बिटवीन द नेशंस।
0: जी, और 1875 में ब्रिटिश द्वारा पेश किए जाने के बाद पोलो का पहला आधिकारिक खेल अर्जेंटीना में खेला

0: on the left side of the road to driving on the right side, and this is known as Dagan H.
1: जी, 1971 में कतर ने 55 वर्षों के ब्रिटिश प्रशासनिक संरक्षण के बाद आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा की थी।
0: In 1976, NASA's robotic planetary lander Viking 2 touched down safely on Mars at Utopia Planitia. This is a massive impact plane in the northern hemisphere of Mars and the largest recognized impact basin in the entire solar system, and this transmitted valuable atmospheric data and high resolution color photographs of the Martian surface.
1: जी, और अब हम याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। हम स्मरण कर रहे हैं शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे पुरोधा को जो उस वाद्य के पर्याय बन गए जिस पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वो महान संगीतज्ञ हैं, तबले की थाप से सभी को मंत्रमुग्ध करने वाले देश के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित कृष्ण महाराज। काशी में 3 सितंबर 1923 को एक संगीतज्ञ परिवार में कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम किशन पड़ा। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के वादक थे। तबले के जादूगर होने के साथ पंडित किशन महाराज मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष तथा विद्वान भी थे। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में पिता पंडित हरि महाराज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पाई। उनके तबला वादन में ठेके में एक भराव था और दाएं तथा बाएं तबले का संवाद श्रोताओं और दर्शकों को भाव विभोर कर देता था। बैकग्राउंड में आप उन्हीं का तबला वादन सुन रहे हैं। पंडित जी ने कई फिल्मों को अपने संगीत से समृद्ध किया।

0: और अगर पुरस्कार की बात करें तो पंडित किशन महाराज को कई पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिनमें लय भास्कर, संगीत सम्राट, काशी सुरगंगा सम्मान और संगीत नाटक अकादमी प्रमुख है। 1973 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
1: Let us tell you about another musician, Walter Carl Becker. Musician, songwriter and record producer, he was the co-founder, guitarist, bassist and co-songwriter of the jazz rock band Steely Dan. We have picked up the song which goes by the name Down in the Bottom by Steely Dan, Down in the Bottom.

हिंदी और बांग्ला फिल्मों के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार की भी आज जयंती है। उनका वास्तविक नाम था अरुण कुमार चटर्जी। अभिनेता उत्तम कुमार की बतौर नायक पहली फिल्म दृष्टिदान थी। उत्तम कुमार ने फिल्म निर्देशक, निर्माता, गायक और संगीतकार के रूप में भी सिनेमा को अपनी सीमाएं दी। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार को महानायक कहा जाता है। उत्तम कुमार की प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें हिंदी फिल्मों की, तो छोटी सी मुलाकात, अमानुष, आनंद आश्रम, किताब, दूरियां जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इसमें पहले सुनते हैं आनंद आश्रम फिल्म का ये गाना।

0: And his achievements and accolades include 5 national awards and 4 Filmfare awards as well.
1: जी. और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में प्यारेलाल जी का भी आज जन्मदिन है. हमारी तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से, उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.

उनका वास्तविक नाम था, पूरा नाम था ये कहें, प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट वादक थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखें। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए और लता जी को प्यारेलाल का वायलिन वादन इतना पसंद आया कि उन्होंने प्यारेलाल को उस समय 500 रुपए दिए थे। उस समय वो बड़ा पैसा हुआ करता था जी। और वायलिन के साधक प्यारेलाल को मुंबई स्थित रंजीत स्टूडियो में बाद में ऑर्केस्ट्रा में काम करने का अवसर मिला और कुछ समय बाद उनकी मुलाकात हुई लक्ष्मीकांत से। और दो प्रतिभाएं जब एक हुई तो हिंदी सिनेमा को बेहतरीन संगीत की सौगात मिली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।

0: Well, Pyarelal has done some work independently as well, and he always used the name Lakshmikant Pyarelal for all his future composition after Lakshmikant's passing. So when playback singer Kumar Sanu turned music director, he approached Pyarelal to arrange music, and recently, not that recently, but Pyarelal was approached to assist in the music for Om Shanti Om, the song Dhoom Dana.
1: Ji. और भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार किरण देसाई भी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. उन्हें वर्ष 2006 में उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. 3 सितंबर 1971 को दिल्ली में जन्मी किरण देसाई का पहला उपन्यास हुल्ला बालू इन द गोवा आर्चर्ड 1998 में प्रकाशित हुआ, जिसने इन्हें लोकप्रियता और प्रशंसा दिलाई. 35 साल से कम उम्र में राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों में इस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए बेटी ट्रास्क अवार्ड जीतने वाली वो पहली लेखिका बनी.
0: Well, yes, and she won the National Book Critics Circle Award for Fiction in 2006 as well.
1: जी.
0: Today, listeners, we're also remembering Henry Thompson, the country music singer, songwriter, and musician. Well, yes, his career spanned 7 decades. The song which we chose, it goes by the name Rubber Dub Dub. Once

0: Listeners, today we're also remembering Alan Wilson. Well, the musician, co-founder, leader, co-lead singer and primary composer of the blues rock band Canned Heat.
1: खेल जगत में भारत का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक का भी आज जन्मदिन है। 3 सितंबर 1992 को हरियाणा में रोहतक में जन्मी साक्षी ने महज 12 साल की उम्र से कुश्ती की शुरुआत की। साक्षी देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी। और साक्षी मलिक ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला कुश्ती का कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। 2014 की विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और साक्षी मलिक जैसे तमाम खिलाड़ी हमारे देश के युवाओं की इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं।

0: तो श्रोताओं, इन तमाम जानकारियों और बातों और संगीतों के साथ अब हम चाहेंगे आपसे विदा। न्यूज मैगजीन आज सवेरे यहीं संपन्न करने के लिए, लेकिन आप लगातार आकाशवाणी के साथ बने रहिए। और ये प्रोग्राम अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
4: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। यह यात्रा भारत और बेल्जियम के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतर गति को दर्शाती है। साथ

0: यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
7: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना आकाशवाणी।

0: समाचार मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्यभर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
3: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा

0: की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है। इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। Prime Minister Modi to hold talks with his Belgian counterpart Bart de Wever in New Delhi today. ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials, and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance, with water sector data brought together systematically managed, analyzed and effectively utilized. He recommended the use of AI for data collection and analysis through a uniform format. He also stressed anticipatory and integrated planning to address water scarcity through suitable utilization of treated water for agriculture and industrial purposes. With Suparna Saikia,

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने और आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकाकार से सीखने पर जोर दिया। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमनसब बार्ट दे वेवर के साथ बातचीत करेंगे। इसरो कल श्रीहरिकोटा से अर्जियाती मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-05 खला में भेजेगा। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर A- कर दिया है और इसके लिए मुस्तहकम आउटलुक बरकरार रखा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI तहकीकात का हुक्म दिया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत आज शाम दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबादी में इजाफे और मुस्तकबिल में पानी की जरूरियात समेत शहरकारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के बारे में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों को हसास और बाखबर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए भी इसी तरह के चिंतन शिविर मुनक्किद करने की तजवीज दी। जनाब मोदी ने कल जल शक्ति की वजारत के जेर एहतमाम पानी के मौजू पर मुनक्किदा दो रोजा कौमी महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन की सदारत की। उन्होंने पानी की बचत करने वाली टेक्नोलॉजीज को ज्यादा से ज्यादा अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने आलमी सतह पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तौर तरीकों से आगाही फराहम करने के लिए खसूसी नुमाइशों और वर्कशॉप्स के इनेकाद की भी तजवीज पेश की ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और शराकतदार पानी के मुअसर इस्तेमाल के लिए बेहतर हल तैयार करके उन्हें बड़े पैमाने पर नाफिज कर सकें। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि इजलास से सामने आने वाले काबिल अमल और मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने वाले निकात पर मुसलसल जायजे और सीखने के अमल के जरिए अमल दरामद किया जाना चाहिए। दो रोजा तफसीली बातचीत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास सिर्फ एक मरतबा की सरगर्मी बनकर न रह जाए बल्कि इसके फैसलों और इकदामात का मुसलसल जायजा लिया जाना चाहिए और इन पर बाकायदगी से अमल दरामद की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाना चाहिए। जन भागीदारी की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने लोगों में पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के लिए जल उत्सव को फरोग देने की तजवीज दी। डैमों की हिफाजत के बारे में जनाब मोदी ने हर मानसून से पहले सख्त तैयारी मुकर्रा एहतियाती तदाबीर पर अमल और स्कूल के तलबा में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मकसद को मुनासिब तौर पर तालीमी निजाम

0: भी शामिल किया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने मजबूत आर्मी डेटा गवर्नेंस पर भी जोर दिया, जिसके तहत आर्मी शोबे से मुताल्लिक तमाम आदादोशुमार को एक जगह जमा किया जाए, मुनज्जम तरीके से महफूज किया जाए, उनका तजिया किया जाए और मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने यकसां फॉर्मेट के जरिए डेटा जमा करने और इसके तजिये के लिए एआई के इस्तेमाल की सिफारिश की। उन्होंने पानी की किल्लत से निपटने के लिए पेशगी और मरबूत मनसूबाबंदी पर भी जोर दिया, जिसके तहत साफ किए गए पानी को ज़राअत और सनअती मकासद की खातिर मुनासिब तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नई दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म बार्ट दे वेवर आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म कल रात भारत के 3 रोजा दौरे पर राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म दे वेवर के हमराह बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकिन भी हैं। पिछले साल फरवरी में वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। मुअज्जज मेहमान कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के एक कारोबारी प्रोग्राम से भी कलीदी खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम भारत यूरोप यूनियन आजाद तजारती मुआहिदे के तनाजुर में मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि उनका ये दौरा भारत और बेल्जियम की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और तजारत व सरमायाकारी दिफा व सलामती और काबिल तश्दीद तवानाई समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को वसअत देने का मौका फराहम करेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: भारत और बेल्जियम के दरमियान 3 सदियों पर मुहित तारीखी ताल्लुकात हैं। बेल्जियम उन अव्वलीन यूरोपीय मुल्कों में शामिल है जिसने सितंबर 1947 में आजाद भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार है। 2025-26 में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तजारत 13 अरब डॉलर से तजावज कर गई। हीरों की तजारत दोनों ममालिक की बाहमी तजारत का एक अहम हिस्सा है। बेल्जियम भारत में सरमायाकारी का भी एक अहम जरिया है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के दरमियान बेल्जियम से भारत में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI तकरीबन 4.2 अरब डॉलर रही। साइंस टेक्नोलॉजी और इख्तरा में ताउन दोनों ममालिक की शराकत दारी का एक अहम सतून है। भारत और बेल्जियम ने काबिल तजदीद तवानाई माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और पायदारी के शोबों में ताउन को फरोग दिया है। दिफाही ताउन भी दोनों मुल्कों की शराकत दारी का एक अहम पहलू बनकर उभर रहा है, जो दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और सलामती से मुतालिक शोबों तक उसत देने की अक्कासी करता है। भारत नजाद अफराद दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम वसीले की हैसियत रखते हैं। बेल्जियम में तकरीबन 35,000 भारत नजाद अफराद मुकीम हैं, जो इस मुल्क की इक्तिसादी समाजी और सकाफती जिंदगी में नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बार।
1: इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि जमीन का मुशाहिदा करने वाले सैटेलाइट EOS-05 को कल खला में रवाना किया जाएगा। ये सैटेलाइट GSLV-F17 रॉकेट के जरिए कल रात 2:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया जाएगा। जनाब नारायणन ने कहा कि EOS-05 एक जदीद तरीन अर्थ ऑब्जर्वेशन खलाई जहाज है और ये भारत का पहला इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे जियो सिंक्रोनस मदार में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन से भारत के जमीन से मुतालिक मुशाहिदे की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा और अर्थ ऑब्जर्वेशन खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। इसरो के चेयरपर्सन ने यह बात कल तिरुमला में वाक़े श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले जनाब नारायणन ने GSLV-F17 रॉकेट के मॉडल को भगवान वेंकटेश्वर के कदमों में रखा। उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जापान की कर्जे की दर्जाबंदी करने से मुतालिक एजेंसी JCR ने भारत की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी और मकामी करेंसी जारी करने से मुतालिक दर्जाबंदी को एक दर्जा बढ़ाकर BBA+ से A- कर दिया है। JCR ने भारत की कंट्री सीलिंग को भी एक दर्जा बढ़ाकर A कर दिया है। वजारत खजाना ने कहा कि दर्जाबंदी बढ़ाए जाने से भारत की मजबूत मुआशी तरक्की की बुनियाद को मजबूत करने से मुतालिक मुआशी पॉलिसियों की इफादियत और मुआशी निजाम की बेहतर हालत की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ درجہ بندی سے متعلق یہ اضافہ چیلنجنگ عالمی صورتحال کے تناظر میں پیش آیا ہے اور اس سے پائیدار ترقی، موثر معاشی پالیسیوں، بہتر معاشی معیار اور ایک مضبوط تر معاشی نظام کے ذریعے

0: भारत की मुसलसल मजबूत होती मुआशी बुनियाद की अक्कासी होती है। एक बयान में जेसीआर ने कहा कि भारतीय मईशत ने बढ़ती निजी खपत और अवामी सरमायाकारी के जरिए ऊंची शरह तरक्की को कायम रखा है। एजेंसी ने यह भी उजागर किया कि भारतीय हुकूमत ने डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और अशिया और खिदमत टैक्स के नफाज समेत मुसलसल पॉलिसियां नाफिज की हैं जिनसे भारत की मुआशी बुनियाद मजबूत हुई है। जेसीआर ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत का मुआशी खसारा मुआशी साल 2025 में 4.7% से कम होकर मुआशी साल 2026 में 4.4% रहा। आकाशवाणी न्यूज से जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की साबिक मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मुजाफाती इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हो गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिशा सालियान मौत के मामले में जस्टिस सारंग वी कोतवाल और जस्टिस रंजीत सिन्हा आर भोंसले पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कल उनके वालिद सतीश सालियान की तरफ से दाखिल करदा शिकायत की बुनियाद पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी। अदालत ने मजीद वाजे किया कि एफआईआर दर्ज करने की हिदायत का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। बेंच ने कहा कि किसी भी शख्स को उस वक्त तक मुलजिम नहीं समझा जाएगा जब तक तफ्तीशी अफसर की राय में तफ्तीश के दौरान जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ माकूल शुबा पैदा करने के लिए काफी वजूहात मौजूद न हों। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: उत्तर प्रदेश में आज से इस माह की 17 तारीख तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक खसूसी एचपीवी टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ये मुहिम रियासत के तमाम 75 अजला में मुनक़िद की जाएगी। 14 साल की उम्र के ग्रुप में शामिल तकरीबन 10 लाख अहल नौ उम्र लड़कियों को इस मुहिम के तहत एचपीवी वैक्सीन लगाने का निशाना रखा गया है। लखनऊ के आला मेडिकल ऑफिसर डॉ एनबी सिंह ने अहल लड़कियों और उनके वालिदैन से अपील की है कि वो आगे आएं और मुहिम के दौरान वैक्सीन लगवाएं। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एक अहम हिफाजती इकदाम है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1250 हो गई है। इमदादी कारकुन बारिश और मलबे का मुकाबला करते हुए उन अफराद को तलाश कर रहे हैं जिनके बारे में ख्याल है कि वो भोटेकोशी दरिया के रास्ते में मौजूद सुरंगों और नेपाल में जेर जमीन बिजली घरों में फंसे हुए हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा कि आलमी बिरादरी के सामने इस कुदरती आफत के आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक को भरपूर अंदाज में उठाया जाना चाहिए। इस दौरान पिछले हफ्ते आने वाले सैलाब के बाद लापता मकामी अफराद के अहले खाना ने अलामती तौर पर उनकी आखिरी रसूम अदा की। लापता अफराद में 583 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी अहलकारों जिनमें नेपाल की फौज भी शामिल है कि मुश्तरका फोर्सेस ने अब तक हेलीकॉप्टरों और जमीनी रास्तों के जरिए 11,993 अफराद को बचाया है। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के लिए तकरीबन 21,314 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। दूसरी जानिब चीन की जानिब नेपाल की सरहद के करीब तिब्बत के गिरोंग काउंटी में आने वाले सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है जबकि 541 अफराद अब भी लापता हैं। शिमाली ओडिशा में सैलाब का नया खतरा पैदा हो गया है क्योंकि बालासोर जिले में सुबर्ण रेखा नदी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राजघाट के मकाम पर दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। झारखंड में वाकई गलुडीह बैराज से पानी छोड़े जाने के बायस नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया है। महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बाज अजला में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। आज मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। जबलपुर रीवा शहडोल और सागर में बारिश हो सकती है। भोपाल ग्वालियर चंबल और नर्मदापुरम डिवीजन के बाज इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा मंडला में मुसलसल बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। ख्वातीन के क्रिकेट में आज यूएई में दुबई बैनुल अक्वामी स्टेडियम में 2020 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप ए के दूसरे मैच में हांगकांग का सामना करेगी। मस्कुरा मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इतवार के रोज खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड के खिलाफ 94 रन की बड़ी जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया था। अगर भारतीय टीम हांगकांग के खिलाफ आज मैच में जीत हासिल करती है तो वो 8 टीमों पर मुश्तमिल मौजूदा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
0: شکریہ نیتکا. دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں سیشلز کے پارلیمانی وفد کے ساتھ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی بات چیت کو نمایاں کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور سیشلز کے تعلقات سفارتکاری کی روایتی سرحدوں سے بالا تر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی رشتے ہیں. اسی اخبار کی ایک اور اہم خبر ہے, ایکو ٹوریزم کے موقع پر منعقدہ افتتاحی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ شیروں کے تحفظ کو مقامی برادریوں کے روزگار اور پائیدار سماجی اقتصادی ترقی سے جوڑا جانا چاہیے. برکس اجلاس کے حوالے سے روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے, برکس اجلاس کی تیاریاں تیز, دلی میں کاروں کے قافلے کی ریہرسل. یہ اجلاس بھارت منڈپم میں 11-13 ستمبر کو ہوگا.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے پانی کی بچت کرنے والی ٹیکنالوجیز کو زیادہ سے زیادہ اپنانے اور عالمی سطح پر اپنائے جانے والے بہترین طریقہ کار سے سیکھنے پر زور دیا. وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں بیلجیم کے اپنے ہم منصب بارٹ دے ویور کے ساتھ بات چیت کریں گے. اسرو کل سری ہری کوٹا سے ارضیاتی مشاہداتی سیٹلائٹ EOS-05 خلا میں بھیجے گا. جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سوورن کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھا کر A- کر دیا ہے اور اس کے لیے مستحکم آؤٹ لک برقرار رکھا ہے. بامبے ہائی کورٹ نے آجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی سابق مینیجر دشا سالیان کی موت کی CBI تحقیقات کا حکم دیا ہے. اور خواتین کرکٹ میں بھارت آج شام دبئی میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کا سامنا کرے گا. اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है आपके अपने प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी का, जिसमें आज आपके साथ हूं मैं सुरति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर बहुत लोग एक्साइटेड हैं और ऐसे में काफी सारे श्रद्धालु जो है मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर यदि आप भी मथुरा और वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये डायवर्जन प्लान क्या है और कब से कब तक लागू है। तो ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 3 सितंबर सुबह 8 बजे से 5 सितंबर सुबह 9 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ अगर आप वहां जा रहे हैं तो कई रास्तों पर चार पहिया वाहन, टेम्पो, ई रिक्शा, दोपहिया, भारी और व्यावसायिक वाहनों को भी रोका जाएगा। और ऐसे में अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो उसे भी एक वहां पर निर्धारित पार्किंग स्थल बनाया गया है जहां पर खड़ा करवाया जाएगा। उसके बाद आपको पैदल चलना होगा। तो इसलिए अगर आप वहां जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और ये मन बनाकर जाएं कि रूट डायवर्जन रहेगा और साथ ही ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज है 3 तारीख। आज ही के दिन सन 1940 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा का, जो कि मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का हिस्सा थे और हम सभी के चहेते भी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को हिंदी फिल्मों के सबसे सफल संगीत निर्देशक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1963 से 1998 के बीच लगभग 635 फिल्मों के लिए संगीत दिए। उन्होंने ताराचंद, बरजातिया, एलवी प्रसाद, राज खोसला, राज कपूर, मनमोहन देसाई, जे ओम प्रकाश, मोहन कुमार, यश चोपड़ा, बी आर चोपड़ा, मनोज कुमार, शेखर कपूर, सुभाष घई, शक्ति सामंत, फिरोज खान और देव आनंद जैसे कुछ सबसे नोटेबल फिल्म निर्माताओं के साथ उस दौर में काम किया था। अगर बात करें शुरुआती दौर की, तो संगीत निर्देशक के रूप में संगीतकार को पहला स्वतंत्र ब्रेक जो है बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि से मिला था और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में सुपरहिट संगीत तैयार किया। उनकी दूसरी फिल्म दोस्ती भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रही। उसके संगीत की जबरदस्त सफलता ने उन्हें बड़ी कामयाबी दिलाई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि आपको बता दूं कि इस फिल्म ने दोनों को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया था। और अगर बात करें उनके यादगार गीतों की या फिर यादगार फिल्मों की, तो काफ़ी सारी फिल्में हैं, फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जिसमें कि पारस मणि, दोस्ती, सती सावित्री, आए दिन बहार के फर्ज, मिलन, शागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, राजा और रंक, दो रास्ते, जीने की राह, आन मिलो सजना, हमजोली, खिलौना, महबूब की मेहंदी, मेरा गाँव मेरा देश, पत्थर के सनम, शोर, दुश्मन, गोरा और काला, अमर अकबर एंथनी, अनुरोध, प्यासा सावंत समेत न जाने कितनी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने संगीत दिए और वो भी सुपरहिट साबित हुए। आइए उन्हीं के यादगार गीतों की फहरिस्त में से एक पारसमणि फिल्म के बेहतरीन गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा को सुनते हैं FM गोल्ड पर उन्हीं की याद में।

वक्त हो गया इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले एक और प्यारा सा गाना आपका इंतजार कर रहा है। मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत, ठीक 9 बजे सुनिएगा समाचार और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। नीतू के साथ सुनते रहिए अपना मनपसंद FM गोल्ड और मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत इस प्यारे से गाने के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को JSLV-F617 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि किसी सच्चे प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा वातावरण न केवल प्रयासों को सफलता में परिवर्तित करने में सहायक होता है बल्कि जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक भी बनाता है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है।

0: एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है और ये है म्यूजिकल दिल लगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी एक ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि हम ताउम्र उन्हें याद करते हैं उनके उसी टैलेंट की वजह से। और ऐसे ही एक हस्ती जिनको आज हम याद कर रहे हैं उनकी 100वीं जयंती पर, वो हैं बंगाली सिनेमा के महान अभिनेता उत्तम कुमार, जिन्हें महानायक के नाम से जाना जाता है। आज उनकी 100वीं जयंती है, उनके नाम पर कोलकाता में मेट्रो स्टेशन है, उनके नाम पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से महानायक सम्मान भी दिया जाता है। ढेरों मान सम्मान पुरस्कारों के साथ साथ उत्तम कुमार के नाम 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी हैं। कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें अरुण नाम दिया था, पर उनकी नानी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के कहने पर उन्हें उत्तम नाम दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इसी नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानेगी और पूरी दुनिया ने इस नाम से तो उन्हें पहचाना ही। साथ ही उन्हें एक और नया नाम दिया, महानायक, जिनकी जोड़ी बनी बंगाली सिनेमा की महानायिका सुचित्रा सेन के साथ। इन दोनों की जोड़ी इतनी सुपरहिट थी, इतनी लोकप्रिय थी कि बहुत सारी फिल्मों में दोनों साथ साथ दिखाई दिए। हिंदी सिनेमा में उत्तम कुमार की शुरुआत हुई थी 1967 की फिल्म छोटी सी मुलाकात से, उसका निर्माण भी उन्होंने ही किया था। तो आइए फिर इसी फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं। यूं तो उन्होंने और बहुत सारी फिल्मों में काम किया जो हिंदी में हुई, जो कि बायलिंगुअल भी बनी थी, कुछ फिल्में ऐसी थीं जो हिंदी बंगाली में साथ साथ बनी थी। लेकिन जिन फिल्मों की बात करें अगर हम हिंदी फिल्मों की, तो उनमें छोटी सी मुलाकात जो मशहूर फिल्में हैं उनमें अमानुष और दूरियां, आनंद आश्रम, किताब, ये फिल्में हैं जो कि उत्तम कुमार की मशहूर फिल्में रही हैं हिंदी में। तो अभी हम छोटी सी मुलाकात फिल्म से एक गीत सुनते हैं।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

पता नहीं क्या होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने आसपास के वातावरण की, अपनी जंगल की और इस पर्यावरण की, तो जहाँ इंसान ज़रूरी है ना, वहीं जानवर भी ज़रूरी है। हम इंसान जो हैं वो जंगली जानवरों से डरते हैं, और जानवर जो हैं वो हम इंसानों की उपस्थिति से परेशान हो जाते हैं। उनका व्यवहार, उनकी गतिविधियाँ इंसानों की आवाजाही से बदल जाती हैं। जंगली जानवरों के व्यवहार को लेकर ना एक शोध किया गया जिसमें ये निष्कर्ष निकला है, उनकी अपनी एक दुनिया है और हमारी भी अपनी एक दुनिया है, तो बेहतर ये नहीं है कि हम उनकी दुनिया में दखलंदाजी ना करें, ताकि वो आज़ादी से जंगलों में घूमें फिरें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं ना, अपनी आज़ादी, अपना सुकून, एक ऐसा जीवन जिसमें किसी का दखल ना हो, जहां हर बात पर कोई डर ना हो किसी भी तरह का। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, ये है म्यूजिकल दिल लगी।

कई बार ना ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ना अपने दिमाग में घुसा लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं. बहुत सारी बातें लोगों के साथ होती हैं. हम लोग जब वर्किंग होते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं हर रोज़. कई बार तो कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि दिन में 15-20-25 लोगों से उन्हें मिलना पड़ता है. और कभी कभी ना हम किसी की बात को ऐसे दिल से लगा लेते हैं कि हमें लगता है कि बस उस बात से ना हमारा दिल टूट जाता है या फिर हमारे दिल में वो बात चुभ जाती है. पर कभी आप ना अगर बहुत गहराई से सोचे तो क्या है, कभी किसी का मूड खराब हो सकता है, कभी आपका मूड खराब हो सकता है. आपने भी कभी कोई बात ऐसी कह दी होगी किसी को, तो इतना दिल

चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप नीतू के साथ म्यूजिकल दिल लगी। और म्यूजिकल दिल लगी में सिर्फ दिल लगी नहीं होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना, मतलब ऐसे होते हैं कि उनके चेहरे पे ना हमेशा रौनक रहती है और हमेशा वो खिले खिले दिखते हैं आपको, और उनकी एनर्जी को मैच करना जरा मुश्किल काम हो जाता है कई बार। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बुझे बुझे दिखाई देते हैं। तो ये फर्क जो होता है ना, ये उम्र जो बाहर की उम्र है उसका नहीं होता, ये जो आपके अंदर की उम्र है ना, बायोलॉजिकल एज जो आपकी है उसका फर्क होता है। जो क्योंकि अभी हाल में एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग अपने आप को ना सिर्फ काम में घुसा के नहीं रखते हैं, इधर उधर की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आप कोई ड्रामा देखा है, कोई प्ले देखा है, कोई डांस जो आपका डांस परफॉर्मेंस है वो देखा आपने, या स्टेज शो देखा, कुछ भी जो आपको पसंद हो, कोई एग्जीबिशन है आप देख के आए, जिनका इंटरेस्ट इन सब चीजों में होता है और जो रेगुलरली इन सब चीजों में अपना समय बिताते हैं, थोड़ा समय देते हैं, लत लगने की बात नहीं कर रही हूं मैं कि आप सिर्फ उन्हीं में घुसे रहे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय निकाल कर आप अगर इन सब चीजों में अपना टाइम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपकी जो जैविक उम्र है वो थोड़ी सी यंग हो जाती है। तो सोच के देखिए कि आपको अपनी इस तरह की जो उम्र है वो बढ़ानी है तो क्या क्या आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आजकल तो दिल्ली में मिलते हैं आपको कि आप कहीं भी जाएं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता है। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है, इंडिया हैबिटेट सेंटर है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, बहुत सारी जगह है जहां आप जा सकते हैं। और अब मौसम जैसे जैसे बदलेगा तो फिर तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप गाने सुने, जो आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड।

0: दे उसे दो जो जान दे दे जान उसे दो जो दिल दे दे।
1: ये तो फिर ऐसा नहीं हो गया लेन देन, ये वैसे दुनिया तो ठिकी तो लेन देन पर ही है, लेकिन ठीक है अगर ऐसा भी है तो भी क्या कर सकते हैं, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदली

नहीं जा सकती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदल रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चे जन्म लेते हैं तो बेचारे तब से लेकर बड़े होने तक ना इंजेक्शंस लगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और चलता रहता है। कुछ बच्चे तो चुपचाप वो दर्द सह लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बच्चे क्या, बहुत से तो बड़े बड़े लोग भी जो हैं वयस्क, वो भी इंजेक्शन से ना बहुत डरते हैं। और अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें वैक्सीन से डर लगता है, तो शायद आपको सुनकर खुशी हो कि मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अब ऐसी वैक्सीन बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें इंजेक्शन के जरिए देने के बजाय पानी में घोलकर पिलाया जा सके। तो इंतजार कीजिए इसका।

पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बेहतर बनाना। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि कुपोषण कम हो और बच्चों की स्कूल में उपस्थिति तथा सीखने की जो क्षमता है वो बढ़े। और भी बच्चों को क्या सीखना चाहिए वो आप इस गाने से सीखेंगे, जो कि नीतू सिंह सिखा रही हैं अपने गाने के जरिए।

अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आजमा कर देख लीजिए। जब आप फोन उठाते हैं तो एक के बाद एक स्क्रॉल करते चले जाते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। कई बार तो ऐसा होता है कि वो स्क्रीनशॉट काम भी नहीं आते हैं, बस महीनों कभी कभी सालों बाद जब आप अपने फोन की गैलरी चेक करते हैं तो आपको लगता है ये मैंने क्यों लिया था, आपको याद भी नहीं होता है कि आपने वो स्क्रीनशॉट क्यों लिया था। तो अगली बार कोई बात याद रखनी हो ना तो उसे डायरी में नोट कर ले, इससे शायद वो बात आपको याद भी रह जाए, लेकिन स्क्रीनशॉट से तो कुछ नहीं होने वाला है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, नीतू के साथ ये है म्यूजिकल दिल्ली की।

लेकिन बस इतना याद रखिए कि 7 और 8 तारीख को अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ऑटो और टैक्सी से ट्रेवल करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते हैं, यानी बसेस और मेट्रोज, तो फिर हो सकता है 7 और 8 तारीख को मुमकिन है कि आपको ऑटो टैक्सी ना मिले, क्योंकि इन 2 दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि हड़ताल हो सकती है ऑटो टैक्सी यूनियन की। तो आप समय से निकलिएगा ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। फिलहाल मैं भी समय से यहाँ से निकल लेना चाहती हूँ क्योंकि म्यूजिकल दिल्ली का समय यहीं समाप्त हो रहा है। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। चलते चलते एक और गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, सुनिए, इंजॉय कीजिए और फिर मिलिए दिल का मेल बॉक्स में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट ड वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। श्री मोदी ने भारतीय विनिर्माणकर्ताओं और हितधारकों को प्रभावी समाधान विकसित करने तथा उन्हें बड़े स्तर पर लागू करने में सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। उच्च न्यायालय ने CBI को प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच के दौरान किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इन नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद लागू होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा, किसी सच्ची प्रतिभा को जब सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण में विकसित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1200

0: successfully asked the judge to intervene. In women's cricket, India will take on Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at Dubai International Stadium in UAE today. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. The women in blue opened their campaign with a convincing 94-run win in Thailand in Dubai on Sunday. A victory over Hong Kong will help the Harmanpreet Kaur-led side secure a place in the semi-finals of the ongoing eight-team tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। अमेरिका में संघीय न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास पर रोक लगाई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,250 के पार, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास, प्रभावी आर्थिक नीतियों, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाई रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास को न्यायालय ने रोक दिया है। अमेरिका के जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा ये तर्क दिए जाने के बाद अस्थायी राहत जारी की कि नया आदेश अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करता है। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय 30 जून को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के तुरंत बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप का प्रारंभिक 2025 का कार्यकारी आदेश 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो प्रवासी माता पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्थायी नागरिकता की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृति के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त को एक संशोधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जो विशेष रूप से अमेरिका में पर्यटन के दौरान जन्मे बच्चों को लक्षित करता है और विदेशी सरकारी कर्मचारियों, प्रवासन में शामिल व्यक्तियों के बच्चों को नागरिकता से वंचित करता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार।

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल की भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। नेपाल की प्रधानमंत्री बालिंद शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस आपदा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। इस आपदा में 583 विदेशी नागरिक भी लापता है। नेपाली सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी मार्गों से अब तक 11993 लोगों को बचाया है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में अचानक आई इस बाढ़ से चीनी भूभाग में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 541 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल को एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय विकास साझेदारों ने सहायता का आश्वासन दिया है। पनबिजली परियोजना स्थलों पर बचाव अभियानों में भारत सहित चीन और दक्षिण कोरिया ने भी विशेषज्ञ दल भेजे हैं। इस बीच भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्य रात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। श्री नारायण ने कहा कि यह अभियान भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमता को और मजबूत करेगा और इससे पृथ्वी अवलोकन सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों की 18वीं बैठक के दूसरे दिन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि बौद्धिक संपदा ढांचा तकनीकी लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ब्रिक्स बौद्धिक संपदा कार्यालय प्रमुखों ने परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और IP ब्रिक्स समूह में निरंतर सहयोग के लिए समन्वय तंत्र और प्रगति की समय समय पर समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक नवाचार, रचनात्मकता और आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में बौद्धिक संपदा क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उत्तरी कैरोलिना में G20 की बैठक से अलग अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन श्वार्ट्ज़ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वरिष्ठ अधिकारी के साथ अलग अलग बैठकें की। श्री मल्होत्रा ने एशविले में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया, जिसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वरिष्ठ आर्थिक नीति निर्माता शामिल हुए। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का यह टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्यूंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डा वेवर से वार्ता करेंगे। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। अमेरिका में संघीय न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास पर रोक लगाई। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,250 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लीजिए, एक बार फिर से आ गई है नीतू आकाशवाणी FM गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है दिल का मेल बॉक्स, यानी कि आपके दिल की फरमाइश हम तक पहुंचती है और हम कोशिश करते हैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की। fmgold@gmail.com ये एड्रेस है दिल का मेल बॉक्स तक अपनी फरमाइश पहुंचाने का। ये ईमेल आईडी आप रट लीजिए, लिख लीजिए, या जो आपको करना है करिए। ये ईमेल आईडी याद रखिए, fmgold@gmail.com, क्योंकि यहीं पर आप भेजेंगे अपनी फरमाइश। फिल्म का नाम पता है तो फिल्म का नाम लिखिए, गाने के बोल लिखिए, और उसके बाद भेज दीजिए अपने नाम के साथ इस एड्रेस पर। अभी जिनकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है वो हैं रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश, और इन्होंने सुनना चाहा है ये चुलबुला सा गाना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

0: आज हम सब जानते हैं कि मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी का जन्मदिन है। 3 सितंबर 1940 को उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उन्होंने म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट शो कर दिया था और म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र से वॉयलिन सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि जो प्यारे लाल जी थे उन्होंने एक दो फिल्मों में सहायक बाल कलाकार का अभिनय भी किया है, डोलती नैया मुन्ना जैसी फिल्मों में। उन्होंने जो जब म्यूजिक सीखते थे वो उन्होंने एंथनी गोंसाल्विस जो गोवा के मशहूर म्यूजिशियन रहे हैं और वॉयलिन के मास्टर थे उनसे जब म्यूजिक सीखते थे तो उसके बाद सुबह 7 बजे वो घर से निकलते थे और बाद में इवनिंग क्लास में पढ़ने के लिए देर रात तक घर पहुंचते थे। तो इतनी मेहनत जब कोई करता है ना उसके बाद ही इस मकाम तक पहुंच पाता है। अब जो मैं गाना सुनवाने जा रही हूँ वो उन्हीं का है, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ और इसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान ने। तो चलिए सुनते हैं पारस मुनि फिल्म का ये गाना जो कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर में सुनवा पाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

ये जो महीना है ना, बहुत ही बढ़िया महीना है, क्योंकि बहुत सारे त्योहार अभी निकल गए हैं, बल्कि महीना बदल गया है, लेकिन ये आसपास का जो समय है ना, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि त्योहार आते ही जा रहे हैं एक के बाद एक। और कल है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के लिए जो बहुत सारे लोग हैं फरमाइश आज ही से गानों की कर रहे हैं, तो चलिए आपकी पसंद भी पूरी कर देते हैं। ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बीबी किट्टू सुनना चाहते हैं मिस मैरी फिल्म का ये गाना, तो आइए सुनते हैं।

जन्माष्टमी का ये जो गाना था यानी मिस मैरी फिल्म का ये जो गाना था, ये सुनना चाहा था ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू ने। और इससे पहले जो जिगरी दोस्त फिल्म का गाना था वो सुनना चाहा था सुनील गायकवाड़, सुषमा गायकवाड़, अनन्या और राजवीर गायकवाड़ ने। और मैं तो कल नहीं होंगी, जन्माष्टमी खूब धूम से मनाइएगा, और मैं तो मनाती हूँ और आगे भी मनाऊंगी। आप भी अच्छे से मनाइएगा, खुशी खुशी त्यौहार मनाइए। खुशियां ही है ना जो त्योहार का एक रस है, जो त्योहार जो संदेश देते ना वो सिर्फ खुशियां ही हैं। तो खुशी के साथ मनाइए, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगले गाने की तरफ अब बढ़ते हैं, जिसे सुनना चाहा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने।

मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरि शंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति, रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े, इन सब की पसंद का गीत था ये, जो कि गीत फिल्म से था। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना इतना प्यारा सा गाना। और अब समय कह रहा है कि नीतू को कह देना चाहिए बाय बाय। तो चलते चलते एक और गाना मैं आपको सुनवा सकती हूँ। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म है अभिलाषा, और इस गाने को सुनना चाहा है शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब और नवाब अहमद ने। तो आप इस गाने का आनंद उठाइए, बहुत ही आराम से बैठकर इस गाने को सुनिए, और इस गाने को सुनने के बाद समाचार सुनिए, और समाचारों के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगी तस्वीर में। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM बोलचाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट द वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। उनके साथ रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग भी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों, बढ़ती आबादी और भविष्य में पानी की जरूरतों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने बांध सुरक्षा पर हर मानसून से पहले व्यापक तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और स्कूली विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को एक जगह एकत्र कर व्यवस्थित रूप से प्रबंधित, विश्लेषित और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध है, जो आपसी संबंध और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। सरकार ने विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये देश में भारतीय मानक समय को साझा, कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित समय संदर्भ के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामले विभाग ने नियमों को पिछले महीने की 27 तारीख को अधिसूचित किया था और 29 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों में भारतीय मानक समय के निर्धारण, रखरखाव, प्रसार और उपयोग के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 14वीं नागालैंड विधानसभा के 9वें सत्र का दूसरा और अंतिम सत्र आज आयोजित हो रहा है। इस दिन कई सरकारी बिलों के साथ साथ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026 समेत कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और उनको पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लद्दाख में आगामी 2 दिवसीय द्रास महोत्सव 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें हाल ही में नए जिले के रूप में घोषित द्रास की पर्यटन, सांस्कृतिक और साहसिक क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा। नेपाल बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सामग्री भेजी है। वहीं नेपाल और तिब्बत में मृतकों की संख्या बढ़कर 1250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। खेलों में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में भारत ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तस्वीर शुरू हो गया है नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसे इंडियाज लिटिल फ्रांस या फ्रांस रिवेरिया ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी शासन के जमाने के भव्य मेंशंस आज भी यहां देखे जा सकते हैं। पूरे शहर में उसी तरह का आर्किटेक्चर आज भी नजर आता है। फ्रांसीसी संस्कृति की छाप यहाँ एकदम ताजा है। ये है पांडिचेरी, जिसका नाम 2006 में बदलकर पुद्दुचेरी कर दिया गया था, पर स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे पौडी के नाम से जाना जाता है। तो आज इसी प्यारे से शहर की तस्वीर नीतू के साथ।

पुदुचेरी की बात कर रहे हैं हम, जो कि काफी हद तक श्री अरबिंदो और उनकी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक आश्रम है जो पहले उनका घर हुआ करता था। इसे आप योग, आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम कह सकते हैं। पर इस जगह पर जहाँ वो आश्रम है, वहाँ जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ बात करना एकदम मना है, सेल फोन की तो सख्त मनाही है। पुदुचेरी जो है वो बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और तीन तरफ तमिलनाडु से घिरा हुआ है, और फ्रांस का उपनिवेश होने के कारण यहाँ के लोगों की जो भोजन और जीवन शैली है उन पर और यहाँ की वास्तुकला पर फ्रांसीसी संस्कृति का प्रभाव जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ का व्हाइट टाउन फ्रेंच वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। चमकीले पीले और सफेद फ्रेंच क्वार्टर्स, जिन्हें अब होम स्टे, होटल्स, दुकानों और रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। यहाँ चौड़ी यूरोपीय शैली की सड़कें और छतरियां हैं, जो कि आप और हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं उन्हें बहुत राहत देती हैं और बहुत लुभाती भी हैं। खास तौर पर ये जगह जो है ये फोटोग्राफर्स के लिए ना एकदम परफेक्ट जगह है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पुदुचेरी की हम बातें कर रहे हैं तस्वीर में और बंदरगाह शहर होने के नाते ना ये एक समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और आज भी है। और ऐसा ही एक बंदरगाह है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का अरिकमेडु, जो पुदुचेरी से 4 किलोमीटर दूर है। रोमन, फ्रांसीसी और चोल किसी समय पर यहाँ बसे थे और सभी ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। पुदुचेरी से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में एक और प्रमुख बंदरगाह है कराईकल, जो दक्षिणी भारत के सबसे बेहतरीन प्राकृतिक समुद्री तटों में से एक है। ये जो एरिया है 1739 से पहले तंजौर के राजा प्रताप सिंह के नियंत्रण में था, बाद में फ्रांसीसियों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। यहाँ की वास्तुकला में चोल शैली की झलक मिलती है और इसे चोल साम्राज्य का केंद्र माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ उस भव्य दौर के उस दौर के सिर्फ अवशेष हैं जो आप देख सकते हैं। वो इतिहास आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं।

पुडुचेरी एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आते हैं। धर्म और आध्यात्मिकता इस एरिया की जो संस्कृति है उसमें समाई हुई है। पुडुचेरी और उसके आसपास करीब 350 से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें सबसे मशहूर है व्हाइट टाउन का मनकुला विनयगर मंदिर। 500 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर के जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें भगवान गणेश के 40 अवतारों को उकेरा गया है। सुनहरे रंग के शिखरों वाले इस मंदिर की वास्तुकला दक्कन युग के ज्यादातर मंदिरों से मिलती जुलती है। मंदिर परिसर में भगवान मुर्गन का मंदिर भी है। जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ पर एक हथिनी, जिसे आप घास या फल देंगे तो वो आशीर्वाद के रूप में अपनी सूंड आपके सिर पर रख देती है। हर साल अगस्त सितंबर के महीनों में यहाँ 24 दिनों तक भगवान मनकुला विनयगर का उत्सव मनाया जाता है। वैसे पुडुचेरी में और भी कई उत्सव जो हैं बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें कामचियाम्मन मंदिर, उसमें मनाया जाता है किन्नी राधा।

0: मारुत्सव मंदिर उत्सव मुथुमारी अम्मन मंदिर में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और द्रौपथियामन मंदिर में 22 दिन का उत्सव मनाया जाता है और इन सभी में ना भारी भीड़ उमड़ी रहती है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और अभी वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और बातें हो रही हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में कुछ बहुत ही शांत और अनएक्सप्लोर्ड पुराने बीचेस हैं। यहाँ से सनराइज और सनसेट के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ कायकिंग, कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स और स्विमिंग भी कर सकते हैं। प्रोमिनेंट बीच यहाँ का प्रमुख बीच है, जहाँ सुबह सुबह लोग आपको टहलते हुए, जॉगिंग करते, योगा करते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर ना कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे युद्ध स्मारक, महात्मा गांधी और जॉन ऑफ आर्क की मूर्ति, एक पुराना लाइट हाउस, पुरानी इमारतों के अवशेष, साथ ही स्ट्रीट फूड बेचने वाले भी यहाँ लाइन से आपको दिख जाएंगे। ब्लू फ्लैग वाला ईडन बीच भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का साफ पानी किसी सपने जैसा लगता है। इसके अलावा आप पैराडाइज बीच, ऑरोविल बीच और सेरेनिटी बीच भी जा सकते हैं।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ और आज बातें हो रही हैं पुदुचेरी की, जहां बहुत से चर्चेस भी हैं जो कि बहुत ही शानदार हैं। इनमें बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे 1700 के दशक में फ्रांसीसी मिशनरियों ने बनवाया था। गॉथिक शैली में बना हुआ ये चर्च, उसकी जो रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, उसके अलावा ईसा मसीह और उनके जीवन के साथ साथ उनके भक्तों की कहानियां वहां पर उकेरी हुई हैं। प्रवेश द्वार पर लैटिन में बाइबल की एक कविता लिखी है। पुदुचेरी शहर के केंद्र में है आई मंडपम, जो भारतीय गवर्नमेंट पार्क के तौर पर जाना जाता है। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है ना, जहां बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होकर गपशप करते हैं, बच्चे खेलते हैं और युवाओं की भी हलचल रहती है। पुडुचेरी में ये वही जगह है। इसकी खासियत है इसकी वास्तुकला, जो कि ज्यामितीय आकार की है। इसके चार रास्ते इस पार्क को लगभग बराबर क्वार्टर में बांटते हैं। इसके

0: Leadership theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सौ दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है तस्वीर और बात हो रही है पुदुचेरी की। अगर आप यहाँ पर फ्रेंच स्टाइल के बोटानिकल गार्डन को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। 1826 में बनाया गया ये बोटानिकल गार्डन है और इसमें इसके लिए फ्रांसीसियों ने दुनिया भर से कई तरह के विदेशी पौधे आयात किए थे। 22 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन है और यहाँ पर 1500 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो सब आपको यहाँ मिलेगी, वहां बोर्ड जो वहां पे लगे हुए हैं उन पे प्रजाति का नाम, उसका सामान्य नाम, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स, सब कुछ, उसका उपयोग क्या है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, उसका औषधीय महत्व क्या है, वो सब कुछ आपको वहां लगी तख्ती से पता चल जाएगा। इस गार्डन में 6 फव्वारे हैं जिनमें से एक म्यूजिकल डांसिंग फाउंटेन है, लेकिन उसका आनंद सिर्फ वीकेंड पर ही मिल सकता है।

0: opportunities become progress.
1: तस्वीर में पुदुचेरी की बात हो रही है और पुदुचेरी का भोजन जो है वो दक्षिण भारत के मसालों और फ्रांस की पाक कला का अनूठा मिश्रण है, जिसमें इटालियन स्वाद की भरपूर मात्रा भी शामिल है। खोसुए पॉन्डिचेरी का एक प्रसिद्ध शाकाहारी व्यंजन है और लोकप्रिय स्ट्रीट फूड, जिसे कोक्सुए के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इमली, मछली करी, रेटाटुई के अलावा सी फूड्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। भोजन के अलावा अगर आप पुडुचेरी से कुछ खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहाँ कपड़ा, रेशम और पारंपरिक गुड़ियां बनाने के साथ साथ हाई क्वालिटी के मिट्टी के बर्तन, हैंडमेड पेपर, वुडन और मेटल क्राफ्ट, चमड़े का सामान और आप सुगंधित पदार्थ ले सकते हैं।

पुडुचेरी जाना चाहते हैं आप तो सबसे अच्छा समय सर्दियों की शुरुआत के बाद है, अक्टूबर से फरवरी तक। इस दौरान पुडुचेरी की जो सड़कें हैं वहां पर टहलना बहुत ही आरामदायक और आनंददायक होता है। निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई में है और चेन्नई से दिन में लगभग हर 15 मिनट में लगातार बसेस चलती हैं, तो आप यहां आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप रेल स्टेशन की बात करें तो विल्लुपुरम निकटतम रेलवे जंक्शन है जो चेन्नई, मदुरई और त्रिची जैसी जगहों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जो सड़क मार्ग से भी पुडुचेरी जो है आप आराम से पहुंच सकते हैं, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से। तो जैसे चाहे आप वैसे पहुंच जाइए, लेकिन अभी नीतू के चलने का वक्त हो गया है, तो नीतू चलती है, आप सुनते

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को

0: श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले साल फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक संख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is currently holding bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. Several agreements are expected to be signed after the talks. This morning, the Prime Minister of Belgium visited

0: घर आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। रोचक जानकारी, बातों और गीतों के साथ आज के सफर को तय करेंगे आप हमारे साथ। तो आप सभी को मेरा यानी मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप और हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर और हमारे यूट्यूब हैंडलर AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी सुन सकते हैं आप। साथियों, सफर में आगे बढ़ने से पहले आज आपको बता दूं, आज का सवाल हमारी एक आदत से जो है जुड़ा हुआ। जैसे हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी बातों में किसी एक शब्द को आदतन बोला करते होंगे, यानी वे शब्द या वाक्यांश जिसे अपनी बातचीत के दौरान अक्सर बार बार दोहराते होंगे। तो उनका कोई ना कोई ऐसा तकिया कलाम जरूर होगा। अपनी हर बात में किसी शब्द या वाक्य को दोहराने की आदत ही व्यक्ति की पहचान और उसका तकिया कलाम बन जाता है। जैसे अरे भाई, अरे यार वगैरह वगैरह, जो हम अक्सर बोल चाल में बोलते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी शब्द का प्रयोग अपनी बातों में करते हैं बार बार, तो आपको बताना है आज आपका तकिया कलाम क्या है। ध्यान से सोचिए और बतलाइए रोचक किस्से आपके तकिया कलाम से जुड़े हुए कौन से हैं, और लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पे। और अब आज का सुविचार, सतत और निरंतर रहना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हमारे लोगों ने भी कहा है, विद्वानों ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। निरंतर प्रयास से जड़ यानी मूर्ख व्यक्ति समझ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए असफल होने से बचने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

साथियों, आपके आने से बाहर आ ही गई है। और ये जो गीत आप सुन रहे थे, झुक गया आसमान फिल्म से था, मोहम्मद रफी की आवाज में आपने इस गीत को सुना। और आज सुप्रसिद्ध तबला वादक पद्म विभूषण पद्म पंडित किशन महाराज जी की जयंती है। तबला वादन में विशेष पारंगत और कथक नृत्य के साथ उनकी जुगलबंदी और भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा और उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही लेखिका और उपन्यासकार चंद्रकांता जी की भी आज जयंती है। श्रीनगर में जन्मी इस साहित्यकारा ने हिंदी साहित्य और कश्मीरी संस्कृत और लोक जीवन को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। उन्हें उनकी जयंती पर हम नमन करते हैं। और आज का दिन हमें याद दिला रहा है 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले सिने जगत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले महानायक उत्तम कुमार की जयंती का। और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। वो बतौर निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक के रूप में पहचाने गए हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आपको याद दिला दूं, आज का हमारा प्रश्न है जो जुड़ा हुआ है आपकी एक आदत से, और वो कहलाती है आपकी आदत। जिस शब्द को आप बार बार प्रयोग करते हैं वो कहलाता है आपका तकिया कलाम। यदि आपका ऐसा कोई तकिया कलाम है तो हमें लिख भेजिए fmgoldgia@gmail.com पर।

दूरियां, इस फिल्म से आपने भूपेंद्र सिंह और अनुराधा की आवाज में सुना इस खूबसूरत से गीत को। और दोस्तों, हमारे जो बड़े हैं वो हमें अक्सर ये बताते हैं कि अच्छी बातें और अच्छे संस्कार जहां से भी मिले उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बात अनुभव से सीखी जाए ये संभव नहीं, बल्कि दूसरों के बताए अनुभव से हम सीख सकते हैं। और जानते हैं इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है हमारा साहित्य, हमारे महापुरुषों की जीवनियां और उनकी आत्मकथाएं यानी ऑटोबायोग्राफी। हमारे मार्गदर्शक हमारे महापुरुषों की जीवनियां और आत्मकथाएं पढ़ने की बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताई है। हाल ही में मन की बात के एक एपिसोड में उन्होंने युवाओं और देश के नागरिकों से सफल लोगों के जीवन से सीख लेने, उनकी आत्मकथाएं पढ़ने और जीवन में शॉर्टकट से बचने की सलाह दी है। और चूंकि आत्मकथाएं हमें दूसरों के अनुभव और गलतियों और उनकी सफलताओं से बिना किसी नुकसान के सीखने का मौका देती हैं, इसलिए जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तब सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे होते, बल्कि उस व्यक्ति के संघर्षों और उसकी सीखों को अल्फाजों के साथ आत्मसात कर रहे होते हैं, है ना। तो आत्मकथाओं से यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको मैं बता सकती हूँ कुछ आत्मकथाएं जिन्हें मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जिनमें परमहंस योगानंद जी की योगी कथा अमृत, महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा अग्नि की उड़ान, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं और श्याम सुंदर दास जी की मेरी आत्म कहानी। ऐसी आत्मकथाएं पढ़ सकते हैं आप और गुन सकते हैं अपने सपनों को यथार्थ के धरातल पर।

साथियों, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आप सुन रहे थे जानवर फिल्म से ये गीत। और देखिए, बहुत सारे संदेश हमारे साथियों के हमारे पास आ चुके हैं जो हमारे साथ नियमित जुड़ते हैं, और उन्होंने अपना उत्तर भेजा हुआ है जो हमारे आज के प्रश्न का है। और जो श्रोता साथी जिन्होंने अभी रेडियो ट्यून किया है उन्हें बता दूं, आज का हमारा प्रश्न है, आपको बताना है आपका तकिया कलाम क्या है। अगर ऐसा कोई शब्द जिसे आप बार बार अपनी बातचीत में दोहराते हैं तो ऐसा कोई शब्द है तो लिख भेजिए आप हमें fmgold@gmail.com पर। हमारे पास ये पहला संदेश है नवीन भाटिया जी का, और उन्होंने लिखा है वो शब्द जिसका प्रयोग वो बार बार करते हैं वो है राम भला करे। बहुत सुंदर बात है, और इसी बहाने आप राम जी को याद भी कर लेते हैं। अगला संदेश है, हमारे श्रोता साथी हैं चरणदास जी, और इनके साथ राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी जी हैं। ये हिसार से लिख रहे हैं कि फिल्मों में और उपन्यासों में तकिया कलाम अच्छे लगते हैं, वैसे सामने बैठकर बातें करना है तो तकिया कलाम का प्रयोग करना अजीब लगता है। हाँ, ये बात भी हो सकती है, आपने भी ठीक कहा। और हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने अपना संदेश भेजा है कि वो बार बार एक वाक्य का प्रयोग करते हैं और वो है उनका तकिया कलाम, कहने का मतलब ये है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग अक्सर अपनी बातों में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साथ

क्यों, अब आपको मैं बताती हूँ एक खूबसूरत सी जानकारी जो है आपके पर्यटन से जुड़ी हुई। सुंदरता को चार चांद लगाने वाले घूमने वाली जगहों में से एक है छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का धुड़ मारस गांव, जिसे अपने पर्यटन की सूची में आप शामिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क की गोद में बसा है गांव धुड़ मारस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल किया है। अगर आप यहां आते हैं ना तो पारंपरिक जीवन शैली का सुंदर नजारा आपको अपनी तरफ खींच लेगा और गांव के अंदर पक्की सड़कें नहीं मिलेंगी, पर तहे दिल से स्वागत करते हुए धुरवा जनजाति के सीधे साधे लोग आपको जरूर यहां मिल जाएंगे। जैव विविधता, पारिस्थितिकी पर्यटन, बंबू राफ्टिंग, कयाकिंग, जंगल ट्रैकिंग और स्थानीय धुरवा जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली और उनकी संस्कृति और खान पान को आप करीब से यहां पर देख पाएंगे जब आएंगे। और जानते हैं ये जो धुरवा जनजाति है इनका मुख्य पेशा जो है वो खेती है और वनोपज है। इसके अलावा बांस की लकड़ियों से हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में ये निपुण हैं। बांस और मिट्टी से बने होम स्टे यहाँ पारंपरिक एहसास कराते हैं। और जानते हैं सौर ऊर्जा से जगमगाता है ये गांव सतत पर्यटन का मॉडल बनकर। और प्रकृति और पर्यावरण के करीब रहने वाले जो धुरवा जाति के लोग हैं वो यहाँ पानी की पूजा करते हैं और जल को अपनी माता मानते हैं। और बस्तर में कई धुरवा परिवार पानी को साक्षी मानकर ना विवाह संस्कार संपन्न करते हैं। और अगर आप यहां पहुंचते हैं तो तीरथगढ़ का सीढ़ी नुमा बनावट वाला 300 फीट गहरा जलप्रपात, कोटमसर गुफाएं और कैलाश गुफाएं आप देखने को पाएंगे जो खूबसूरत चूना पत्थर की संरचनाओं से बनी है। और जानते हैं इन गुफाओं में जो मछलियां हैं वो अंधी होती हैं, मतलब वो दृष्टि से देख नहीं पाती हैं ऐसा कहा जाता है। और कैलाश गुफा में जो आवाज गूंजती है वो एक प्राकृतिक संगीत की तरह लगती है। तो आप यहाँ आना चाहते हैं तो हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है और रेलवे स्टेशन पास का जो है वो जगदलपुर है। अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो टैक्सी या बस से भी आ सकते हैं। यहाँ आने पर प्रकृति की जो सादगी है वो बरबस ही आपको अपना बना लेगी।

लता मंगेशकर की आवाज में आखिरी खत फिल्म से आप सुन रहे थे इस गीत को। साथियों, हमारे श्रोता साथी जो बहुत जागरूक हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं और उन्होंने अपने संदेश में आज के प्रश्न का उत्तर लिख भेजा है, जिसमें सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि हमारी और एक बार से जो बार बार बात बोली जाने वाली होती है वो बात है, वो शब्द है हमारा तकिया कलाम, थैंक यू। कितनी अच्छी बात आपने कही, थैंक यू कहना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे अगले जो श्रोता साथी हैं उनका संदेश है गौरी शंकर वर्मा जी का। उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल अच्छा लगा है और एक सवाल को मैं दो बार कह देता हूँ और बात अगर कह देता हूँ तो अच्छा, यानी कि ये शब्द मैं बार बार दोहराता हूँ, यानी कि उनकी जो ये आदत है यही उनका तकिया कलाम है और ये आदत उनकी छूटती नहीं है। तो उन्होंने कहा है, एक बात कहूँगा, जैसे हम कोई बात सही तरीके से ना लिख पाएं या अपना आपका कमाल है उसे आप सही तरीके से पढ़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने इतनी अच्छी बात कही है कि हमें सचमुच में लगता है कि हम सभी को ना गौर करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसी आदतों के साथ जुड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको याद दिला दूं, आपको बताना है आज का प्रश्न, आपका तकिया कलाम क्या है, जिस शब्द को आप बार बार प्रयोग करते हैं अपनी बातचीत में। और जागरूकता के क्रम में आज मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिसे सुनकर आपको सच में अच्छा लगेगा। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास है, कचरा कैफे। एक बेहद ही अनोखा वेस्ट टू रिसोर्स मॉडल का ये कचरा कैफे है, जहां कचरा करेंसी के रूप में तब्दील किया जाता है। यहां पुराने कपड़े से लेकर अखबार, किताबें, प्लास्टिक, ई वेस्ट, यहां तक कि खराब एसी, मोबाइल फोन भी जमा होते हैं, जिसके बदले मिलने वाली रकम सीधे व्यक्ति के कचरा कैफे अकाउंट में जुड़ जाती है। लोग अपने घरों का अलग किया हुआ प्लास्टिक, सूखा कचरा कैफे के कलेक्शन सेंटर पर लाते हैं और कचरे के वजन और उसकी कीमत के हिसाब से यूजर को कचरा कैफे ऐप पर डिजिटल कॉइन्स या फूड कूपन मिलते हैं, जिनका उपयोग करके लोग कैफे में स्वादिष्ट खाना खाते हैं या स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए कपड़े के थैले और जैविक खाद जो यहाँ मिलते हैं उन्हें खरीद लेते हैं। इस तरह ये कैफे महिला स्वयं सहायता समूहों को भी रोजगार दे रहा है। और जानते हैं, इन कचरा कैफों में प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने के लिए बर्तन बैंक की सुविधा भी है, जहाँ लोग अपने जो त्योहार होते हैं या अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है उसके लिए निःशुल्क बर्तन भी ले हैं। तो देखा कितना कमाल का आइडिया है कचरा कैफे। इस तरह की मुहिम चलाकर हम कचरे का निस्तारण और उसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं।

बंटवारा। इस फिल्म से आप सुन रहे थे मन्ना डे, बलबीर और साथियों की आवाज में इस गीत को। और साथियों, आज एक प्रेरक कहानी है आपके लिए, उनकी जिन्होंने इतिहास बदल दिया, क्योंकि 1 सितंबर 2026 के दिन भारतीय वायुसेना में पहली बार नॉन मेडिकल ब्रांच से, यानी कि गैर मेडिकल ब्रांच से कोई महिला 2-स्टार रैंक तक पहुंची है। शक्ति शर्मा नाम है उनका। एजुकेशन ब्रांच में कमीशन और 32 साल का गौरवशाली सफर। वो पहली महिला जिन्होंने सैनिक स्कूल को लीड किया, आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में आईएएफ चेयर्स स्थापित करने वाली विजनरी लीडर बनी और पहली महिला एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा बनी। उनसे पहले मेडिकल क्षेत्र के अलावा कोई महिला एयर वाइस मार्शल नहीं रही। देश के युवाओं को रक्षा अनुसंधान से जोड़ने के लिए आईआईटीज में नई पहल करने वाली शक्ति शर्मा, एनडीए और एएफसीएटी का सपना देखने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

साथियों, पैगाम फिल्म से आप इस गीत को सुन रहे थे आशा भोसले, सुमल कल्याणपुर और साथियों की आवाज में। और देखिए, अब आपको हम बताने वाले हैं महानगरीय संस्कृति में जो एकल परिवार की श्रृंखला बढ़ रही है उसके बारे में और उसकी चुनौतियों के बारे में। और जानते हैं ये जो बात है इससे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं और इसका एक लाजवाब उदाहरण बन रहा है इंदौर के 6 दोस्तों का परिवार, जिसे जिन्होंने मिलकर बसाया है गोल्डन होम्स के नाम से अपने आशियाने को। 6 दोस्तों और उनके परिवारों की ये अनूठी कहानी समाज में एकाकीपन को दूर करने की प्रेरणा बन रही है। इन दोस्तों और उनके परिजनों ने बुढ़ापे के अकेलेपन को मात देने के लिए ना सामूहिक जीवन को अपनाया है। और जानते हैं एक ही छत के नीचे रहने वाला ये परिवार जो है वो बहुत अनोखा है। यहाँ रसोई अलग अलग नहीं है, सब एक साथ पकाते हैं और एक साथ खाते हैं, मिलकर काम करते हैं। और जो परिवार की महिलाएं हैं इस वजह से उन्हें रसोई के जो रोज़मर्रा के कामकाज होते हैं उनसे काफ़ी हद तक आज़ादी मिल जाती है और वो अपना पूरा समय अपनी सेहत की देखभाल में और अपनी खुशियों को गंवाने की बजाय अपनी खुशियों को समेटने में पूरा समय देती हैं। बांटने से खुशियां दोगुनी और दुख आधे हो जाते हैं, है ना। और इस सूत्र पर चलने वाला ये परिवार रिटायरमेंट होम नहीं है बल्कि कर्मठ कर्म योगियों का घर है, जहां सभी अपने अपने करियर में एक्टिव हैं। मैं से हम का सफर तय करता ये परिवार त्योहार से लेकर बच्चों की शादियों तक हर बड़े फैसले में आपस में राय लेता है, मशवरा करता है और मिलजुल कर तय करता है जीवन की दिशा को। इनके इस परिवार नुमा दोस्ती के ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। और अगर कहें ना तो दोस्ती गहरी हो तो खून के रिश्ते के बगैर भी हम एक संयुक्त सुखी परिवार के साथ जीवन को गुजार सकते हैं, जैसे यहाँ हो रहा है।

साथियों, जीवन की डोर से आप सब हमारे साथ बंधे हुए हैं और इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म थी हमारी, हमारी फिल्म का नाम था जीवन की डोर से बांध लिया है, और ये फिल्म थी असली नकली, और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप इस गीत को सुन रहे थे। और साथियों, देखिए, त्यौहार आने वाला है, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, और इस पर्व के अवसर में भोग प्रसाद और पकवान ना बने तो जन्माष्टमी कभी पूरी नहीं होती, ऐसा लगता है ना भाई। कान्हा के भक्तों ने कुछ ना कुछ तो तैयारियाँ शुरू कर ही दी होंगी, और हमें लगता है हमारे बहुत सारे श्रोता साथी भी ऐसे होंगे जिन्होंने कान्हा की भक्ति में अपने घर परिवार में इस त्यौहार की तैयारियों के लिए अपनी शुरुआत कर दी होगी। तो आज कान्हा के भोग के लिए झटपट बनने वाला वृंदावन का जो मेवा पाक है उसकी विधि जान लेते हैं, ठीक है। तो सामग्री आपको इसके लिए जो चाहिए होगी दोस्तों, वो चाहिए होगी एक कप मखाना, आधा कप काजू, बादाम, पिस्ता जिसे आपको बारीक काट लेना है, और 2 चम्मच आपको घी लेना है, कढ़ाई में डालना है, और आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप कंडेंस्ड मिल्क या बूरा चीनी जो उसके साथ होता है वो उसके साथ मिलाना है, और इसे सबको तैयार करना है। सामग्री को इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले घी में आपको ना ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें मखाना है उसको भुनना होगा, उसे थोड़ा सा कुरकुरा करना होगा और दरदरा पीस कर अलग रखना होगा, और उसके बाद जो घी बचा होगा उसमें सारे मेवों को एक साथ आपको रोस्ट कर लेना है, हल्का भून लेना है, और कढ़ाई में जो कंडेंस्ड मिल्क है उसे गर्म करके उसमें मिल्क पाउडर मिलाना है, फिर जो आपने ड्राई फ्रूट्स में मखाना दरदरा किया है उसे मिलाना है, और उसके साथ ही सारे मेवों को एक साथ मिला देना है और चलाते रहना है उस मिश्रण को तब तक जब तक कि वो मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। और फिर एक थाली में आपको घी लगाना है, घी को पूरा फैला देना है उस मिश्रण को फैलाने के लिए, ताकि वो जो थाली की चिकनाई है वो चिकनाई उस मिश्रण के साथ चिपके ना, और उस मिश्रण को पूरी थाली में आपको फैलाकर उसे ठंडा होने तक छोड़ना है, लेकिन उसके ऊपर आपको डालना है केसर और पिस्ता सजाने के लिए, और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर इसे बर्फी के आकार में छोटे छोटे पीस में आप काट सकते हैं, या अपनी पसंद के अनुसार आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं, और इस तरह आपकी जो है वो भोग की थाली तैयार हो जाएगी, और आप अपने कृष्ण के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं और उनके स्वागत के लिए इस प्रसाद के साथ। तो चलिए हम कृष्ण को भी याद करते हैं और इस गीत सुनते हैं उनसे जुड़ा हुआ आज के दिन।

0: तेरे मेरे सपने, इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप इस गीत को सुन रहे थे। और साथियों, मुरली की तान पर जो सबको नचाए वो सांवला सलोना कृष्ण ही कहलाए। आप सबको तैयारी करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी पर्व की, और इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार। घर आंगन,
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले आज सुबह बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल रात राजधानी पहुंचे। प्रधानमंत्री डी वेवर के साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री फ्रैंकन भी आए हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश शासन आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने

0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थ्रियो फैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही।
1: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। भारत और बेल्जियम के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। ये संबंध आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। श्री रूबियो ने ये बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,588 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर रहा। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। महिला एशिया कप 2023 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है।

और दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत में जब जब बड़े और कामयाब संगीतकारों का नाम लिया जाता है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को जरूर याद किया जाता है। दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स ने दशकों तक अपनी धुनों के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी इनके गीतों को खूब पसंद किया जाता है। आज इसी जोड़ी के अहम किरदार प्यारेलाल जी का जन्मदिन है, तो आज कलाकार बेमिसाल प्यारेलाल के नाम।

ऐसा कोई है ही नहीं जिसे ये गाना पसंद ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपकी उम्मीदों पर मैं खरी उतरने वाली हूँ, क्योंकि जब इतने बड़े संगीतकार का जिक्र होने वाला हो तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वाकई में आप सोच रहे होंगे ये गाना चलाना चाहिए, वो चलाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे गाने हैं उनके। खैर, कोशिश की है मैंने चुन चुन कर आपके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के बेहतरीन गाने लेकर आऊं, और ये गाना गुलामी फिल्म से आपने सुना बिल्कुल अभी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बातें हो रही हैं आज इसी जोड़ी के प्यारेलाल जी की। दोस्तों, प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था। उनका पूरा नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है। प्यारेलाल का करियर जितना शानदार रहा, कहा जाता है कि उनका बचपन उतना ही संघर्षों से भरा रहा। बहुत ही छोटे से थे जब माँ चल बसी, पिता टेम्पेट बजाया करते थे, इससे कुछ आमदनी हो जाती, लोग उन्हें बाबा जी कहा करते थे। घर के हालात बेहद खराब थे। प्यारेलाल के पिता चाहते थे कि प्यारे वायलिन बजाना सीखें। पिता की बात मानकर उन्होंने सीखा भी और 9 साल की उम्र में बहुत ही बेहतरीन बजाने भी लगे। कहा जाता है कि इसी वक्त में प्यारेलाल को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। जी हाँ।

0: अनुरोध फिल्म का एक गाना है, किशोरदा की आवाज में आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं।
1: ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2020.

0: 6, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आज बातें हो रही हैं संगीतकार प्यारे लाल की। दोस्तों, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि किस तरह से मुश्किल हालात की वजह से प्यारे लाल की पढ़ाई छूटी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। उन्होंने खूब मेहनत की और आखिरकार मुंबई के एक बड़े स्टूडियो में उन्हें ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई। फिल्मों से जुड़े लोग बताते हैं कि प्यारे लाल वायलिन में एक्सपर्ट थे और एक बार लता जी के सामने उन्होंने वायलिन बजाया था। लता जी इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने 500 रुपए इनाम दे दिया। ये रकम उस जमाने में बहुत बड़ी थी। इससे प्यारे लाल का हौसला और बढ़ा और आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी। दोस्तों, प्यारे लाल की मुलाकात अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत से बचपन में ही हो गई थी। बताया जाता है कि दोनों मंगेशकर परिवार की एकेडमी में म्यूजिक सीखने जाया करते थे और दोनों का ही फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा था। एक जैसी उम्र, एक जैसे हालात और एक जैसी जिंदगी। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल बहुत ही जल्दी दोस्त बन गए। बचपन से शुरू हुई ये दोस्ती आखिरी वक्त तक रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को अपनी धुनों के अलावा वादा निभाने और दोस्ती के लिए भी याद किया जाता है। अगर कोई उनके लिए छोटा सा भी काम कर देता था तो वो उसे हमेशा याद रखते थे। उनकी इस आदत पर एक गाना है, जी हाँ एक गाना है पूरा का पूरा, जो बताएगा आपको उनकी इस कहानी के बारे में। पहले गाना सुनिए, फिर कहानी सुनाती हूँ आपको।
2: By the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
3: My name is Anthony Gonsalves.
4: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय।

0: कोतवाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ये जो गाना है आपने सुना अमर अकबर एंथनी फिल्म से, किशोर दा और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, बहुत ही मशहूर गाना है ये, और इसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कैरेक्टर यानी कि एंथनी गोंसाल्विस का जो वजूद है वो काल्पनिक नहीं है? जी हाँ, एक्चुअली ये जो नाम है ये एकदम हकीकत है। एंथनी गोंसाल्विस जो है वो बहुत ही मशहूर म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक अरेंजर हुआ करते थे। वो वायलिन में एक्सपर्ट थे और बड़े बहुत ही मतलब उनका नाम था इस मामले में, और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की टीम का वो हिस्सा रहे। उन्होंने प्यारेलाल को वायलिन सिखाया था, इसलिए जब प्यारेलाल अमर अकबर एंथनी फिल्म से जुड़े और उन्हें अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम पता चला कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो किरदार है उसका नाम है एंथनी फर्नांडिस, तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई से कहा कि भाई कैरेक्टर का नाम मेरी खातिर आप एंथनी फर्नांडिस से एंथनी गोंसाल्विस कर दो, और मनमोहन देसाई मान गए। इस तरह से एंथनी गोंसाल्विस जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म का हिस्सा बना, क्योंकि वे अपने गुरु को सम्मान देना चाहते थे। तो कुछ ऐसे थे लक्ष्मीकांत और उनके जोड़ीदार प्यारेलाल।

0: मैंने कहा था ना कि जब बड़े बड़े कलाकारों के नाम लिए जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके कौन से गाने लेकर आए और कौन से छोड़ दिए जाएं, क्योंकि इतने सारे खूबसूरत गाने उनके हैं, हर एक गाना इतना प्यारा है कि जब मैंने सिलेक्शन शुरू किया तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई बहुत बुरी तरह। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे गाने। ये गाना अनवर की आवाज़ में आपने सुना, ये इश्क नहीं आसां फिल्म से संगीतकार जैसे कि आप जानते ही हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, आप यहीं पर रहिए।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This

0: The BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बातें हो रही हैं संगीतकार प्यारेलाल की। दोस्तों, संगीतकार प्यारेलाल और उनके जोड़ीदार लक्ष्मीकांत को गायकों का पसंदीदा माना जाता है, और ये इसलिए भी है क्योंकि वो कभी भी बड़े कलाकार या छोटे कलाकार वाला नजरिया नहीं रखते थे। वो संभवतः इकलौते ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता सभी दिग्गजों को एक साथ एक ही गाने के लिए एक ही दिन बुला भी लिया, जबकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। दोस्तों, सिर्फ बड़े और नामी गायकों ही नहीं बल्कि नई आवाजों के लिए भी प्यारेलाल हमेशा दिल बड़ा रखते थे। उन्होंने बहुत से नए गायकों को भी मौका दिया जो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कलाकार बने।

प्यारे लाल को जब लक्ष्मीकांत का साथ मिला तो उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को एक नए आयाम तक पहुंचाया। उनकी पहली फिल्म थी पारस मणि, जो 1963 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 1963 से लेकर 1998 तक दोनों ने करीब 750 फिल्मों का संगीत तैयार किया। उन्हें 7 बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। दोस्ती, कर्ज, मिलन, शागिर्द, महबूब की मेहंदी, मेरा गांव मेरा देश, पत्थर के सनम, गोरा और काला, दाग, बॉबी, अमर अकबर एंथनी, प्यासा सावन, एक दूजे के लिए, सत्यम शिवम, सुंदरम, प्रेम रोग, सरगम, क्रांति, हीरो, तेजाब और कर्ज, एक बहुत ही लंबी सी लिस्ट है। उन्होंने जिन फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं पूरा दिन लगाऊंगी तो शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। दोस्तों, संगीत के लिए अपने योगदान के लिए प्यारे लाल को पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आज उनका जन्मदिन है। दुआ है कि वो स्वस्थ रहें और उनका संगीत यूं ही हम सबके कानों को सुकून पहुंचाता रहे।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में गोरा और काला फिल्म का एक गाना जिसका म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा आपको। फिलहाल तो उर्दू में खबरें सुनते हैं, उसके बाद 2:30 पर मैं फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए एक और प्रोग्राम संगीत.com।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं कौनैन हैदर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 बरस में दो तरफा तिजारत को दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हममनसब बार डे वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब थियो फ्रेंकन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसत देने का अज़्म किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। उन्होंने ये बात दोहराई, आलमी उथल पुथल और चैलेंजों के बावजूद भारत की तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर है। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में

0: का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के अपने हममनसब बार्ट दे वेवर के साथ नई दिल्ली में दोतरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल किया। अपने प्रेस बयान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया एक बड़ी उथल पुथल के मरहले से गुजर रही है और दुनिया के कई हिस्सों में लड़ाई जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह गैर यकीनी हर शोबे को मुतासिर कर रही है, चाहे वो खुराक हो, ईंधन हो या सप्लाई चेन। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मईशत इस चैलेंज भरे माहौल में भी अपनी रफ्तार बरकरार रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पिछली सहमाही में भारत ने 7.8% की तरक्की दर्ज की। उन्होंने कहा कि आज भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया के लिए एतमाद और नए इम्कानात का एक जरिया बन रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत बेल्जियम ताल्लुकात तारीख के सफात में दर्ज हैं। उन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान बेल्जियम में हजारों भारतीय सिपाहियों की दलेरी और कुर्बानी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुश्तरका जमहूरी अकदार, बाजार और मईशत और अवाम से अवाम के दरमियान राबते भारत और बेल्जियम को फितरी शराकतदार बनाते हैं। उन्होंने कहा कि दोतरफा इश्तराक के इम्कानात रिवायती शोबों से वसत पाकर दिफा और माहौल के लिए साजगार तवानाई जैसे कलीदी शोबों तक पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि माहौल के लिए साजगार तवानाई और पायदार सप्लाई चेन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीहात हैं। भारत और बेल्जियम ने बाहमी तिजारत को आइंदा 5 बरस में 2 गुना करने से इत्तफाक किया है।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत और बेल्जियम के दरमियान मुस्तहकम और देरीना ताल्लुकात हैं, जो बाहमी एहतराम, जमहूरी अकदार और जवाबित से मुंसलिक आलमी निजाम के मुश्तरका अज़्म पर मबनी हैं। नई दिल्ली में बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकेंस के साथ अपनी वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वजीर दिफा ने यह बात कही। जनाब सिंह ने कहा कि दुनिया को बड़े जोग्राफियाई और सियासी और इक्तिसादी उथल पुथल का सामना है और उन्होंने इन चैलेंजों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल में बेल्जियम जैसे एक दोस्त और एक अहम शराकत दार से मुलाकात नजरियात और ख्यालात के तबादले का एक मुफीद मौका फराहम करती है। बेल्जियम के वजीर दिफा थियो फ्रेंकेन ने भारत बेल्जियम दोस्ती को वसत देने को उजागर किया। मीटिंग के दौरान दोनों वजरा ने दिफाई इश्तराक से मुतालिक बातचीत, आला सतह के दौरों, तरबियत और सलाहियत साजी के जरिए दोतरफा ताल्लुकात को वसत देने से इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक मामलात पर भी बातचीत की और भारत और बहरुल काहिल में बहरी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक की जरूरत को तस्लीम किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में एक आला सतह की तिजारती गोलमेज मीटिंग में सरमायाकारों के सामने भारत की इसलाह पर मबनी तरक्की को पेश किया। 2026-27 की पहली सहमाही में भारत के इक्तिसादी नमू 7.8 और सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत आलमी चैलेंजों और तनाजियात के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली एक बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। वजीर खजाना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने इंजबाती यकीन दहानी में इजाफा किया है और फाइलों और कागजी काम को कम किया है। मोहतरमा सीतारमन ने कोविड-19 वबा के बाद से जारी आलमी इक्तिसादी चैलेंजों के दरमियान माली इस्तेहकाम और कायदों के लिए भारत के अज़्म को दोहराया। बिहार में पटना और कई दीगर अजला में गंगा की आबी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके सबब नए इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। कुदरती आफात से निमटने के महकमे ने गंगा की आबी सतह बढ़ने के तनाजुर में अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक इस नदी की आबी सतह पटना के गांधी घाट पर आज रात सैलाब की सतह को पार करने के इम्कान हैं और मोकामा के हतीडा में कल दोपहर ये सैलाब के खतरे की सतह को पार कर जाएगा। झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता कुछ रोज से शदीद बारिश के पेश नज़र बदस्तूर सैलाब और पानी भरने जैसी सूरतहाल जारी है।

0: ताहम बारिश में कमी आने के बाद कुछ दरियाओं में सतह आब में भी कमी आई है, लेकिन इंतजामिया मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रांची में गीतल सुद बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। सुवर्णरेखा दरिया के तेज बहाव के सबब लोगों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। इंतजामिया दरियाओं से मुत्तसिल इलाकों और नशीबी इलाकों में मुसलसल करीबी नजर रखे हुए है। इस दौरान रामगढ़ के मगनपुर गांव के गोला ब्लॉक में मुख्तलिफ मकानात गरकाब हो गए, लेकिन आज सुबह से बारिश न होने की वजह से पानी की सतह में कमी आ रही है। इंतजामिया ने दरियाओं के आसपास और नशीबी इलाकों में रह रहे लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और किसी हंगामी सूरत हाल में सरकारी हिदायत पर अमल करने को कहा है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने आज जोर देकर कहा कि भारत इख्तराब मेयार और कीमतों की बुनियाद पर ऑटोमोबाइल सनत में आलमी नंबर एक दर्जा हासिल करने की सलाहियत रखता है। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की सोसाइटी SIAM की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि यह शोबा, जिसकी मौजूदा कदर 22,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, मुल्क की GST में तकरीबन 15% का तआवुन देता है और तकरीबन 4 करोड़ बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने में मदद देता है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि 2025-26 के दौरान भारत की ऑटोमोबाइल बरामदात में 24% का इजाफा हुआ। मरकजी वजीर ने इस बात पर एतमाद का इजहार भी किया कि भारत की इक्तिसादी तरक्की में सनत का तआवुन जारी रहेगा। बैडमिंटन में भारत के मशहूर खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के आलमी नंबर 9 खिलाड़ी विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल जुमरे के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अगले मैच में श्रीकांत का मुकाबला हांगकांग के ली च्यूक यी से होगा। उधर खवातीन सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन वो जापान की टोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18 और 16-21 से हार गईं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बेल्जियम ने आइंदा 5 बरस में दो तरफा तिजारत को दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के अपने हमबनसब बार डे वेवर के साथ दो तरफा ताल्लुकात के वसीतर पहलुओं पर बातचीत की। काबिले तजदीद तवानाई, साइबर जराइम और सिफारती तरबियत के शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बेल्जियम के उनके हम मनसब थियो फ्रेंकन ने बातचीत आला सतही दौरों और सलाहियत साजी के जरिए बाहमी दिफाई ताल्लुकात को वसत देने का अज़्म किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने न्यूयॉर्क में आला सतही कारोबारी गोलमेज में सरमायाकारों से मुलाकात की। उन्होंने ये बात दोहराई कि आलमी उथल पुथल और चैलेंजों के बावजूद भारत की तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर है। बिहार में दरियाए गंगा में पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिससे नए इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और बैडमिंटन में शेंजेन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Belgium agree to double bilateral trade in the next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Agreement signed in areas of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart Theo Franken commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centers and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi this afternoon. Both leaders

0: रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, फूड फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ MOU हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के IMEC इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश वाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार।

0: पटना।
1: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
2: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, 90s का जो दशक था, हिंदी फिल्म संगीत का गोल्डन टाइम कहा जाता है। इस दौर में मेलोडी, प्यार और सादगी का जादू था। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जैसे गायक गायिकाओं ने इस दौर को अपनी आवाज से खूबसूरत बनाया। तो आज संगीत.com में इसी जमाने के कुछ सुपरहिट गाने लेकर आई हूं मैं, और साथ ही साथ सुनाऊंगी उनसे जुड़ी कुछ कहानियां।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। इस गाने का संगीत तैयार किया था जतिन ललित ने। दोस्तों ये गाना आज भी प्यार की परिभाषा माना जाता है, लेकिन इसके संगीतकार जतिन ललित के लिए ये बहुत ही मुश्किल रहा इस गाने को अप्रूव करवाना। जी हाँ,

अक्सर गानों की जो धुनें हैं वो एडवांस में बना ली जाती हैं। जतिन ललित ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब वो अपनी क्रिएशन को लेकर यश चोपड़ा के पास गए तो यश जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी ही साधारण सी धुन लग रही है, लेकिन यश चोपड़ा के जो बेटे हैं आदित्य चोपड़ा, उन्हें ये धुन बहुत पसंद आई। उन्होंने जिद की और कहा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, ये जो धुन है ना, ये इतिहास रचेगी। और आखिरकार आदित्य जीत गए। आनंद बख्शी के बोल के साथ ये जो गाना है ये रोमांटिक एंथम जैसा हो गया। जी हाँ, इस गाने के चाहने वाले गली गली में मिलेंगे, घर घर में मिलेंगे। फिलहाल तो एक और गाना मैं आज चाहती हूँ आपको सुनाना, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा है।

0: मैंने कहा था ना कि जो 90s का दौर है वो कहलाता है गोल्डन एरा, गोल्डन जमाना. क्या मेलेडी, क्या प्यार, क्या सादगी, चारों तरफ बस जादू ही जादू था. दोस्तों, ये गाना आपने सुना दस्तक फिल्म से और आवाज पहचाने गए होंगे आप उदित नारायण की, संगीत राजेश रोशन का, और इस गीत के जो बोल हैं वो लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने. चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको तो कहीं जाना ही नहीं है क्योंकि गाने बहुत सारे हैं.
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल. दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स. इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। ये बात है 1991 की, फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं। दोस्तों कमाल की बात ये रही कि इस गाने को बेहद जल्दबाजी में बनाया गया था। फिल्म मेकर भूषण कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता गुलशन कुमार संगीतकार नदीम श्रवण के साथ रात में 2 बजे एक मीटिंग में थे, तब नदीम श्रवण ने उन्हें ये धुन सुनाई। धुन गुलशन कुमार को बहुत पसंद आई और इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने आधी रात को ही गीतकार समीर को कॉल किया और तुरंत उस पर गाना लिखने के लिए बोल दिया। कमाल यह हुआ कि सुबह होते होते गाना भी लिखा गया और आगे की धुन भी बन गई, यानी कि पूरा का पूरा जो गाना है वो रात में तैयार हुआ था। चलो इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब गाना सुना ही देती हूँ। वैसे इसका संगीत इतना प्यारा है कि जरा सा सुनते ही हम पहचान जाते हैं कौन सा है। हाँ हाँ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप संगीत.com में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बातें हो रही हैं 90s के दौर के कुछ बहुत ही खूबसूरत गानों की। अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये गाना रात में लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में इस गाने ने

0: and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. शबनम के साथ हैं आप. संगीत डॉट कॉम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. और दोस्तों, अब ये जो अपना सीधा वाला हाथ है ना, वो अपने दिल पे रख लीजिए, क्योंकि अब जो मैं गाना सुनाने वाली हूँ वो गाना उफ उफ उफ कितना प्यारा है. दोस्तों, ये गाना है यस बॉस फिल्म से. 1997 में ये फिल्म आई थी. और कितना खूबसूरत इत्तेफाक होता है ना, जब किसी से आप मिलते हैं या फिर अचानक से कोई आवाज़ सुनकर रुक जाए. ऐसा इत्तेफाक हुआ 1997 में, जब म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित स्टूडियो में पियानो पर कुछ गुनगुना रहे थे. वो दो ही लाइन थी जिन्हें वो गा रहे थे और अचानक से शाहरुख उस स्टूडियो में आए थे किसी काम से. उन्होंने सुनी और कहने लगे, ललित बड़ी ही खूबसूरत लाइंस हैं, इन पे तो गाना बनना चाहिए. शाहरुख की बात सुनने के बाद ललित का हौसला बढ़ा और उन्होंने इस पर पूरी धुन बना डाली. ये जो गाना है ये 90s के दशक का एक यादगार सदाबहार गाना है. और क्या कहूँ इसके बारे में, आप सुन लीजिए. अच्छा

मैंने सोचा था कि आपको ये गाना पसंद आएगा, इसलिए मैं लेकर आई थी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। अब मैं चलती हूँ, नईम अख्तर आएंगी थोड़ी देर में, बने रहें हमारे साथ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आज आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ज डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वे 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री 3 दिन के भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री

0: तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध तथा सुनिश्चित करना और बैंकों के फंसे कर्जों को कम करना शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में आगामी परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में रविवार को भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy, cyber crime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart Bart Wever in New Delhi this afternoon. Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that shared democratic values, market economy and people-to-people ties make India and Belgium natural partners. Mr. Modi recalled that he visited Belgium 10 years ago and expressed pleasure that the partnership has made remarkable progress over the past decade. The Prime Minister said both countries will achieve doubling of trade in the next 5 years.
3: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप।
2: Finance Minister Nirmala Sitharaman has pitched India's reform-led growth story to investors at a high-level business roundtable in New York. Highlighting India's 7.8% economic growth in the first quarter of 2026-27 and the improved investment climate, Ms. Sitharaman said India continues to be the world's fastest-growing major economy despite global disruptions and challenges. The finance minister said reforms including the Insolvency and Bankruptcy Code have provided greater regulatory certainty, eased compliance and reduced paperwork under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Ms. Sitharaman reiterated India's commitment to fiscal prudence and discipline amid continued

आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:11 हुए हैं और वक्त है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन का। पसंदीदा इसलिए कि कार्यक्रम तो आप सभी सुनते हैं, हमारे बहुत शौक से सुनते हैं, दिल लगा के सुनते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में आप भी शामिल होते हैं, इसलिए आपको इसे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है और आपका दिल इस कार्यक्रम के साथ ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये आपके मन को भाता है और इसीलिए हमने इसका नाम भी मन भावन रखा है। मन भावन कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और जैसा कि हमेशा की तरह होता है आज भी होगा, आपसे हम मंगाएंगे आपकी पसंद के चंद गीत, वो गीत जो हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ साथ अपने सभी श्रोताओं को भी सुनवाएं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868868753 यानी 9868687533 पर, और बिन मंगाई हमारे पास जिन मैसेजेस का, जिन संदेशों का अंबार लग चुका है उनमें से एक श्रोता की पसंद के गीत के साथ आगाज कर रहे हैं आज के मन भावन कार्यक्रम का। आज के इस पहले गीत को हमारे पास लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर रिंगनी छत्तीसगढ़ से।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:24:24 कार्यक्रम मन भावन में आपके पसंद के गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपने पसंद के गीत हम तक पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से. व्हाट्सएप नंबर है 9868687539868886853. तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ. ये गीत फिल्म तुम्हारे लिए का था और जिसे सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने. और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसकी फरमाइश आई है हमारे पास दक्षिण भारत से, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष. इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म असली नकली का ये खूबसूरत गीत.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:25 कार्यक्रम मनभावन आपके साथ मैं नईम अख्तर और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए ताकि आप भेज सकें हमें अपनी पसंद के गीत, तो नंबर है 9868868753 यानी 9868868753। और जो कवाली अभी हमने सुनी, आज क्यों हमसे पर्दा है साधना फिल्म की, इस कवाली को सुनने की फरमाइश हमारे पास दो अलग अलग जगह से अलग अलग श्रोताओं की आई थी। पहली फरमाइश थी अफरोज शेख की सुपौल बिहार से, और एक और फरमाइश जो हमारे पास आई थी वो थी आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और उनके परिवार के सभी सदस्यों की, पटियाली रोड गंज डुंडवारा से। तो ये तो थी इनकी पसंद के कवाली। और अभी जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है हंसते जख्म फिल्म का एक गीत, जिसको सुनने की फरमाइश श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से आई है हमारे पास।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दशमलव एक मेगा हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मनभावन कार्यक्रम में आपके मैसेजेस हमको लगातार मिल रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 9868868753 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। और एक और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सलीम अख्तर और रेशमा बेगम की फरमाइश पर, जिन्होंने अलीगढ़ से हमारे पास अपनी फरमाइश भेजी है मोहरा फिल्म के इस गीत के लिए।

0: 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: तीन बजकर 49:33 101.1 MHz पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड व्हाट्सएप नंबर 9868868753 यानी 9868886853। शायद ये जो गीत अब हम सुनवाने जा रहे हैं इसके बाद हो सकता है बस एक ही गीत और आपका ले पाएं तो अपनी पसंद भेजिए। और ये जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चांदनी का, इसकी फरमाइश भी हमारे पास दो जगह से आई है। एक हमारे पास मैसेज आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा और इन्हीं के साथ हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। और एक और श्रोता ने भी हमारे पास यही फरमाइश भेजी है शेरवानी रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम तक पहुंचाया है, सुनने की फरमाइश की है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन ने, और साथ ही कैथल हरियाणा से टिल्लू नायक और मधु नायक ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। भारत और बेल्जियम ने आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। भारत को एक बड़ी वैश्विक ताकत बताते हुए श्री वेवर ने आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सेशेल्स विधानसभा के अध्यक्ष अजारेल अनेस्टा और सेशेल्स के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान श्री राधाकृष्णन ने

0: साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित भारत सेशल्स के अटूट मित्रता को दोहराया। उनकी चर्चा समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री खाद्य सहयोग और क्षमता निर्माण में भारत सेशल्स साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रित हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उधर झारखंड में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किदाम्बी श्रीकांत चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने कनाडा के विक्टर लाई को हराया। महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with his Belgian counterpart, Bart De Wever, in New Delhi this afternoon. Both leaders discussed the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. In his press statement, Prime Minister Modi stated that the world is passing through a phase of great upheaval and situations of conflict persist in many parts of the world. He added that uncertainty is affecting every sector, be it food, fuel or supply chains. He emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further stated that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He stated that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Prime Minister Modi said a clean energy future and reliable supply chain are shared priorities for both nations. He went on to add that the MOU signed today on renewable energy will give new momentum to sustainability cooperation. In critical minerals, both nations have decided to increase cooperation in processing and recycling. Mr. Modi said that in semiconductors, Belgium's expertise and India's scale are complementary to each other. In this direction, both countries will work together to connect Belgium's IMEC Institute with India's semiconductor ecosystem. In his press statements, Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, hailed India as the largest democracy with the fastest growing economy, terming New Delhi as an important ally. Hailing India as a major global powerhouse, Mr. Wever emphasized deepening bilateral cooperation across economic and strategic fronts. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industry for playing a pivotal role in achieving 7.8% in India's GDP

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम गोल्ड। 4:10.59 हुए हैं और नईम अख्तर एक बार फिर से आपके साथ हाजिर है लेकर कुछ और फिल्मी गीत।

0: The post carries pay level 10 as per the 7 CPC and will be filled through direct recruitment against a lien vacancy likely to be continued. The upper age limit is 35 years. Applications are invited in the areas of animal nutrition, animal precision gene editing and veterinary gynecology and triogenology with expertise in assisted reproductive technology such as AI, IVF, ICSI, OPU and ET. The last date for submission of applications is 11 September 2026. For detailed eligibility criteria, terms and conditions and application procedure, candidates should refer to the website at www.niab.res.in. CSIR, Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh, a premier institute under the Council of Scientific and Industrial Research, invites online applications for the post of a security officer, Group B, 1 unreserved, receptionist, Group B, 1 post unreserved, and driver, Group C, 4 posts are available, 3 unreserved, 1 OBC, including 1 reserved for ex-servicemen. The posts carry pay level 7, level 6, and level 2 respectively, with upper age limits of 35, 28, and 27 years. Online application closes on 14 September 2026. For detailed eligibility, age relaxations, terms and conditions, and application instructions, kindly visit the website at www.csio.res.in. I repeat the website, it is www.csio.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार आमंत्रित कर रहा है कार्यालय अधीक्षक अराजपत्रित लेवल 6 के एक पद के लिए आवेदन। पात्रता शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं दिनांक 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर भी ये जानकारी उपलब्ध है www.agricoop.nic.in। CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। कनिष्ठ आशुलिपिक, जूनियर सचिवालय सहायक और जूनियर हिंदी अनुवादक। विस्तृत विज्ञापन के लिए आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट www.neist.res.in। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। सहायक प्रबंधक सिविल तथा सहायक प्रबंधक सिविल E2, इनमें से एक पद अनारक्षित है। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, पदों के संबंध में विवरण, चयन प्रक्रिया, संशोधन आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की वेबसाइट www.ncrtc.in। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की ओर से NIII कोलकाता और दिल्ली में अनुबंध आधार पर इन पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित हैं। पद हैं सहायक प्रोफेसर केस टेकिंग और रेपर्टरी, सहायक प्रोफेसर तथा कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जानी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की वेबसाइट nih.ayush.gov.in। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता का एक पद रिक्त है। इसे भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन वॉक इन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की वेबसाइट www.cswc

0: rtiweb.org. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभागों के नाम हैं वाणिज्य, जिसमें 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं, पंजाबी भाषा 1 रिक्ति, गणित 1 और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस 1 रिक्ति। इन पदों के संबंध में शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sggscc.ac.in। आवेदन के लिए ये वेब लिंक भी देख सकते हैं rec.uod.ac.in। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के पात्र अधिकारियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एक स्वीकृत पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद के लिए वेतन, अपेक्षित अर्हताएं, अन्य पात्रता मानदंड तथा आवेदन पत्र आप देख सकते हैं अकादमी की इस वेबसाइट पर www.svpnpa.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज रहे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून करिश्मा। करिश्मा, आई केम थ्रू अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग न्यूज टुडे दैट इन द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया विल शोकेस इट्स क्रिएटिव प्रोवेस एट द अपकमिंग बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन साउथ कोरिया, ऑल सेट टू मेक अ सिग्निफिकेंट मार्क एट द फिल्म फेस्टिवल विथ 6 फिल्म्स टू बी स्क्रीन्ड। And this 31st Busan International Film Festival will take place from 6th of October to 15th of October this year at the Busan Cinema Center in South Korea. The films will be screened in the Asian cinema segment, which is the festival's prominent non-competitive sections, showcasing new and notable works by filmmakers from across Asia. Karishma, it certainly underscores India's resolve to expand co-productions, boost AVGC opportunities and strengthen cultural bonds with South Korea and also position India as a global hub of the creative economy. So Indian cinema is set to get a strong presence with films from several Indian filmmakers selected across different sections of this prestigious event. We will keep updating you in the coming days on the Busan Film Festival, but right now, let's surprise you with news making headlines at this hour of the day. Karishma?
3: Pradhan Mantri aur Belgium ke... बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर के साथ वार्ता की।
4: बोथ नेशंस एक्सचेंज सेवरल एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग लेटर ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन एंड एमओयूज इन फील्ड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर टैकलिंग ट्रांसनेशनल क्राइम्स इंक्लूडिंग साइबर क्राइम एंड डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को

0: विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई।
1: Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centers and global capability centers.
0: बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा।
1: And in badminton, India's Kidambi Srikant beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. And Karishma, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about the ongoing National Nutrition Week, which is observed till the 7th of September. Karishma, we are talking about something that is literally a part of our everyday lives, that is food. And not just food, but food that makes us healthier, stronger and more energetic.
0: बिल्कुल अनुजा, क्योंकि भारत में एक बहुत आम मान्यता है कि घर का खाना है तो हेल्दी तो होगा ही, लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है?
1: Well, not necessarily. Even a home-cooked meal can sometimes miss important nutrients if we aren't eating a balanced variety of foods. And that's exactly why we are having this conversation today, because from 1st to 7th of September is observed as the National Nutrition Week in India.
0: तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, माता पिता हो, दादा दादी या नाना नानी हो, या फिर कह सकते हैं कि बस खाने के शौकीन हो, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि असल में आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन की आम कमियों के बारे में, और यह भी कि अच्छा खाना और फिटनेस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत बेसिक बातों से करते हैं और हमें अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है समझते हैं।
1: Because food is the fuel of our body, which our body needs. It provides energy, supports growth and development, helps repair tissues and supports our immune system. It also plays an important role in keeping our bones and teeth healthy. And over the long term, a balanced diet can help reduce the risk of several nutrition-related health problems as well.
0: तो हेल्दी खाने का मतलब कम खाना नहीं होता है, और इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि खुद को भूखा रखें। इसका मतलब है बेहतर और समझदारी से खाना और अपने शरीर को कई तरह के पोषक तत्व देना। और क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1982 में भारत सरकार की एक पहल के तौर पर मनाया गया था।
1: सिंस देन द ऑब्जर्वेंस हैज बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बैलेंस्ड डाइट्स, nutritional deficiencies and the importance of adequate nutrition across different age groups. Okay, now let's get practical. If I open my lunchbox right now, what should I ideally find inside? Carbohydrates, that is rice, wheat, oats, potatoes and millets are all sources of carbohydrates which provide energy.
0: तो कह सकते हैं कि carbs दुश्मन नहीं हैं?
1: Definitely not, Karishma. The focus can be on nutritious whole grain and fiber rich sources more often.
0: बिल्कुल, क्योंकि protein, दाल, राजमा, चना, beans, मटर, सोया, डेरी, अंडे, मछली, chicken और meat से protein मिल सकता है, और protein शरीर के विकास, मांसपेशियों को बनाए रखने और टिश्यू की मरम्मत में मदद करता है। तो फैट्स के बारे में क्या कहेंगे अनुजा?
1: हेल्दी फैट्स फ्रॉम नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे हेल्प विद सेवरल नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन्स।
0: और आखिर में एक ऐसी चीज जो हम में से ज्यादातर लोगों को काफी मात्रा में नहीं मिल पाती है, यानी कि फाइबर। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और बीज फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और ब्लड ग्लूकोज तथा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी सहायक हो सकता है।
1: सो करिश्मा, व्हाट्स द गोल्डन रूल? वैरायटी, वैरायटी एंड मोर ऑफ वैरायटी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी।
1: एंड वन ऑफ द कॉमन वंस इज आयरन डिफिशियंसी। आयरन इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन, व्हिच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, एंड Iron deficiency can lead to anemia and symptoms like tiredness, weakness and reduced concentration.
0: और इसके बाद विटामिन B12 आता है, ये रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के बनने और नर्व सिस्टम के

0: सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होता है.
1: एंड पीपल फॉलोइंग वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स मे नीड टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू देयर B12 इनटेक बिकॉज इट इज नेचुरली फाउंड मेनली इन एनिमल बेस्ड फूड्स. वी ऑल्सो हैव विटामिन डी एंड कैल्शियम, बोथ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स. कैल्शियम ऑल्सो सपोर्ट्स नॉर्मल मसल एंड नर्व फंक्शन.
0: और एक चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वो है आयोडीन. इसलिए संतुलित आहार में आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करना जरूरी है. इसके अलावा फोलेट भी होता है जो डीएनए बनाने और सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये खास तौर पे अहम माना जाता है.
1: एंड हियर इज एन इम्पोर्टेंट रिमाइंडर, डोंट स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट सिंपली बिकॉज यू थिंक यू माइट बी डिफिशियंस deficient in this. If you have concerns about a deficiency, speak to a qualified healthcare professional or appropriate dietary advice or testing. It's always better to eat something and provide the supplement rather than taking tablets for it.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. और हेल्दी खाना बोरिंग नहीं होना चाहिए. भारतीय रसोई में पहले से ही कितनी तरह की चीजें मौजूद हैं उन्हें देखिए. और साबुत गेहूं, ब्राउन राइस, ओट्स, जौ और मोटे अनाज जिसे मिलेट्स कहते हैं, दाल, राजमा, चना, काबली चना और मटर भी इनमें शामिल हैं.
1: एंड प्लीज इंक्लूड सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एज वेल. मिल्क, कर्ड, योगर्ट एंड आलमंड्स, वॉलनट्स, peanuts, flax seeds, and of course these days chia seeds is also gaining notice.
0: जी. और जो लोग जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके लिए तो अंडे, मछली, चिकन और दूसरे लीन मीट यानी कम वसा वाले मांस से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और विटामिन B12 तथा आयरन जैसे पोषक तत्व मिल सकते हैं.
1: Exactly. The healthy Indian thali can already have almost everything you need. It's about the right variety and portions. As we mark National Nutrition Week, let's remember that healthy living isn't about following extreme diets or completely changing our lifestyle overnight.
0: और ये छोटी छोटी टिकाऊ पसंद के बारे में बातें हैं. अपनी थाली में ज्यादा तरह की चीजें शामिल करें. साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर खाने की चीजों को चुनें.
1: इंक्लूड गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप मूविंग, दैट इज एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ मस्ट.
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके शरीर को जरूरी चीजें और एनर्जी देता है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर को एक्टिव और मजबूत रखने में मदद करती है. तो इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक में आइए एक आसान सा वादा करें, बेहतर खाएं, ज्यादा एक्टिव रहें, हेल्दी जीवन जिए.
1: बिकॉज हेल्थ इजंट अ वन डे चैलेंज, इट्स अ लाइफस्टाइल. ईट राइट, मूव राइट एंड मेक एवरी डे अ हेल्थियर डे.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. सबसे पहले बात हरियाणा की. हरियाणा सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए व्यापक योजना बनाई है. एक रिपोर्ट.
2: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर सभी बेसहारा गौवंश की टैगिंग की जाए. इसके अलावा खुले में पशु छोड़ने वाले लापरवाह पशुपालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया है. खुले में पशु छोड़ने वाले लापरवाह पशुपालकों के पकड़े जाने पर पहली बार 11,000 रुपए, दूसरी बार 21,000 रुपए का जुर्माना होगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर FIR दर्ज की जाएगी. ऐसे पशुपालकों को मुफ्त टीकाकरण और बीमा जैसी सरकारी विधाओं से वंचित कर दिया जाएगा और उन्हें नेगेटिव सूची में डाला जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलों में गौ अभयारण्यों में चार दीवारी तथा हरे चारे की व्यवस्था करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए नगर निकाय और पशुपालन विभाग मिलकर काम करेंगे. परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा.
1: And now from Haryana to Karnataka, the Karnataka Tourism Department will establish Karnataka Heritage and Cultural Foundation to systematically conserve the historical monuments, archaeological sites, museums and cultural assets there. We have more on this from our correspondent.
3: The Tourism Department in Karnataka has come out with this important initiative to conserve our historical monuments, archaeological sites, museums and cultural assets. It has proposed a foundation under the Department of Archaeology, Museums and Heritage as a structured platform that will seek private participation to adopt a monument for conservation, restoration and infrastructure development of historical monuments. The Tourism Department has

0: इसके साथ ही आज प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक अशेष्ठ प्रसाद मित्र की पुण्यतिथि है। वे रेडियो विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जाने जाते हैं और उनका प्रमुख शोध रेडियो तरंगों और वायुमंडलीय विज्ञान से जुड़ा हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके साथ ही आज प्रसिद्ध भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक रंगास्वामी नरसिम्हन की पुण्यतिथि भी है। उन्हें भारत में कंप्यूटर विज्ञान के शुरुआती और महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में गिना जाता था। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान तथा एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। नरसिम्हन को उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था।
1: And we also celebrate Pyare Lal Ram Prasad Sharma Ji's birthday today. He's a legendary music composer who partnered with the late Lakshmikant Shantaram Kundalkar to compose timeless soundtracks for over 500 Hindi films in the 60s and the 90s. And he still continues to receive heartfelt tributes from fans, reality shows and fellow artists for his monumental contribution to Indian cinema. Pyare Lal was honored with the prestigious Padma Bhushan in 2024 for his lifelong mastery of music. Their legendary melodies include a long list, so why not listen to a medley of a few of his creations?

0: और इसके साथ ही 1926 में आज ही के दिन उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे और खास तौर पर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्हें बांग्ला सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में गिना जाता था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 के दशक में की। अभिनेत्री सुचित्रा सेन के साथ उनकी जोड़ी बांग्ला सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में शामिल हुई। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया। वहीं हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। उनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों में छोटी सी मुलाकात, अमानुष और आनंद आश्रम जैसी फिल्में शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी फिल्म से ये डायलॉग और सॉन्ग।
1: इंस्पेक्टर साहब, एक जमाना था जब ये महिम घोषाल मेरे यहाँ दो कौड़े का कारिंदा था, और ये पीतू का बच्चा सारा जरवान था। आज ये मालिक बना बैठा है और मैं एक बेघर इंसान। अगर ये लोग मुझे गाली दें तो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा।
2: इसलिए हुल्लागर्दी करोगे, पुलिस के आदमी को पीटोगे।
1: अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मुझे गाली देगा और ये पीतू साला जाकर गरीब नसीरुद्दीन की नाव खोल ले जाएगा तो
2: फैसला तुम करोगे।
1: हाँ करूंगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ बेल्जियम की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने पहलगाम हमले की फिर से कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों देश आतंकवाद के बदलते खतरों से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत बेल्जियम संयुक्त आतंकवाद निरोधक कार्य समूह का गठन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। श्रीमती सीतारामन ने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:10 और वक्त कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का ये सफर आपके साथ तय करूंगी आज मैं नईम अख्तर और हम और आप साथ रहेंगे 5:30 बजे तक। गीत संगीत किस कार्यक्रम गाते गुनगुनाने तक मैं आपके साथ 5:30 बजे तक का साथ है। वैसे तो एफएम गोल्ड तो आपका 24 घंटे का साथी है, उसके बाद भी आपके साथ कार्यक्रम जारी रहेंगे। खैर अभी हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। कार्यक्रम आप जानते ही हैं कि 80 और 90 के दशक के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम को 1994 की फिल्म कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म के इस बहुत खूबसूरत से गीत से।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: पांच बजकर 16 मिनट 34 सेकंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड कार्यक्रम गाते गुनगुनाते और गाते गुनगुनाते में एक गीत अभी हमने सुना जो 1994 की फिल्म कभी यहाँ कभी ना का था। इस फिल्म में जो मुख्य चीज थी वो थी फिल्म में अंडरवर्ल्ड का होना। और एक और गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है 1988 की फिल्म दयावान। इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अंडरवर्ल्ड का बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाया गया है। तो लेकिन बात यह है कि इतनी खूंखार किस्म की बात के बावजूद, फिल्म के ऐसे ताने बाने के बावजूद, इन फिल्मों में जो गीत थे वो इतने खूबसूरत, इतने मधुर थे जो आज भी याद किए जाते हैं। ख़ासतौर पर दयावान फिल्म का जो गीत अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गीत तो इतना पसंद किया गया कि अभी कुछ अरसा पहले उसका रीमिक्स भी आया था।

0: with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते का आखिरी गीत आपकी नज़र करने के तुरंत बाद नईम अख्तर आपसे इजाज़त लेगी, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि जो गीत अभी हमने सुना दयावान फिल्म का, इससे एक कनेक्शन मेरा खुद का पर्सनल भी है कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब बहुत छोटी थी, उतनी अकल नहीं थी, तो इस गीत की मुझे एक लाइन पर हमेशा बड़ा ऑब्जेक्शन होता था। आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार, क्यों नहीं कहते, बेहिसाब क्यों कहते हैं। और मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई जब अब से कुछ अरसा पहले इस गीत का रीमिक्स आया और उसमें बेहिसाब का बेशुमार हो गया। खैर, ये तो एक पर्सनल और मतलब बचपने वाली बात है। एक गीत आपको सुनवा रहे हैं जो दयावान से सही 10 साल बाद 1998 में रिलीज़ हुई थी, जब प्यार किसी से होता है। तो सुनिए ये गीत और नईम को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के तुरंत बाद आपके लिए होगा नॉर्थ ईस्ट डायरी।

0: ठीक नहीं था, मतलब बिगड़ गया था पूरी तरह से। तो एक दो दिन तो मैं पूरी तरह से बीमारी पड़ी रही, और 77 का रन था जिस दिन। तो उस दिन से एक दिन पहले मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट की थी कि मैं कल करूं या ना करूं, रन करूं या ना करूं। तो उन्होंने देखकर फिर कुछ क्वेश्चन किया, तो उसके बाद कर सकते हो बोला। तो मैंने 77 किया। तो ये 77 किलोमीटर के अल्ट्रा मैराथन पूरी करना मेरे लिए आसान नहीं था। कई बार शरीर थक गया और मन ने रुकने को कहा, लेकिन मैं खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ती रही। रास्ते की खूबसूरत हरियाली वादियों ने मेरा उत्साह बनाए रखा। तो फिर 30 को, 30 तारीख को फिर जो था 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन था, 21 किलोमीटर जो सुमदो में हुआ था। तो उसमें 21 किलोमीटर की दौड़ में अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करना मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी का पल था। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि वो रास्ता बहुत ऊपर की तरफ था ना, जो ऊंचाई की तरफ था, 10 किलोमीटर ऊंचाई की तरफ ही दौड़ना था, उसके बाद ही नीचे फिर आना था। तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं स्पीति में है सिक्किम का प्रतिनिधित्व कर सकी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से हम अपने सोच से कहीं आगे जा सकते हैं। ये 77 किलोमीटर जो अल्ट्रा मैराथन हुआ था उसे काजा जो कुंजुमला वैली में हुई थी, जहाँ पे जो हाईएस्ट ब्रिज अल्टीट्यूड ब्रिज जो था वो होके गए थे, जो कि मोनास्ट्री के नीचे नीचे करके वो रूट ऐसा था। तो काफी अच्छा अनुभव रहा, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ।
1: सिमिलरली गंगा हंग सुब्बा आल्सो सेक्योर सेकंड रनर अप इन द ओपन 77 किलोमीटर category and first position in his S category in the 42 kilometer event with Moinak Chatterjee, D. Ramdulal, Akashvani News Gangtok for Northeast Diary.
2: From laying the foundation for modern education to envisioning planned urban development and stronger connectivity, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur played a transformative role in shaping Tripura's future. Revered as the architect of modern Tripura, his visionary leadership continues to inspire generations. Our Agartala correspondent Suban Bhattacharji brings us a report on his enduring legacy.
3: There are few leaders in Tripura's history whose vision continues to shape the state's progress even today. Among them, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur stands out as the true architect of modern Tripura. Born on August 19, 1908, Maharaja Bir Bikram ascended the throne at a young age. Despite his short reign, he introduced several visionary reforms that laid the foundation for Tripura's modern development. Pradyot Kishore Dibbarman, a member of the royal family of Tripura, said that due to the efforts of the late Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur and the late Maharani Kanchan Prabha Devi, Tripura got the opportunity to become part of the Indian Union. As a result, today we have the honor of identifying ourselves as citizens of India.
4: वो सिर्फ महाराजा नहीं थे सिर्फ जनजाति के लिए या बंगालीज के लिए या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस के लिए, वो एक देश प्रेमी थे। आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं क्योंकि कंचन प्रभा देवी जानते थे कि महाराजा का सपना है कि हम एक हिंदुस्तान में रहे, ना कि पाकिस्तान में। और उस सपने को पूरा महाराजा तो जिंदा नहीं रहे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर राजमाता कंचन प्रभा देवी, जब महाराजा का देहांत हुआ, कंचन प्रभा देवी वॉज ओनली 35 ईयर्स ओल्ड। उस समय उनके ऊपर कितना दबाव था, कितना प्रेशर था, तभी भी 3 बच्चे उनके पास, मेरा पिताजी सिर्फ 14 साल, तभी भी उनका एक डिसीजन आज हमें हिंदुस्तानी बोलने का अवसर देता है।
3: Under his leadership, Maharaja Bir Bikram College was established, which remains one of the state's premier institutions of higher education. He also promoted the expansion of schools and encouraged modern education across Tripura. His vision vision extended beyond education. Maharaja Bir Bikram introduced administrative reform, promoted planned urban development, improved road connectivity, and strengthened public infrastructure. His efforts transformed Agartala into a well-planned town and laid the groundwork for efficient governance. One of his most remarkable contributions was providing land for the airport of Agartala. Today, the Maharaja Bir Bikram Airport stands as a lasting symbol of his foresight and commitment to improving connectivity between Tripura and the rest of the country. Another royal family member, Rajkumari Pragya Deb Barman, also remembered his role as the architect of modern Tripura.
5: उन्होंने जो भी कुछ किया अभी हम लोग पूरा अपना त्रिपुरा में हम देख सकते हैं. जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, MBB कॉलेज हो या आपके धर्मनगर में कॉलेज है, उसको छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाना, डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना त्रिपुरा में, वोटिंग राइट्स, उसको छोड़ के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाना, अगरतला टाउन प्लानिंग, और सबसे जो बड़ा उनका जो विजन था वो था आपका लैंड रिजर्वेशन. जो आज का जो TTADC है, इट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ जो महाराजा ने इन्विजन किया था, ताकि हमारे लोगों को बचाकर अपना लैंड राइट्स दे सके. तो ये सबका जो भी महाराज ने हमारे सबके लिए किया, धर्म जाति ये सब नहीं देखा महाराजा ने कभी भी. और आजकल के जमाने में लोग वोट्स लेने के लिए, पावर में आने के लिए, ये सब छोटे छोटे चीजों को लेकर हमारे कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में बहुत कुछ पैदा किए हैं. महाराजा के अंदर में जितना प्यार था अपने लोगों के लिए, ये हमको दोबारा कल्टीवेट करना चाहिए.
3: इवन बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, महाराजा बीर बिक्रम एनविजन्ड अ मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव त्रिपुरा एज फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच वर वेल अहेड ऑफ देयर टाइम. फ्रॉम एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर लिफ्ट एन एंड्यूरिंग लीगेसी. हिज विजन कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस, सिक्योरिंग हिज प्लेस इन हिस्ट्री एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा. फॉर नॉर्थ ईस्ट डायरी, सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला.
2: The government of Arunachal Pradesh has sought details from district authorities about residents from the state who are missing in the floods in Nepal. Our Itanagar correspondent Manoj Kumar Sharma brings us this report.
6: The government of Arunachal Pradesh directed all deputy commissioners to submit details of persons from their respective district who may have travelled to Nepal and gone missing in the devastating flash flood there. The exercise has been initiated following an urgent request from the National Disaster Management Authority, NDMA, which sought the details of persons who may have lost contact with their families after the disaster, an official notification said. The Arunachal government has asked the deputy commissioners to collect and compile the names and contact details of the state's residents missing in Nepal from their respective district so that effort can be made to establish contact with their families and extended assistance. The consolidated information will be shared with the authorities concerned for further action, an official communication issued by Department of Disaster Management said. The flash flood, triggered by massive collapse of ice, rock and debris in the Himalayan region along with the Nepal-Tibet border, has caused widespread devastation, sweeping away homes and damaging village, roads, bridges and other infrastructure. For Notice Diary, this is Manoj Kumar Sharma, Akashwani, Itanagar.
2: Mizoram is stepping up efforts to establish itself as the winter capital of India, with the state government positioning the winter festival as a platform to showcase the state's unique winter experience, culture, tourism and entrepreneurial potential. Our Aizawl correspondent Isaac brings us this report.
7: Mizoram is gearing up for the winter festival as part of the state government effort to establish the state as the winter capital of India. The organizing committee for the festival met here at Aizawl under the chairmanship of the Chief Minister Lal Duoma to discuss preparations for the event. Lal Duoma said that they are actively working to establish Mizoram as the winter capital of India, and the festival would serve as a platform to showcase and promote entrepreneurship in the state. He also said the festival is being spearheaded by the tourism department. Its success would require coordination among various government departments. He also directed departments to identify and take responsibility for activities that could be undertaken within their respective areas. Several events have been planned as part of the winter festival, including an angling event by the fisheries department, a bamboo innovation exhibition by the commerce and industries department, and a photography exhibition by the information and public relations department, according to officials. The festival will also feature Christmas tree decorations, a Christmas parade, and several other programs. Mizoram recorded a tourist footfall of over 5.37 lakh during the period spanning between January and June this year. Officials said that the arrival of tourists has significantly increased in the state after the opening of the Bairabi-Sairang railway line, which linked the state capital Aizawl with the rest of the country through a rail network in September last year. For Notice Diary, this is Isaac from Kasvani News, Aizawl.
2: As Janmashtami brings people together to celebrate the birth of Lord Krishna, Manipur too comes alive with devotion, music and vibrant cultural traditions. From temple prayers and devotional singing to the graceful movements of Manipur Ras Leela, the festival reflects the deep connection between faith and the state's rich cultural heritage. Let's now explore the spirit of Krishna Janmashtami in Manipur.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दर्शाई। पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space, and advanced technologies. Both leaders also welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-EU Free Trade Agreement and called for its timely implementation. On defense and security, Belgium conveyed solidarity with India in the fight against terrorism and condemned the terror attack in Pahalgam. Both sides agreed to strengthen cooperation against terrorism and explore the establishment of a joint working group on counter-terrorism. India and Belgium today exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further stated that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He stated that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: In his press statements, Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, hailed India as the largest democracy with the fastest growing economy, terming New Delhi as an important ally.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत किया है और विकास के नए अवसर तैयार किए हैं। भारत की इस आर्थिक यात्रा में निर्यात की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कभी बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देश के रूप में देखे जाने वाला MSME की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में MSME किसान, कारीगर और छोटे कारोबारी ऐसे उत्पाद तैयार करते हैं जिनकी घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी मांग है। इसलिए भारत के निर्यात को बड़े औद्योगिक केंद्रों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों, कस्बों और जिलों तक ले जाना जरूरी है। यहीं पर डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स यानी DEH पहल की भूमिका सामने आती है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग जिलों की आर्थिक ताकत और वहाँ मौजूद निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें वैश्विक ODOP की सोच से किस तरह आगे बढ़ती है और स्थानीय MSME किसानों तथा कारोबारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में इसकी क्या भूमिका है। श्रोताओं, भारत के अलग अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों की अपनी एक अलग पहचान रही है। कहीं कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण है तो कहीं हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान या दूसरे स्थानीय उद्योग। इन्हीं स्थानीय क्षमताओं को आर्थिक अवसर में बदलने की सोच से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी कार्यक्रम ने एक समूचे अभियान का रूप ले लिया। आइए इस विकास क्रम को विस्तार से समझते हैं।
2: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के एक राज्य पहल के रूप में हुई थी। इसे मुरादाबाद के पीतल उद्योग को आधार बनाकर शुरू किया गया और बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुख्य विचार था कि हर जिले से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए और उसकी बाजार पहचान मजबूत की जाए, यानी स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पहचान को आर्थिक अवसर

0: से जोड़ा जाए। लेकिन किसी उत्पाद की पहचान और उसकी ब्रांडिंग के बाद अगली चुनौती ये थी कि उसे बड़े बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए किस तरह तैयार किया जाए। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए 2019 में डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स की शुरुआत हुई और 2023 की विदेश व्यापार नीति में इसे औपचारिक रूप दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जोर मुख्य रूप से स्थानीय उत्पाद की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार पर था, जबकि डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स पहल ने इसका दायरा बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देने और पूरे स्थानीय तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दिया। इस नए अभियान के तहत वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की अगुवाई में अलग अलग सरकारी योजनाओं, संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल को एक अलग वित्तीय योजना के बजाय ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है जिसमें केंद्र और राज्य की मौजूदा योजनाओं, संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल बनाकर जिलों में निर्यात का माहौल तैयार किया जाता है। इसी व्यवस्था को कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क कहा जाता है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज यानी DEPCs काम करती है। ये समितियाँ जिले में निर्यात की संभावनाओं की पहचान करती हैं, स्थानीय समस्याओं को समझती हैं और उद्योग, निर्यातकों तथा दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर उनके समाधान की दिशा में काम करती हैं। जनवरी 2026 तक DEH पहल देश के 770 से अधिक जिलों को अपने दायरे में ला चुकी थी। ये इस बात को दिखाता है कि निर्यात की योजना अब कुछ बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय देश के अधिक से अधिक जिलों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। श्रोताओं, इस पहल के तहत कृषि, विनिर्माण, हस्तशिल्प और GI टैग वाले उत्पादों सहित अलग अलग क्षेत्रों की निर्यात क्षमता की पहचान की जा रही है। उदाहरण के लिए गुजरात के साबरकांठा तक पहुंच मिल सकती है। वहीं डाकघर निर्यात केंद्रास छोटे कारोबारियों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले निर्यातकों के लिए कम लागत वाली डाक निर्यात सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इनमें दस्तावेज, पैकेजिंग और छोटे सामान भेजने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्यात के लिए जरूरी जानकारी और कौशल बढ़ाने के लिए DGFT के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर जिला प्रशासन जागरूकता और स्किलिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें लॉजिस्टिक्स की योजना, निर्यात की प्रक्रिया, पैकेजिंग और नियमों का पालन जैसे विषय शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों में ECGC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इंडिया पोस्ट और एक्सिम बैंक जैसे संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष पहल भी की जा रही है। DGFT ने एक्सिम बैंक के साथ मिलकर ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट यानी ग्रिड कार्यक्रम के तहत 6 जिलों अनंतपुर, रायपुर, सोलन, त्रिपुर, कानपुर और कोल्हापुर को चुना है। इसमें जिले की विशेष जरूरतों और उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को समझकर उनके लिए अलग अलग उपाय तैयार किए जा रहे हैं। अगर कोई कारोबारी इस पहल का लाभ लेना चाहता है तो सबसे पहले वे अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में शामिल उत्पादों और सेवाओं की जानकारी ले सकता है। नए निर्यातकों को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी IEC के लिए DGFT के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए सरकार द्वारा आयोजित बायर सेलर मीट्स, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना भी वैश्विक बाजार की जानकारी और खरीदारों तक पहुंच बनाने का माध्यम है। समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: श्रोताओं, भारत की निर्यात यात्रा अब एक नए चरण में पहुंच रही है। 2025-26 में कुल 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के वस्तु निर्यात और 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के सेवा निर्यात का लक्ष्य शामिल है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल बड़े उद्योगों और बड़े शहरों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। भारत के अलग अलग जिलों में मौजूद MSMEs, किसान, कारीगर और स्थानीय उद्योग भी इस निर्यात यात्रा का हिस्सा बने। यही डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब जैसी पहल का बड़ा महत्व है। ये अभियान आत्मनिर्भर भारत की व्यापक सोच से भी जुड़ता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग रहना नहीं, बल्कि अपनी उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करके भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजार में मजबूती से पहुंचाना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखर वार्ता। रक्षाक्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा। न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम्। तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धाया अन्तिमाष्ट चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेण आशयपत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनैतिक प्रशिक्षणम् चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य इंधन आपूर्ति श्रृंखलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते। किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
1: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
0: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमन्त्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामन्त्रिणा थियो फ्रेडकिन इत्यमुना सह शिष्टमण्डलस्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवत् उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनं कृतवान्। तेन हिमसरोवराणां विस्फोटेन सम्भाव्यमान जलाप्लावनस्य हिमस्खलनस्य च विपद सम्मुखीकरणाय सतत सतर्कता पालनाय निर्देशो दत्तः। सचिवेन संसूचितं यत् आपद प्रबन्धन दलैः संकटग्रस्त क्षेत्रेषु 24 होराः तीव्र दृष्टिः स्थापनीया।

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमरीश जी।
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू अमरीश। Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals.

0: among others, and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा. सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ. भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए. सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई.
0: And before we begin the program and give you details of the top story, here's a disclaimer for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के मुख्य सूचकांक लगातार चौथे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 417 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा. इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले. हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके. कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points, or over 0.5%, to close at 76,153. The Nifty fell 41 points, or 0.2%, to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे. दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%, housing finance and capital goods gained around 1%, and mid-small private banks added 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%. Consumer durables fell 0.6% and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced, shares of 1,778 companies declined, and shares of 223 companies remained unchanged.
1: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ. पुनीत जी, जैसा बाजार का हाल हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है, कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
2: तो अमरीश जी, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहां पर सेंसेक्स में काफी भारी गिरावट है, लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी. और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी है. स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त

0: की, तो एक काफी मिला जुला सा बाजार है। और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं, तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, FIIs की जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है, वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा है कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था, ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। $127 बिलियन, पहले अनुमान आया था $20 बिलियन का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे $50 बिलियन के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन इतने ज्यादा फॉरन फ्लोज थे कि RBI को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी। उसके बावजूद $127 बिलियन जो हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा है, वो भारत में आए। तो ये कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, और मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में हमको बाजारों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए।
1: पुनीत जी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि जल्दी इस स्कीम को बंद किया गया और हम देख रहे हैं रुपए में जो मजबूती आई है, तो क्या कारण था कि अगर ज्यादा इनफ्लो आ जाता तो क्या उससे प्रॉब्लम होने वाली?
0: नहीं, देखिए दो प्रॉब्लम इसकी होती है। पहली प्रॉब्लम यह है कि जो आप जिस स्कीम के तहत ये लेकर आ रहे हैं, उसकी थोड़ी कॉस्ट RBI के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि RBI ने जो एक्सचेंज का जो रिस्क है, जो प्रीमियम है, वो RBI ने लिया, तो उसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड्स RBI को उसमें ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा आप देखेंगे जो आने वाला समय है, RBI की बैलेंस शीट पे इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। दूसरा, जो ये $130 बिलियन का इनफ्लो हुआ है, इस वजह से आज ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको कि बैंकिंग सिस्टम में 10 लाख करोड़ रुपए सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है। और जो ओवरनाइट रेट है, जो ओवरनाइट बैंकिंग रेट कहलाता है, ओवरनाइट बैंकिंग रेट रिजर्व बैंक के एक टारगेट रेट होता है कि रिजर्व बैंक एक राइट रेट मेंटेन करना चाहता है, उस रेट के नीचे आ गया है ओवरनाइट रेट। यानी बैंकों को ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, उनको जो पैसा सरप्लस बैंक में है वो डिप्लॉय इतनी फास्ट तो देखिए कर नहीं सकते। 10 लाख करोड़ रुपए आप इमीडिएटली आप उधार नहीं दे सकते, डिप्लॉय नहीं कर सकते, और वो बैंकों की ट्रेजरी में वो पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट पड़ रही है बैंक के ऊपर। बैंक ने ऊपर रेट पे बोरो किया हुआ है, 6.5% FCNRB में बैंक को रेट दिया है उन्होंने, तो इसका असर नेगेटिव पड़ता है कि ज्यादा पैसा भी, और जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसका नुकसान होता है, और यही कारण है कि RBI ने ऐसा कदम उठाया है।
2: पुनीत, यू नो markets, of course, like we said, so today it's the fourth day that the markets, this week at least, that the markets have, you know, ended in red, closed in red. But this is not a one-off. We've been seeing this volatility for a few months now, over a period of time. Now, for those of the investors, for those people who do not have the appetite to invest in a stock market, who are risk averse, at this moment, if they do not want to, you know, venture into the stock market, or if they are already in the stock market, but they are looking at other avenues, what are the other options, especially given the kind of geopolitical situation right now there is, what are the other options they have for investment?
0: Anubha, it's a very good question you put forth, and it's very relevant in today's thing. Suppose you don't want to invest in markets, you don't want to take that risk. Government over the past few years, particularly last 5-6 years, has introduced many interesting instruments which have very low risk and a higher return than FDs, bank deposits that usually people go for. For example, government has a lot of infrastructure investment trusts, which are called InvITs. Yes. They usually give about 8-10%, maybe more in some cases, a 10-12% kind of return annually, and they're absolutely safe. Most of them are very safe. You have real estate investment trusts, REITs, which have been introduced. Yes. And also government bonds, which are now listed on the exchanges. If you invest in government bonds, then you have a return of about 7-7.5%, 8%, so which is higher than FD rates. So there are a large number of instruments. Plus, you also have what we typically call hybrid funds, where there's a large proportion of money invested in fixed income instruments and less in equities. So there are plenty of investment options for normal investors, and for senior citizens, of course, there are many schemes which are

0: when I look at all this, it gives me a lot of satisfaction that our business activity continues to be robust.
1: Right.
0: It continues to expand.
1: Yeah.
0: Many other countries have seen huge challenges. And here I might mention the fact that China is facing a crisis in manufacturing.
1: Okay.
0: There is a lot of talk right now that China has to come out with a stimulus to boost its... And this is despite China having the highest possible exports, highest numbers of exports in the last many, many years. That means China's domestic economy is not doing well at all because export numbers are very, very large. So clearly, I think given these challenges and the context of the geopolitical challenge difficulties we have, I think these numbers are pretty good. And the moment the inflation pressures go down and I think the war sooner or later comes to an end, I think we'll do well.
1: Right.
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और बेल्जियम के बीच आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और भरोसेमंद सप्लाई चेन दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आज हुए समझौता ज्ञापन से आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी.
3: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है. इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे. बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है. हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है. हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे.
2: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया. पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में, और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अगर इसको हम इस नजरिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इस इन समझौते के क्या मायने
0: हैं? देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से. तो एक तरफ हम देखते हैं कि एफटीए हम यूके से साइन करते हैं, ईयू से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से साइन करते हैं. तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है. और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा भारत की प्रगति में, तो मुझे लगता है ये जो एक समझौता है उस लक्ष्य से वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा.
2: और एक और अच्छी खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत आधार देंगे. उन्होंने दुनिया भर में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया. तो पुनीत जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफी विस्तार दे रहा है, और जो अभी हमारी जीडीपी की फिगर्स आई हैं उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहें?
0: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है. प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है, और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है. और इसलिए ये जो बास्केट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. और सच बताऊं आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा. ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप

0: देखेंगे, जो नंबर्स हैं उसमें 2 से 3 वर्ष 4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा।
1: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने
0: करीब
1: वाला है।
0: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और एक बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
2: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, क्वालिटी एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग। एड्रेसिंग द 66th Annual Convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The Union Minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, you know, like I just read that the auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
0: So Anubhal, like you said, I think if for any country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids to ethanol driven to mixed fuel. I think that is the way forward. The industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for us.
2: So R&D is one area where we need to really work for.
0: Absolutely. And I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
1: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225

0: के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए। पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आप देखेंगे कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफ़ी स्टेबल है।
1: Okay. Let's move on to the U.S. markets. U.S. equities ended higher yesterday as bond yields eased slightly from their multiple-year highs. The Dow Jones Industrial Average rose 0.6%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite gained almost 0.5%. Puneet, we are seeing similar, you know, what we are seeing in the Indian markets. That kind of volatility is also being seen, you know, world of course, the world over, because it's at the end of the day, we are living in a global village, you know, it's a global economy. But moving forward, where do you see the, how do you see the U.S. markets behaving, or even, you know, the U.S. economy moving ahead? Because there's a lot of talk about the interest rates, which was being talked about that at the beginning of the year, that, you know, probably one there's going to be one cut in the before the end of the year. So how do you see that?
0: So to just to add to that, because so Fed fund rates, we have the probability, there's a poll which goes on in US. So we have a fairly good idea what are expectations. Right now the expectation is that 63% probability is there that there will be an interest rate cut in the next Fed meeting. I do not personally believe in it, but assume, because I don't think they're going to increase the interest rate before the next midterm elections in USA. However, I think US economy is very volatile, like the US geopolitical situation right now, and it's all linked, you know, to each other. But my guess is that the US continues to do very well, but it will be a volatile thing. And government in US is, of course, promised to pump in a lot of liquidity, a lot of money into the system to bring down these bond yields. Let's see if it happens or not.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6 week highs after fresh US strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
2: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 153,941 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 1.8% बढ़कर 232,533 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज।
0: अम्बरीश जी, देखिए जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में, यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है। काफी वॉलेटाइल है। परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई। ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा। तो पूरा एक वॉलेटिलिटी का माहौल या इंस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है, और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद।
1: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत, यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a, you know, volatility, but given the fact that we were earlier discussing our foreign exchange reserves are very comfortable, so it's a good news for us given the way the oil prices are moving.
0: So Anubha, oil prices of course are a matter of concern, and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now,
1: right.
0: And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
2: Puneet ji, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अमरीश जी।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्ट्रो को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और बेल्जियम के बीच सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभुदयाल और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री श्री थियो फ्रैंकिन और अधिकारियों व बिजनेस लीडर्स का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी भारत आया है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह पहली भारत यात्रा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर प्रभु दयाल। अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अम्बेसडर दयाल, बेल्जियम के प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा के संदर्भ में क्या आप हमें भारत बेल्जियम संबंधों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि बता सकते हैं?
2: बेल्जियम यूरोपियन देशों में बिल्कुल पहले स्तर पर है जिन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की थी सितंबर 1947 में, जब भारत जस्ट आजादी हुआ था। और इस तरह से धीरे धीरे करके एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बन गई दोनों कंट्रीज में, जो कि स्थापित है डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म के आइडियाज पे। तो ये एक हिस्टोरिक फाउंडेशन है जिसके बैकड्रॉप में बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर बार्ट डी वेवर अभी भारत आए हुए हैं, और उनकी जो यात्रा 2-4 सितंबर की है, ये एक तरह से माइलस्टोन है बायलैटरल एंगेजमेंट्स में। जो भारत और ईयू का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है हाल में, उसके साथ एक तरह से ये कोइंसाइड करती है। तो कई डिकेड से जो इकोनॉमिक टाइज हैं भारत और बेल्जियम के, वो बहुत अच्छे रहे हैं, और बायलैटरल ट्रेड $13 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन बायलैटरल ट्रेड के अलावा जो हमारी रिलेशनशिप है, ये बड़ी डाइवर्सिफाइड है, और कई क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब में हमारे जो रिश्ते हैं फैलते जा रहे हैं। और अब तो कुछ स्ट्रेटेजिक डोमेन्स जैसे स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन, इन तक भी हमारे संबंध अब बढ़ गए, और जो हमारे कई स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको और ताकतवर बनाने की कोशिश है। जैसे भारत की जो एक कोशिश है परमानेंट मेंबर बनने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका बेल्जियम हमको हमेशा से सपोर्ट करता है। तो इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण।
1: अम्बेसडर दयाल, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बेल्जियम संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में क्या कहा।
3: फ्रेंड्स, इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज हमने इन संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फ्रेंड्स, बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है। हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है। हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे, और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे।
1: अम्बेसडर दयाल, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना ज्वाइंट प्रेस वार्ता में, तो दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और गहरा करने का एक संकल्प लिया है, और दोनों नेताओं का ये मानना है कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना किया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि दोनों देशों के बीच में $13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, और दोनों नेताओं का ये मानना है कि अगले 5 वर्षों में उसको दुगना किया जा सकता है। आपके विचार में ये कौन से क्षेत्र हो सकते हैं?

0: हैं जिन पर दोनों देश साझेदारी को दुगना करने के लिए और अपना ध्यान दे सकते हैं।
1: अभी तक जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत हद तक डायमंड ट्रेड पे बेस्ड रहे हैं, लेकिन अब जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक फैल जाएं, और जो हमने स्पेसिफिकली टारगेट किए हैं सेक्टर्स वो हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र है, इसमें बेल्जियम का जो एक आईमेक इंस्टीट्यूट है वो भारत के इकोसिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो इसके अलावा दोनों कंट्रीज हैं वो फोकस कर रही हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको फिनटेक कहते हैं, मैरिटाइम, पोर्ट लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पे भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से ब्लूप्रिंट है, ये भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे उसको बहुत बढ़ावा मिला है, और साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाए गए उनसे कोशिश है कि क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट तेजी से हो सके।
0: एम्बेसडर दयाल, आगे बढ़ते हुए आपने कार्यक्रम की शुरुआत में इंडिया ईयू एफटीए का जिक्र किया था, तो इसी में आपसे मैं थोड़ा और विस्तार से ये जानना चाहूंगी कि आखिर भारत ईयू पार्टनरशिप जो एफटीए में हुई है उससे भारत बेल्जियम के आर्थिक साझेदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
1: देखिए, जो इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे जो भारत और बेल्जियम के बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे ट्रेड बैरियर्स हटते हैं और ग्रोथ की नई दिशाएं खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं। अब जो भारत का ईयू के साथ ट्रेड बढ़ रहा है उसमें बेल्जियम जो है वो दूसरे स्थान पर है। जो हमारे ईयू कंट्रीज के साथ ट्रेड है उसमें बेल्जियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नंबर दो पे आ रहा है, और इसकी वजह से बेल्जियम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर टैरिफ कम होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पे, केमिकल्स और मशीनरी पे, इन सब से जो ये बायलैटरल ट्रेड बहुत बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे जो कस्टम्स ड्यूटीज कम हुई हैं दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और ईयू की तरफ से, और जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस थे वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रेडिंग प्रोसीजर्स है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज वो बहुत बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा देखिए, जो ओवरऑल पार्टनरशिप जैसे तंदुरुस्त होती है तो जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जैसे डायमंड ट्रेड, इनको ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ावा मिलता है और इनकरेज मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक लीगल फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छे होने की वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और बेल्जियम का, इससे जो सप्लाई चेन है उसको तंदुरुस्ती मिलेगी, और साथ ही साथ जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इनके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा।
0: अम्बेसडर दयाल, आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि कई सारे एमओयू पे भी हस्ताक्षर किए हैं दोनों ही नेताओं ने, डिफेंस के क्षेत्र यानी कि रक्षा के क्षेत्र और ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आप क्या हमें संक्षेप में दोनों ही एमओयू के जो महत्वपूर्ण विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं।
1: देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इसमें दोनों नेशंस ने बड़ा महत्वपूर्ण विस्तारित क्षेत्र से संबंधित एमओयू साइन किया है, जिसमें कोलैबोरेशन होगा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन्स के संबंध में, और साथ ही साथ जैसे ऑफशोर विंड, सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और स्टोरेज प्लांट्स ऐसे जो पंप स्टोरेज तजीज करते हैं, इन सब से संबंधित कोऑपरेशन की बात है। तो ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो जैसे हम बना रहे हैं ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, और एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो दोनों देश मिलकर स्थापित हमने की है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में, तो इसके साथ ही जो डिफेंस सेक्टर, इसमें हमारे दोनों देशों ने बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनका फोकस है इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप पे, और साथ ही साथ मिलिट्री एक्सचेंजेस पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे और एजुकेशन पे। अब जैसे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में ये है कि दोनों कंट्रीज साथ मिलके कंबाइंड एफर्ट से एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर बनाएंगे, खास तौर पे बेल्जियन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत के मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोलैबोरेट करके।

0: एक टैंक बनाएगी जिसका नाम रखा गया जोरावर लाइट टैंक। तो ये जो टैंक प्रोजेक्ट है, जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन की जो स्थापना की गई है और जो हम इसमें बढ़ावा देख रहे हैं, इस संबंध में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर का कहना है कि वो दिसंबर में ब्रसल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को और गहराई मिलेगी और मजबूती मिलेगी और उनके साझा भविष्य की ओर एक मजबूत कदम होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: मिनिस्टर मोदी, बिफोर आई कंक्लूड, लेट मी से हाउ मच आई लुक फॉरवर्ड to welcoming you in Brussels in December and maybe Antwerp. It would be such a great honor to receive you on an official visit on the occasion of the signing of the EU-India Free Trade Agreement. Your visit would provide an excellent opportunity to continue our conversation. India and Belgium have a shared history that reaches back centuries. Today we have shown that we also share a future. I came to New Delhi because I believe the best of our relationship is yet to come. And after our conversation today, I'm even more convinced of it. I thank you very much, Prime Minister, and thank all of you.
1: आखिर में अम्बेसडर दयाल, बहुत ही संक्षेप में आपसे आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। जब हम किन्हीं दो देशों को देखते हैं तो उनके बीच में पीपल टू पीपल टाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो जब हम भारत और बेल्जियम को देखें जिनके इतने पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो आपके विचार में भारत और बेल्जियम के पीपल टू पीपल टाइज कितने प्रगाढ़ हैं और कैसे इनको मजबूती मिल रही है?
0: देखिए, जो पीपल टू पीपल टाइज है इंडिया और बेल्जियम के बीच में, इनकी जो स्थापना इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण होती है कि हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, लगभग 35,000 नागरिकों का, जो बेल्जियम में रहता है और वहां काम करता है। साथ ही साथ हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो हमारे रिश्ते हैं वर्ल्ड वॉर वन तक पहुंचते हैं, जहां लगभग 130,000 भारतीय सैनिकों ने लड़ाई की थी बेल्जियम में, बेल्जियम बचाने के लिए। इसकी वजह से वहां पर एक मेमोरियल बनाया गया है जिसको कहते हैं मेनिनगेट मेमोरियल, बेल्जियम में है। साथ ही साथ देखिए, आज के युग में एंटवर्प में जो ग्लोबल डायमंड ट्रेड है, इसमें भारत के बिजनेसमैन वहां हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एजुकेशनल एक्सचेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, भारत से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स अब बेल्जियम में हैं, जैसे सिटीज खासतौर पे उनको आप देखेंगे ब्रसल्स में और ल्यूगो में एवरी ईयर वो जाते हैं, और इसकी वजह से जो लोकल टेक वहां है और एकेडमिक सेक्टर्स, उनको बड़ा फायदा होता है। साथ ही साथ देखिए, दोनों कंट्रीज को जो कल्चर से बहुत प्यार है, कल्चरल फेस्टिवल्स से, बेल्जियम में भारत की जो मूवीज है बॉलीवुड की, इनको बहुत चाहा जाता है, और इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है वहां पर बड़ी पॉपुलर है, और इससे ये हमेशा जो कल्चरल टाइज है इनको बहुत बढ़ावा मिलता है। तो मेरे विचार में ये पूरी जो टोटल पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये बहुत तंदुरुस्त और अच्छी है और सही दिशा में बढ़ती जा रही है।
1: अम्बेसडर दयाल, आप आज आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें भारत बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों पर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और बेल्जियम के बीच सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में

सांझ ढल चुकी है। आसमान पर सूरज की आखिरी किरण ने भी अपनी सुनहरी चादर समेट ली है और इस खूबसूरत शाम में आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। स्वागत है आपका सांझ ढले में। मैं हूं विभा और लेकर आई हूं संगीत की वही सुरीली धुन जिन्हें सुनकर यादें फिर से जी उठती हैं। तो शुरुआत करते हैं साल 1952 की फिल्म बैजू बावरा के उस गीत से जिसमें सुरों के साथ साथ भक्ति भाव की गहराई और ईश्वर के दर्शन की तड़प है। आवाज रफी साहब की।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ, और अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें पहली मुलाकात की मासूमियत है, प्यार की आहट है और दिल का वो मासूम सवाल, जाने ना नजर पहचाने जिगर, और आवाज लता मंगेशकर और मुकेश साहब की।

घड़ी की सुइयों की तरह हम भी रुख करते हैं अपने अगले गीत की ओर, जिसमें चांदनी है, रात की खामोशी है और है हेमंत दा की मखमली आवाज, जिसमें जादुई संगीत दिया एस टी बर्मन ने।

ये वो गीत हैं जो वक्त के मोहताज नहीं, जो सालों बाद भी दिल में वही जगह बनाए हुए हैं, या यूं कहें दिल में समाए हुए हैं। फिलहाल विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। केंद्र ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने केंद्रित हितधारक सहभागिता के माध्यम से दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रीय हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट हितधारक सहभागिता योजना पर भी चर्चा की और राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आग्रह किया। श्री यादव ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उनके सकारात्मक प्रयासों को आवश्यक सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में सितंबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के दौरान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों तथा अन्य उपायों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक और आयामी रणनीति के अंतर्गत कार्य कर रही है। श्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 24 घंटे जमीनी निगरानी, हॉटस्पॉट केंद्रित हस्तक्षेप और वार्ड स्तर पर सघन निगरानी पर केंद्रीय व्यापक बहुस्तरीय कार्यान्वयन रणनीति की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के तेखन डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 नई शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली और रेवाड़ी के बीच अंतर्राज्यीय EBus सेवा की भी शुरूआत की। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल समस्याओं की चर्चा करना नहीं बल्कि उनका स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि तेखन का 4 लेन वाला स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र वाहनों की उपयोगिता जांच को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। इस केंद्र की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 72,000 वाहन होगी, जिसमें 52,000 भारी या हल्के मोटर वाहन हैं और 20,000 दोपहिया वाहन शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि DTC बेड़े में शामिल की गई 50 नई EV बसें सरकार की सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि DTC हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित होने से क्षेत्र में EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पहुंच बढ़ेगी और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी जैसे कई स्तरों पर काम कर रही है।
4: मैं ये समझती हूँ कि क्लीन मोबिलिटी की ओर ये एक बहुत ही सशक्त कदम है और लगातार दिल्ली सरकार उस दिशा में बढ़ रही है जहाँ केवल समस्याएं नहीं उन समस्याओं को समाधान देने की बात हो रही है।
3: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली वासियों को स्वच्छ, सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद परिवहन देना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
0: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मल्टी यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम होने के साथ साथ यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी। उन्होंने बताया कि डक्ट का उपयोग तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थानों पर बिजली केबल, पानी और गैस की लाइनों, फायर हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक उपयोगी सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डक्ट के तकनीकी डिजाइन में हवादार, अग्नि सुरक्षा, रखरखाव के लिए सुगम पहुंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति में डिस्कॉम, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए चांदनी चौक में एक्सप्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोरसराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से का चयन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मल्टी यूटिलिटी डक्ट पहल अलग अलग एजेंसियों द्वारा अपनी अपनी जरूरत के अनुसार किए जाने वाले बिखरे हुए भूमिगत कार्यों के बजाय समन्वित शहरी उपयोगी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
2: दिल्ली सरकार ने आज 75 सीएम श्री स्कूलों में ईट वेल लिव वेल पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में ऐसे व्यवहार, आदतों और कौशल का विकास करना है जो उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जीने में सक्षम बनाए।
6: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल के बारे में कहा कि जिस प्रकार से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता बच्चों के सीखने की नींव तैयार करता है, उसी प्रकार बुनियादी कल्याण साक्षरता बच्चों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने की आधारभूत समझ तथा कौशल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 21 व्यक्तिगत आदतों, 7 सामाजिक कौशल और 7 पर्यावरणीय कौशल को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी और दूसरों की देखभाल करने तथा पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल करने के लिए तैयार करना है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: दिल्ली विश्वविद्यालय और एक विदेशी बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के अंतर्गत विदेशी कंपनी अपना एआई एंगेज डेवलपर प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाएंगे और इसके जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को एआई के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अगले साल तक 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे औद्योगिक उपकरण का इस्तेमाल करके एआई एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ उन्हें टेस्ट कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज विश्वविद्यालय में बने भारत के पहले कार्बन गार्डन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित इस कार्बन गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण की जो समस्याएं लोगों के द्वारा किए जा रहे असंतुलित कार्यों से पैदा हुई हैं, उसका समाधान अकेले तकनीक से नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विधि छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान की अपने विनियामक नियमों के अनुसार ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची

0: लेकिन हंगामा, अभद्रता, पीठासीन अधिकारी का अपमान और संवैधानिक प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने का प्रयास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शहर में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के कार्यालय बंद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर तक भारत मंडपम में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के विशेष पुलिस इकाई की आत्मरक्षा शाखा ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में 450 राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यशाला में कैडेट्स को आत्मरक्षा की विभिन्न व्यवहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह नई सुविधा अस्पताल चेन की लोगों की सेवा के 25 साल के सफर में एक और अहम पड़ाव है। यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया। यातायात पुलिस के अनुसार रोहिणी के स्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक यातायात और मार्ग परिवर्तन रहेगा। पुलिस ने लोगों को मधुबन चौक से हेलीपोर्ट तक भगवान महावीर मार्ग और उससे जुड़े मार्गों से बचने को कहा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर राजधानी में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और दही हांडी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका के भव्य समारोहों से लेकर कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर में जन्माष्टमी में आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारियों सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। राजधानी में आज हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त दा वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया।

0: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बर्ट द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला एक देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि देश 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का आंकड़ा पार कर चुका है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य की ओर देश की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2026 के अंतर्गत आयोजित एक रोड शो में श्री नाइक ने ये बात कही। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा भंडारण, हरित विनिर्माण और अभिनव वित्त पोषण को शामिल करते हुए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर्ड 2026 आज रांची के NUSRL में संपन्न हुआ। समापन सत्र में NUSRL के कुलपति प्रोफेसर अशोक आर पाटिल ने कहा कि सटीक और समावेशी मतदाता सूची लोकतांत्रिक भागीदारी की बुनियाद है और चुनाव की शुचिता और समावेशन को साथ साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। किदाम्बी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. India and Belgium have set an

ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं मंदिर श्री द्वारिकाधीश के साथ पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व

0: भाव एवं भक्ति के साथ शांति एवं सुचारू रूप से मनाया जा सके, इसके लिए शासन प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
1: भगवान जी की इस जन्मभूमि मथुरा में 5253वां भगवान जी का जन्मदिवस 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती 1:55 पर की जाएगी और द्वारिकाधीश मंदिर में भी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से भगवान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आप स्वयं यहाँ के साक्षी बनिए, पूरा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, बलदेव, गोकुल और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है और जो भगवान जी की लीलाओं की झांकियां हैं उनको हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जगह जगह सजाया है। 25 से अधिक स्थानों पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे शहर की सजावट देखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करके इसको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है। मैं सभी अपने श्रद्धालुओं का खुले दिल से, ब्रजवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध है वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम लोगों ने तय किया है कि भगवान जी का जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएंगे, तो श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि वो पॉलिथीन का, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उनके रुकने के लिए जहां वो रुकें, होटल हो, धर्मशाला हो या हमारे शेल्टर होम भी तैयार किए गए हैं, और वहां भी एक जिम्मेदारी का परिचय दें। रूट डाइवर्जन किया गया है उसका भी ध्यान रखें। पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके, जोन में डिवाइड करके लाइन ऑर्डर की ड्यूटी लगी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे श्रद्धालु आवें वो ब्रज की जो रज है उसमें आनंद लें, भगवान जी का दर्शन करें। जन्माष्टमी पे जो भी हमारे सारे मंदिर हैं, प्रमुख देवालय हैं, उनमें भी जाएं, लेकिन गरिमा का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं और हम आपकी सेवा के लिए लगातार कृतसंकल्पित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश, जो हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की रगों में रचा बसा है, जो प्रगति का द्योतक है, जो ज्ञान का द्योतक है, कर्म का द्योतक है, उस पे आगे चलते हुए न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपनों का जीवन सफल बनाएंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न होने का मौका देंगे। मैं पुनः जन्माष्टमी की अपने सभी साथियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, पूरे मथुरावासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि ब्रज जरूर आएं, ब्रज आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।
0: इस अवसर पर मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज की विरासत के संरक्षण को समर्पित संस्था ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सचिव IAS लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने पर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसी के मानते जनपद मथुरा में भी 2 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा। पूरे जनपद में हर जगह पे सजावट कराया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है, हॉट एयर बलून्स कराया गया है। 3 और 4 तारीख को पूरे जनपद में 21 अलग अलग जगहों पे जो हमारे जनपद के स्थानीय कलाकार हैं उनकी कला को भी आगे बढ़ाते हुए ये 21 जगहों पर उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। 3 तारीख को और 4 तारीख को एक शोभा यात्रा भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए ये कराया जाता है। और ये जो शोभा यात्रा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 से शुरू कराया जाता है। इसके अलावा 4 तारीख के रात को 9 से 10 बजे के बीच में पहली बार एक भव्य तरीके से एक ड्रोन शो का भी व्यवस्था कराया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है 3 तारीख को श्री हरिदास ऑडिटोरियम प्रेक्षागर जो वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसका

0: शुभारंभ और लोकार्पण है, और उस दिन भी 1051 करोड़ का विभिन्न जो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भी है। तो इस तरीके से पूरे जनपद में 2, 3 और 4 तारीख को भव्य रूप से ये उत्सव और उल्लास से मनाया जाएगा। आप सभी लोगों से और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप लोग जनपद मथुरा आए और इस बार की जन्मोत्सव ब्रज क्षेत्र में ही हमारे साथ ही मनाइए।
1: इस आयोजन में जब लाखों श्रद्धालु पधार रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर आप हैं मथुरा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों के यहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, 4 जो हमारे यहाँ पे मुख्य है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारे यहाँ सारी हेल्थ टीम की व्यवस्था रहती है। बरसाना मंदिर पे सब व्यवस्था रहती है, दाऊजी महाराज पे भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है, और इसके अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर पर भी हमारी पूरी टीम्स की, लगभग हमारी 20 टीम्स कार्य करती हैं इसमें, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ वहाँ पे है रहता, और देख रेख में उनके प्रत्येक जगह पे हमारी टीम्स रहती है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा।
3: भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए 33 कोटि देवता, देव, देवादिदेव और महादेव भी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। इस वर्ष भगवान ठाकुर श्री केशव देव, भगवान श्री कृष्ण पंचरत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 5 रत्न भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक पर उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। भगवती माँ गायत्री, माँ सरस्वती के वाहन राजहंस कलहंस के भाव को हृदयंगम रखते हुए इस वर्ष कलहंस बंगले के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के पुष्प बंगले को सजाया गया है। ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण का यह 5253वां जन्म महोत्सव बड़ा विशिष्ट है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है कि भगवान के गर्भगृह, जिसको कंस के कारागार से लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, वहां से भी भगवान के जन्म महाभिषेक के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए संस्थान सभी आवश्यक उपाय कर रहा है और ठाकुर श्री केशव देव की कृपा से इस वर्ष श्रद्धालु जन अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर भी भगवान के पुण्य पवित्र गर्भगृह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
1: श्री जी बाबा आश्रम के व्यवस्थापक श्री रविकांत जी ने इस अवसर पर बताया,
4: भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगरी में, इस ब्रज में, क्योंकि यहीं ये पैदा हुए, जो उत्सव का हमारा 5253वां जन्म उत्सव ब्रज में, इस मथुरा में, इस नगरी में 2 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये चलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जितने भी हमारे ब्रज के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सभी लोगों पर आपका आशीर्वाद, जैसा आपका नाम है ऐसे ही ये आशीर्वाद सबको बिखरता रहे, यही तो मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थानीय निवासियों का उत्साह भी चरम पर है। घर घर में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ब्रज की लोक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताते हुए स्थानीय निवासी,
5: भैया जन्माष्टमी आ रही है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, हमारे ठाकुर जी का जन्म तिथि, जन्म महोत्सव, वर्षगांठ, और तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। घरों में रंगाई पुताई कराई जा रही है, मंदिरों को स्वच्छ किया जा रहा है, दरवाजे पर बंधनवार बन रही है, ध्वजा पताका

0: तोरण कलश सजाए जा रहे हैं और जिनके यहाँ वाहन हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हमारे यहाँ गायें हैं, हम गायों को सजा रहे हैं और नगाड़े तैयार हो रहे हैं, धुंधवी तैयार हो रही हैं, ढोल ढप मृदंग झांझ झड़ताल ये सब बजेंगे। और जो कवि जन है वो नित्य नई नई नई बधाइयां रच रहे हैं कि मैं ये बधाई गाऊंगा, मैं ये बधाई गाऊंगा। और घरों में पंजरी की तैयारी है, भगवान को पंजरी का भोग लगाया जाएगा। 7 प्रकार की पाग बनेंगी, बादाम की पाग, पाग माने एक तरह की बर्फी होती है हमारे ब्रज में, इसको पाग कहते हैं। जो जच्चा को भोग लगाया जाता है कि यशोदा के लाला हुआ है, तो जच्चा और बच्चा ये दोनों का भोग लगाने का ये सामग्री है पाग। तो खरबूजे के बीज की पाग, मिंगी की पाग, काजू की पाग और चिरौंजी की पाग, ऐसे 7 प्रकार की ये पाग बन रही हैं। लोग नए नए कपड़ा बनवा रहे हैं, जो गोपियां हैं, महिलाएं हैं, वो तरह तरह के लहंगा ओढ़ना चुनरी पहनेंगी, अनेक प्रकार के गहने धारण करेंगी, सोलह और श्रृंगार करेंगी। और जो पुरुष हैं वो जामा पाजामा बनवा रहे हैं, पगड़ी बनवा रहे हैं, सिरपेच बांधेंगे, माला पहनेंगे, कड़े कंठा पहनेंगे और ठाकुर जी को सोने के पालने में विराजमान किया जाएगा। 5253वां भगवान का ये जन्मगांठ है, जन्म महोत्सव है। तो पूरे मथुरा में और तो और सरकार के द्वारा चौराहे सजवाए जा रहे हैं, सड़कें सजवाई जा रही हैं, जगह जगह रासलीला दिखाई जाएगी, भगवान की लीला दिखाई जाएंगी, जगह जगह सेल्फी पॉइंट जो आधुनिक व्यवस्था है वो की जा रही है, कहीं कहीं कृष्ण लीला होगी और घर घर में तैयारियां हो रही हैं।
1: तो हम लोगों को बड़ा ही उल्लास रहता है क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, तो घर को स्वच्छ करना, घर को सजाना और ठाकुर जी के मंदिर को सजाना, उनके पर्दे पलना ये सब कुछ तैयार करना, उनकी ड्रेस लाना, पोशाकें लाना, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाना।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूर दराज से लोग मथुरा पधार रहे हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग लालायित हैं। ब्रज में पधारकर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर नगर निगम प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए बाहर से आए कुछ श्रद्धालु।
3: जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ दर्शन करने आए थे, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ आए थे और चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ आए। यहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा।
4: मैं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और भी जो विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत ही आनंद यहाँ प्राप्त हुआ। पूरा मथुरा ये मान के चलिए कृष्णमय है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। हर जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णमय है।
2: अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर संजय सारस्वत का था, प्रस्तुति संजीव कुमार व्यास की एवं संयोजक थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार किया गया। ये आकाशवाणी है।
5: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला है।

0: और भारतीय टीम को मिली है फिर एक बार शानदार और तेज शुरुआत। बैडमिंटन के कोर्ट पर आज किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी लेकर के आई है गुड न्यूज। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में की है अपनी जगह पर की, वहीं अनाहत सिंह ने स्क्वाश के मैदान में फिर एक बार जीत की तरफ बढ़ाया है कदम। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाकर की जगह और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने दूसरे दौर में दर्ज की है एक और जीत। पहला सेट हारने के बाद शानदार वापसी का किया प्रदर्शन और 2027 में होने वाली पहली आईसीसी महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब श्रीलंका के स्थान पर भारत में की जाएगी आयोजित। आज के कार्यक्रम को शुरू किया जाए दुबई में इस समय खेले जा रहे भारत और हांगकांग के बीच महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के मुकाबले से, जहां तक यह समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अगर भारत की बात की जाए तो ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में इस टीम ने 94 रन से एक शानदार जीत दर्ज की थी थाईलैंड के ऊपर और टीम की नज़र जो है आगामी 5 तारीख को पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले पर होगी। और इस क्रिकेट मुकाबले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज के मैच पर क्या खास अपडेट है आपके पास?
1: शक्ति, भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत जो है बेहद शानदार करी है। आठवां ओवर चल रहा है और भारतीय टीम 74 रन बना चुकी है बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शफाली वर्मा ने जहां 16 गेंदों पर 28 रन, वहीं स्मृति मंधाना ने 31 गेंदों पर 44 रन बनाए हैं। शफाली ने अपनी पारी में 2 छक्के भी लगाए हैं। इसी के साथ ये मैच जो है भारत बहुत अच्छी पोजीशन में होल्ड कर रहा है इस मुकाबले में और इस मुकाबले को जीतकर एक अपनी जो स्थिति है सेमीफाइनल के लिए उसको और मजबूत करना चाहेगा।
0: जी बिल्कुल, स्थिति मजबूत करना चाहेगा। हम एक बार स्थितियां भी जानना चाहेंगे जो ना अंतिम ग्रुप मैच खेलना है, उन तैयारियों के अनुरूप देखा जाए तो ये कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है भारत के लिए मैच।
1: भारत के लिए एक वार्म अप गेम की तरह साबित होगा पाकिस्तान के मुकाबले से पहले, क्योंकि पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में बहुत सारी गलतियां करी जहां पर 46 रन के अंतराल में लगभग 7 विकेट भारत ने गंवाए थे और एक बहुत बड़े स्कोर करने से चूक गए थे। तो उन सब गलतियों पर ध्यान देते हुए जैसी आज शुरुआत मिली है इसी को कैपिटलाइज करके एक बड़ा स्कोर जो है बनाने की ओर भारतीय टीम देखेगी।
0: जी बिल्कुल, भारतीय टीम चाहेगी कि एक बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए शानदार शुरुआत को। और अब क्रिकेट के मैदान की एक और खबर की तरफ नजर डाली जाए जो कि आई महिला क्रिकेट के ही मैदान से। 2027 में होने वाली पहली आईसीसी महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत में आयोजित होगी। 14 से 28 फरवरी के बीच निर्धारित ये प्रतियोगिता पहले श्रीलंका में होनी थी, इसकी मेजबानी अब भारत को प्राप्त हो गई है। श्रीलंका से मेजबानी लेने का कारण श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड में सरकारी दखल के बाद प्रशासनिक सुधारों की जारी प्रक्रिया को बताया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बताया कि 6 टीमों के बीच खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट अब 2 वेन्यू पर आयोजित होगा। इनमें मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। आईसीसी ने कहा कि यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था लेकिन अब यह भारत में होगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जुलाई में आईसीसी के सालाना सम्मेलन में तय किए गए व्यापक सुधार कर रहा है। श्रीलंका क्रिकेट का कामकाज अभी एक अंतरिम ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की देखरेख में जारी है। आईसीसी ने यह भी बताया कि भारत को मेजबान के तौर पर चुनने से पहले एक मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। इनमें से शीर्ष 2 टीमें 28 फरवरी को होने वाले फाइनल में पहुंचेंगी। इन टीमों का चयन 6 जुलाई की क्वालिफिकेशन कट ऑफ तारीख पर आईसीसी महिला टी20
0: सकते हैं कि इस टी20 फॉर्मेट की पहली चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर भारतीय टीम उस टी20 विश्व कप में जीत ना पाने की कसक को भी मिटाने का काम करेगी। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स कैन में बात बैडमिंटन की। किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
3: किदांबी श्रीकांत ने आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के विक्टर लाई को एक कड़े मुकाबले में 21-18, 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां अब उनका सामना हांगकांग की ली च्यूक यू से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के पोपोव बंधुओं क्रिस्टो पोपोव

0: और टोमा जूनियर पोपोव को 21-17, 22-24, 21-9 से हराया। अब ये भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और आंद्रेज सकारू रश्मिसेन का सामना करेगी। हालांकि महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से 17-21, 21-18, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो का अभियान ताइपे के ह्यू क्वांग हॉन्ग और सु येन हुई से सीधे गेम में 18-21, 18-21 की हार के बाद समाप्त हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि चिराग और सात्विक की ये जोड़ी, जिसने 2022 के एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक जीता था, फिर एशियन गेम्स से ठीक पहले अपनी शानदार लय में नजर आती हुई, और शायद वो एशियन गेम्स और सिंगापुर ओपन जैसे टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी ये जोड़ी वापस एक बार इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में होगी। अब बैडमिंटन के बाद बात स्क्वाश की, जहां नाहा सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इस विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिल्स को 13-11, 4-11 और 11-8 से हराया। अब अनाहत का अगला मुकाबला शिव सारंगी और गरस के बीच होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के विजेता से होगा। भारत के अन्य खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो दूसरे दौर में रमित टंडन और पहले ही दौर में वीर चोटरानी का अभियान इस प्रतियोगिता से समाप्त हो चुका है। तो कह सकते हैं कि भारत के अभियान की पूरी उम्मीदें इस युवा खिलाड़ी पे होंगी, जिसकी नजर इस टूर्नामेंट से भी अधिक एशियन गेम्स पे स्वर्ण पदक जीतने पर है। और टेनिस में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने आज तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने अपने दूसरे दौर के मुकाबले में जैम फारिया को पहले सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए 4-6, 6-0, 6-3 और 6-2 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक्त डी वेवर के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री डी वेवर को हॉकी विश्व कप 2026 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
2: पिछले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड ने मिलकर हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया। मैं इस वर्ल्ड कप के भव्य आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन के लिए भी उनकी सराहना करता हूं।
1: तो खेल एक बड़ी भूमिका निभाते हुए दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में ऐसा ही कुछ उदाहरण हमने देखा, जहां हॉकी ने भारत और न्यूजीलैंड के जो टाइस थे उनको किस तरीके से 100 वर्ष पूरे होने पर मजबूत करने का काम किया था। और ये विश्व कप जिसमें भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल करके ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, जबकि पुरुष टीम को 8वें स्थान से संतोष करना पड़ा था। और अब बात भारतीय जूनियर पुरुष और महिला हॉकी टीमों की कर ली जाए, जो कल से शुरू हो रहे AHF जूनियर एशिया कप में अपने खिताब को बचाने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय महिला टीम ने पिछले 2 संस्करण में जूनियर एशिया कप की ट्रॉफी जीती थी और इस बार मिडफील्डर खेदेम सिलेमी चानू टीम की कप्तानी करेंगी। एलीट पूल में शामिल भारत अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को साउथ कोरिया के खिलाफ करेगा, जबकि भारत 5 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ पूल ए में अपने अभियान की शुरुआत करेगी पुरुष टीम। इसके बाद 6 सितंबर को पुरुष टीम का मुकाबला जापान से, 8 सितंबर को साउथ कोरिया से और 9 सितंबर को चीनी ताइपे से होगा।

0: तो अब भारत में स्टेज सेट हो रहा है एक आर्चरी टूर्नामेंट का, जहां आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेन सचदेवा ने अहमदाबाद में होने वाली विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज से पहले आज भारतीय जर्सी का अनावरण किया। 2024 पैरालंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह और कांस्य पदक विजेता तीरंदाज शीतल देवी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो भारत इस एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए तैयार है। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि ये खुशी का विषय है कि विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज गुजरात में हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात आ रहे हैं और इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। श्री मुंडा ने बताया कि उन निर्देशों के खिलाड़ी पहले ही यहां पहुंच चुके हैं।
1: मुझे बेहद खुशी है कि गुजरात में ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज, जिसके माध्यम से दुनिया भर के खिलाड़ी गुजरात में आ रहे हैं और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है और इस तरह के आयोजन होने से देश के खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन

0: मिलता है। अभी 19 कंट्री के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो पहली बार ऐसा मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में एक विजनरी लीडरशिप के साथ खेल को नया आयाम देने में देश सफल हो रहा है।
1: तो भारत एक बेहतर आयोजन स्थल के रूप में उभरता हुआ, और एशियाई खेलों के लिए एक और अपडेट भारत के पास है, जहां राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी जसवीर सिंह को जापान में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चोटिल नीरज चोपड़ा की जगह 77 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल किया गया है। तो विशेष इस पर आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि नीरज ने जो काम किया कि आज भारत में उनको देख करके बैक टू बैक कितने जैवलिन स्टार्स जसवीर, सचिन, किशोर जेना तैयार हैं कि अब पूल की कमी नजर नहीं आती।
2: जी बिल्कुल शक्ति, जब यशवीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था तब सभी का पूरा श्रेय, इसका पूरा श्रेय जो है सभी ने नीरज को दिया था कि उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया टारगेट सेट किया था भारतीय जेवलिन थ्रोअर्स के लिए, और ये बहुत ही शानदार एक उनके लिए मौका है यशवीर के लिए, जो अब वो अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करने के लिए देखेंगे।
1: जी बिल्कुल, यशवीर से उम्मीद होगी भारत को कि वो नीरज की कमी पूरी करें, और जब नीरज के स्थान पर आप आए हैं तो आपसे उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। विशेष जैवलिन हटा दिया जाए तो 77 मेंबर्स का ये स्क्वाड है, किन खिलाड़ियों से सबसे अधिक उम्मीदें भारत को होंगी?
2: भारत के लिए गुलवीर सिंह और पारुल चौधरी ये एक बहुत बड़े नाम के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एशियाई खेलों में 3 स्पर्धाओं में ये भाग लेंगे। गुलवीर 10,000 मीटर, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में, जबकि पारुल 3,000 मीटर स्टीपल चेस, 5,000 मीटर और 1500 मीटर में हिस्सा लेती नजर आएंगी।
1: जी बिल्कुल, आपने गुलवीर सिंह का जिक्र किया और हमारी आंखों के सामने वो तस्वीरें आई जब अभी हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 2 पदक भारत के लिए जीते, 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर

0: जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी।

0: भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
1: मेकिंग इंडिया $30 ट्रिलियन इकोनॉमी,
2: भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
1: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: Samachar Sandhya mein aapka phir swagat hai. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्री भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
2: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते
1: अशोक जी। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जल संकट की बात हो या फिर कुछ इलाकों में भूजल स्तर गिरने की बात कही जाती है, तो जल को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आम नागरिकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी चीज की इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है?
2: जल के संकट के बारे में आपने बताया, बट एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे पिछले कई दशकों से जितने भी बारिश आ रहे थे उतनी बारिश अभी भी आ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट में वी आर नॉट एबल टू वाटर मैनेज द वाटर प्रॉपरली। इसलिए ये जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदला करने के बाद ही हम मैक्सिमम वाटर सेव कर सकते हैं। वो देखते आंकड़े बताएंगे तो तकरीबन 1000 से 1100 mm रेनफॉल हर साल हमको मिलते हैं। कभी महीने में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हर साल बारिश जितना आना है वो आते रहते हैं, और तकरीबन 4000 billion cubic meter पानी हमको मिलता है। और जब बारिश अधिकतम होता है तो कभी कभी फ्लड्स होता है, बाढ़ हो जाते हैं और पानी बह के चले जाता है, और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो पानी की दिक्कत बढ़ जाती है, कई जगह पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो अगर हम ये जो बारिश में जितने पानी आता है उसी को हम संभाल के रखे, जन भागीदारी से संभाल के रखे और समर में यूज करेंगे, तो हमारा वाटर समस्या एकदम बहुत हल हो जाएंगे। इसलिए जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें।
1: अशोक जी, आप कई सारी योजनाओं से जुड़े रहे हैं, नेशनल वाटर मिशन की बात हो या फिर कैच द रेन अभियान की बात हो, तो ये जो अभियान हम देखते हैं आज की डेट में, इनका क्या महत्व है जल संरक्षण के लिए, और जो हमारे सामने भूजल का संकट है या फिर पीने के पानी के पर्याप्त उपलब्धता की बात करते हैं उसके लिए?
2: जैसे मैंने बताया, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट। भारत में बहुत सारे जल भूगर्भ से, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से निकाल के सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पीने के पानी के लिए यूज करते हैं। अगर हम अंडरग्राउंड से पानी को खींचते रहे और वापस उसको रिचार्ज नहीं करते, तो एक दिन पानी तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसलिए 2021 से हमने नेशनल वाटर मिशन की तरफ से और प्रधानमंत्री के आदेश में वो हमने एक कैच द रेन कैंपेन शुरू किया, जिसका जिक्र आपने किया था। कैच द रेन कैंपेन में ये है कि स्लोगन द कैच द रेन वेर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां बरसे जब भी बरसे पानी का संचयन करना है। तो ये कार्यक्रम जन भागीदारी से हम कर रहे थे, क्योंकि ये बारिश सब जगह में होते, खेत में, घर में, गांव में, शहर में, सब जगह में बारिश पड़ती है। वो बारिश के पानी को अगर हम वहीं के वहीं संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल बढ़ जाता है, और ये पानी हम यूज करके समर में भी हमारा काम में आ जाता है। इसलिए ये जो कैच द रेन कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एंड प्रधानमंत्री तो 2021 से इसके बारे में बोलते रहते थे, उन्होंने ही ये कैंपेन 2021 में देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के रूप में स्टार्ट किया था।
1: अशोक जी, जल संकट की जब हम बात करते हैं तो भारत के विकास और सामाजिक स्थिरता की भी यहाँ पर बात करना जरूरी हो जाती है, और साथ ही भारत में नदियों और जल स्रोतों की सफाई भी एक बड़ा टास्क हमारे लिए है, ताकि जो भी जल हमारे पास अभी उपलब्ध है उसको इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि ताकि उसको आराम से इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? क्या आधुनिक समय में जो हमारे पास उपकरण है, यंत्र है, उनका इस्तेमाल करना, या फिर जन भागीदारी और जन जागरूकता?
2: वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से हमने देखा कि ये रिवर पोल्यूशन को भी एड्रेस करने के लिए काफी काम हो रहा था। उसमें एक था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे, जब हमने सब लोगों को मिला के जन भागीदारी से गंगा नदी को साफ करने का कार्यक्रम में जुट गए थे। तो ये पिछले कई सालों से अभी एनजीटी के मार्गदर्शन में हम कई जगह में वाटर रिवर्स के पोल्यूशन के लेवल मॉनिटर करते हैं और वाटर पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करके बताते हैं कि इस एरिया में वाटर पोल्यूटेड है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है करके। तो अमृत स्कीम के अंदर और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के स्कीम्स के अंतर्गत और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत कई कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि ये जो जल में पोल्यूशन आता है रिवर्स में मुख्यतः वो ज्यादातर सुवेज की वजह से होते हैं। शहर से गंदा पानी नदियों में छोड़ते हैं और वो गंदा पानी अच्छे पानी से मिलके वो पानी को खराब करते थे। तो ये पिछले कई सालों से हमने एसटीपीज बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे ये स्वेज वाटर को ट्रीट करके अच्छा पानी नदी में छोड़ने का कार्यक्रम किया। इसमें काफी सफलता भी हुई है, मगर बहुत सारे काम अभी बाकी है। बहुत शहरों में अभी ये एसटीपीज बनाना है और उसको चालू कराना भी है, ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
1: अशोक जी, अभी आपने शहरों में पानी की पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज की बात की है और जो अच्छा पानी होता उसमें गंदा पानी मिल जाता, उससे भी समस्या आती। तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए कहा है कि सही योजना, पक्के इरादे, पर्याप्त संसाधन और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इसको एक अवसर में बदला जा सकता है, ताकि जो भी हमारे सामने इससे संबंधित दिक्कतें आ रही उनको दूर किया जाए।
2: एक्चुअली देखा जाए तो कई सालों से प्रधानमंत्री पानी के जो मैनेजमेंट के बारे में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात की थी। जैसे इन्होंने कल बताया था कि सबका प्रयास के साथ हमको जल के क्वालिटी और क्वांटिटी

0: के दोनों में मैनेज करना पड़ता है। वाटर सिक्योरिटी में समस्या आता है तो उसमें दो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी के मुद्दे होते हैं और दूसरा वाटर क्वालिटी के होता है। ये वाटर क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने बताया, हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो हमको पानी मिल सकता है, अगर हम वाटर यूसेज को रिड्यूस करेंगे तो भी हमको पानी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 10 लीटर या 50 लीटर पानी यूज करते हैं, अगर उसका यूसेज रिड्यूस करके 10 लीटर या उससे कम करेंगे तो हमको बचत मिल जाता है, वो बचत पानी का ना सेविंग होता है। तो ये वाटर स्कैर्सिटी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हम पानी जो बचत करते हैं वो दैट विल बी वाटर जनरेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकंड, हमको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर सिक्योरिटी में, एक तो रीयूज ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ये सब इंडस्ट्री एरिया में होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो वाटर सिक्योरिटी के, जो वाटर क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, अगर हम स्कीम्स तैयार करें और टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्रीकल्चर में 85% वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इंडिया में, उनका वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर है, 30% या 33% वाटर यूज एफिशिएंसी है। अगर हम अच्छे टेक्नोलॉजी यूज करके, अच्छा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके या ड्रिप इरिगेशन के ऐसे यूज करेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ऑफिशियल हम स्कीम्स तैयार करके लोगों को वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का सलाह दे और उनका सपोर्ट दे, जैसे अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स बताएंगे या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रचार करें, तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं और डेफिनेटली हमारा वाटर समस्या कम हो सकता है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बना करके बल्कि जन भागीदारी से जोड़ने और जल उत्सव को बढ़ावा देने की बात कही है। आज के समय में जब जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बदस्तूर जारी है, लेकिन भूजल का दोहन भी उतना ही हो रहा है, तो क्या जन भागीदारी अकेले इस समस्या का समाधान कर सकती है या फिर हमें कानून या फिर आर्थिक प्रोत्साहन या स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए आगे लाना पड़ेगा?
0: जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, यह सबका प्रयास है, सबको इन्वॉल्व करके जन भागीदारी से ही हम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ग्राउंड वाटर का दोहन, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला देश है। हम पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ये इरिगेशन के लिए बहुत पानी ग्राउंड से निकाल के यूज करते हैं, तो हमको एक तो उसकी यूज कम करना पड़ता है, दूसरा उसमें रिचार्ज करने के लिए भी हमको प्रयास करना है। तो जन भागीदारी में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो बहुत पानी हम बचा सकते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, डैम्स बनाते थे, तो ये जो बारिश में जो पानी गिरते हैं वो एक साथ बह के कई एक जगह पर जाके हम इकट्ठा करके वहां पे बड़े बड़े डैम्स बनाते, बकरा नांगल डैम ऐसे बनाते थे। बट अभी तो ये डैम्स बनाने में बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आता है, सबमर्जेंस के इश्यू आते हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें होते हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, दो कैश रेन कैंपेन जो प्रधानमंत्री ने किया वो किया। इसमें क्या किया, ये जन भागीदारी में होते हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति, हर एक गांव वाले, हर एक शहर वाले, हर एक आदमी इसमें अभियान में जुट सकते हैं। अपने घर में, अपने खेत में जितने भी बारिश आते हैं उसको अगर वो संचय करके रखेंगे तो वी कैन सेव ए लॉट ऑफ वाटर, वो तो भूजल का स्तर भी बढ़ा सकते हैं। तो इट्स ए डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक कैंपेन एंड ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री ने पानी बचाने वाली तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने की बात कही है और दुनिया के जो बेहतरीन तरीके हैं उनसे सीखने पर जोर दिया, यानी कि हम केवल अपने देश तक सीमित अगर ना रहें, भूजल बचाने के बारे में, जल संरक्षण के बारे में पूरी दुनिया से अगर अच्छी बातें सीख सकते हैं तो ये बहुत आवश्यक सी चीज है। आपको क्या लगता है इससे?
0: कई स्टेट लाइक इसराइल और नेदरलैंड्स, वो पानी में उनका बहुत दिक्कतें थे, तो उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी की यूज करके कई नए नए आविष्कार चला के पानी का बचत किया है, पानी का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा है और वो जनता का जो वाटर की समस्या का हल निकला। आप देखे जाए तो इसराइल के ऐसा देश है जहाँ पे हमसे बहुत कम बारिश गिरती है और वहाँ पे 92% से ज्यादा पानी वो रिसाइकल करके यूज करता है। एग्रीकल्चर में वो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस्ड है, प्रिसिशन इरिगेशन बोलते हैं, जितना पानी चाहिए मतलब बूंद बूंद के हिसाब से वो मेजर करके पौधे को देते है और वो पौधा 100% वो वाटर यूज करते है। वो बड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है बट ये एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहाँ पे जो रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है वो सेल में यूज करता है। सिमिलरली नेदरलैंड में फ्लड को मैनेज करने के लिए वो क्या टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सारे सिंगापुर में और श्रीलंका में है, तो हम बाकी देशों से भी जानकारी ले

0: सकते हैं, बट हमारे भारत में भी इतिहास में भी देखा जाए तो
1: जी
0: प्राचीन काल में भी हमारे जो पूर्वजों ने पानी को संभालने के लिए काफी कार्यक्रम किए थे, वो पानी को महत्व देते थे। और कई जगह पे आपने टांगा देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी के बारे में सब जानते हैं, और रानी की वाव है जो गुजरात में, तो कई जगह में ऐसे स्टेपल्स भी है। आपको याद है मोहनजोदड़ो में भी कॉमन बाथ की बात करते थे और ड्रेन्स की बात करते थे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात है। तो हमारे देश में भी बहुत सालों से वाटर हार्वेस्टिंग का प्रदा चलते आ रहा था, बट साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बाकी देशों से भी हम लर्न कर सकते हैं और उसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी अशोक जी, हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो उपचारित करके उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ पानी उसको हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके अन्य कामों में?
0: देखो दिस इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक तो जो पानी हम स्वेज से या इंडस्ट्रियल वे से भी निकलते उसको ट्रीट करके हम इरिगेशन में सिंचाई में काम लगा सकते हैं। सिंचाई में 100% प्योर वाटर देने की जरूरत नहीं है, बट इसमें अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करके हम ये पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो 100% प्योर होना चाहिए। अगर हम स्वेज वाटर को ट्रीट करके सफिशियंट पैरामीटर्स सफिशियंट ला करके थोड़ा फॉस्फोरस ज्यादा रहता भी अब प्रॉब्लम नहीं, वो इरिगेशन में यूज करते हैं, वो पानी हम पी नहीं सकते मगर इरिगेशन के लिए काम आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स पे वाटर ट्रीट करके हम पानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं, क्योंकि जहां पे तापमान बढ़ने से आइस और ग्लेशियर मिल करके वो किसी लेक में डाल के वहां से वो पानी बहुत जोर से बाहर आ जाता है, इसी की वजह से वो बाढ़ हुए थे। इसमें हमारे वैज्ञानिकों को बहुत सैटेलाइट इमेजरी सब यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वी कैन प्रिडिक्ट दी फ्लो वाटर फ्रॉम दिस लेक्स। तो अगर हम सैटेलाइट मैपिंग करके या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके गोल्फ ग्लोव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो देन वी कैन प्रिडिक्ट फ्लड एंड रिड्यूस द डैमेज, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली हमारे IITs और टेक्नोलॉजी ISRO जैसे इंस्टीट्यूशंस को इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।
1: जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइज

0: और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटेशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटेशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनाने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इसमें कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिलों बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक हांगकांग ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 4 रन बना लिए थे। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों पर शानदार 124 रन की शतकीय पारी खेली। किदांबी श्रीकांत तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defense cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasized that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
0: हम अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे. फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है. आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है.
2: In his press statement, Prime Minister of Belgium, Mark de Wever, hailed India as the largest democracy with the fastest growing economy, terming New Delhi as an important ally. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industries for playing a pivotal role in achieving 7.8% GDP growth in the first quarter of the current fiscal. While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh, heavy rain and the release of water from barrages have affected 23 districts from floods. Prime Minister Narendra Modi today spoke to District Magistrate Satendra Kumar of his parliamentary constituency Varanasi over the phone to inquire about the flood situation. The Prime Minister inquired about the water level of rivers in Kashi and the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister also took feedback on the flood situation over the phone from Varanasi Mayor Ashok Tiwari. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv and discussed on approaches to end the ongoing conflict. He also met his Ukrainian counterpart Andrei Sibiha. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the President said that the life and teachings of Lord Krishna breathe new life into the cultural and philosophical heritage of our country. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura Vrindavan, is decked up for the grand celebration tomorrow on the occasion of Janmashtami. In badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth will face Hong Kong's Lee Shekyu tomorrow in the men's singles quarterfinals at the China Masters Super 750 in Shenzhen. Srikanth beat Canada's world number 9 Victor Lai in pre-quarterfinals today. Earlier, India's top men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty overcame a mid-match wobble to beat French brothers Christo and Toma Junior Popov and progressed to the quarterfinals. In women's cricket, India have set a target of 194 for Hong Kong in their second Group A match in the 2020 Asia Cup at the Dubai International Stadium in UAE tonight. Hong Kong was 16 for one wicket in six overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विनय सक्सेना। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बैडमिंटन में भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कल चाइना मास्टर्स के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यूई का सामना करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई

0: हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से यह कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
4: Making India a $30 trillion economy.
5: भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
4: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश के माहौल का भी उल्लेख किया।
6: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैंक ऑफ अमेरिका के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने दिवालियापन और दिवालिया संहिता सहित कई सुधारों पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इन उपायों से नियामक स्थिरता बढ़ी है, वहीं अनुपालन आसान हुआ है और कागजी कार्रवाई कम हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन और अवसंरचना विकास को मजबूती प्रदान की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल भारत के किदंबी श्रीकांत का मुकाबला पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से होगा। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक हांगकांग ने 9वें ओवर में 2 विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों में शानदार 124 रन की शतकीय पारी खेली। अनाहत सिंह लंदन स्क्वैश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलिस को 2-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और बैडमिंटन में भारत के दिग्गज खिलाड़ी किदंबी श्रीकांत कल चाइना मास्टर्स के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली ची युक का सामना करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in badminton, India's ace shuttler Kidambi Srikanth to face Hong Kong's Lee Shok Yui tomorrow in men's singles quarterfinals at China Masters. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की ये शाम कुछ खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एहसास की जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, जिसे महसूस करने के लिए कभी कभी सिर्फ एक मुस्कान काफी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, जो कभी किसी की आवाज में सुनाई देती है तो कभी किसी की आंखों में दिखाई देती है और कभी किसी खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती है। तो आइए आज की इस खूबसूरत शाम में हम कुछ ऐसे गीतों का सफर शुरू करते हैं जिनमें मोहब्बत की अलग अलग तस्वीरें छिपी हैं। कहीं पहली मुलाकात है, कहीं इंतजार है, कहीं इजहार है और कहीं बस किसी के होने का सुकून है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें प्यार की बहुत ही मासूम सी दस्तक है।

क्या खूबसूरत एहसास है ना। कभी कभी एक गीत हमें किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी याद से मिला देता है, और मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है। और इसमें यादें भी अपनी सी लगती हैं, वो पहला संदेश, वो पहली मुलाकात, और वो बिना वजह हमारा मुस्कुराना, और फिर किसी एक शख्स का धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाना, है ना, ठीक इस गीत की तरह।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: दोस्तों कार्यक्रम चला है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में इंतजार बहुत लंबा होता है, घड़ी की सुइयां जैसे धीरे धीरे चलती हैं, एक मिनट एक घंटे जैसा लगता है, फिर जब वो सामने आता है तो लगता है इंतजार का हर एक पल सार्थक हो गया। मोहब्बत में शायद सबसे खूबसूरत चीज होती है इंतजार, क्योंकि इंतजार में उम्मीद होती है और उम्मीद में एक खूबसूरत सा ख्वाब, कभी किसी के आने का इंतजार, कभी किसी के लौट आने का, और फिर सिर्फ उस एक आवाज का जिसे सुनकर दिल को सुकून मिलता है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, कुछ गीत सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही खड़े रहें। क्योंकि प्यार सिर्फ खूबसूरत पलों का नाम नहीं है, प्यार तो तब साबित होता है जब हालात खूबसूरत ना हो फिर भी आपका रिश्ता खूबसूरत बना रहे। और शायद इसीलिए सच्ची मोहब्बत बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन जिसे मिल जाए उसे पूरी तरीके से संभाल कर रखना चाहिए।

दोस्तों, उम्मीद है कि एफएम गोल्ड की यह शाम आपके दिल में भी किसी खूबसूरत याद की तरह ठहर गई होगी। और अगर इस वक्त आपके दिल में भी किसी का ख्याल आ रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि किसी का ख्याल आना भी तो मोहब्बत की निशानी है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष

0: और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए 2 विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industries for playing a pivotal role in achieving 7.8% GDP growth in the first quarter of the current fiscal year. While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh, heavy rain and the release of water from barrages have affected 23 districts from flood. Prime Minister Narendra Modi today spoke to District Magistrate Satyendra Kumar of his parliamentary constituency Varanasi over the phone to inquire about the flood situation. Prime Minister inquired

0: Hello and good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amrish Saxena.
1: Namaskar. श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अमरीश जी।
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू अमरीश। Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next five years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,900 अंक से नीचे बंद हुआ। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।

0: तिरपन पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंक यानी 0.2% की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। इससे पहले विदेशी मुद्रा बाजार में मजबूत प्रवाह से सकारात्मक धारणा के चलते बाजार बढ़त के साथ खुले। हालांकि कारोबार के दूसरे हिस्से में बाजार शुरुआती बढ़त को कायम नहीं रख सके। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण निवेशक सतर्क रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में प्रमुख सूचकांकों की तुलना में मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.4% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% की तेजी दर्ज की गई।
1: Benchmark domestic equity indices declined for the fourth consecutive session today. The Sensex shed 417 points or over 0.5% to close at 76,153. The Nifty fell 41 points or 0.2% to settle at 23,873. Earlier, the markets opened on a higher note amid positive sentiment, supported by strong foreign exchange inflows. However, markets failed to hold their initial gains during the second half of the session as elevated crude oil prices and global yields kept investors cautious. On the other hand, the broader market at the National Stock Exchange showed resilience. The Nifty Mid-Cap 100 index rose 0.4%, while the Nifty Small-Cap 100 index jumped 1.2%.
0: Sensex में शामिल 30 कंपनियों में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन 2.2%, ट्रेंट 1.9% और आईटीसी 1.6% नीचे रहे। दूसरी ओर एक्सिस बैंक में 0.9%, अडानी पोर्ट्स में 0.8% और एशियन पेंट्स में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 17 out of 28 sectors edged upward. Among the top performers, realty rose 2.4%, housing finance and capital goods gained around 1%, and mid-small private banks added 0.9%. In contrast, focused IT and IT declined 1%, consumer durables fell 0.6%, and auto lost 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,545 companies advanced, shares of 1,778 companies declined, and shares of 223 companies remained unchanged.
0: और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत जी, जैसा बाजार का हाल हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है, कौन से आपको ऐसे खास कारण लगते हैं जिसकी वजह से बाजार बार बार कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं फिसल जाता है?
2: तो अमरीश जी, आज के बाजार की खास बात है कि जो हेडलाइन नंबर्स हैं यानी इंडेक्स को यदि हम देखें तो वहां पर सेंसेक्स में काफी भारी गिरावट है लेकिन निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं थी। और यदि हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां पर हमने अच्छी बढ़त देखी है। स्मॉल कैप में तो 1% इंडेक्स में बढ़त देखी, तो ये काफी मिला जुला सा बाजार है। और ये कहना मुश्किल है कि ये बाजार में इनहेरेंट मंदी थी, जबकि एडवांस डिक्लाइन में भी हम देखते हैं एडवांसेस एडवांसिंग स्टॉक्स काफी अच्छे थे। तो हेडलाइन नंबर्स तो हमें बता रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर व्यापक बाजार को देखता हूं, ब्रॉडर मार्केट को देखता हूं, तो मुझे उतनी कमजोरी नहीं लगती। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय बाजारों के जो इंटरनल फंडामेंटल्स हैं, खासतौर से दो बड़ी बात मैं कहूंगा। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज के जो डेटा हमारे सामने आना शुरू हुआ है वो बहुत अरसे के बाद पॉजिटिव आना शुरू हुआ है। थोड़ी बाइंग शुरू हुई है, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, बहुत बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन सेलिंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा कि मामूली हम देखते हैं बाइंग हो रही है, ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए। और दूसरा, जो FCNRB जो डिपॉजिट स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया था ये सोचकर कि हमें अपने जो मजबूत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको और मजबूत करना है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो चौंकाने वाली है। 127 बिलियन डॉलर्स, पहले अनुमान आया था 20 बिलियन डॉलर का, उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आए थे 50 बिलियन डॉलर के, और उसके सामने जो परफॉर्मेंस आई है, और वो भी जब ये स्कीम एक महीने पहले बंद कर दी गई। एक्चुअली ये स्कीम 30 सितंबर तक चलनी थी लेकिन इतने ज्यादा फॉरेन फ्लोज थे कि आरबीआई को वो स्कीम एक महीने पहले बंद करनी पड़ी,

0: आपसी सहयोग की निरंतरता को नई गति मिलेगी।
1: क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे। बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है। हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है। हम दोनों देशों की फाइनेंशियल फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे।
0: और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर ने अपने वक्तव्य में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और बेल्जियम के बीच में, और बेल्जियम दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर इसको हम इस नजरिए से देखें कि भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, तो इस इन समझौते के क्या मायने हैं?
2: देखिए, भारत ने, जैसे आपने कहा कि भारत अपना जो ट्रेड बास्केट है वो एक्सपैंड कर रहा है बहुत तेजी से। तो एक तरफ हम देखते हैं कि एफटीए हम यूके से साइन करते हैं, ईयू से साइन करते हैं, अफ्रीका में साइन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से साइन करते हैं। तो बेल्जियम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में बेल्जियम का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे हम जानते हैं कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होगा भारत की प्रगति में, तो मुझे लगता है ये जो एक समझौता है उस लक्ष्य से वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
0: और एक और अच्छी खबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने की दिशा में मजबूत आधार देंगे। उन्होंने दुनिया भर में भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों के अधिकतम उपयोग की दिशा में देशव्यापी और समग्र प्रयास करने का आह्वान किया। तो पुनीत जी, जैसा आप अभी जिक्र ही कर रहे थे कि जो मुक्त व्यापार समझौते हैं इनके माध्यम से भारत अपने व्यापार को काफी विस्तार दे रहा है, और जो अभी हमारी जीडीपी की फिगर्स आई है उसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला पीयूष गोयल जी ने, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: देखिए, जो भारत को अपनी जगह बनानी है अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारा अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, करीब करीब 2% से भी कम हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, और वो हमें 5% का हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही है, और मुझे लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक जो कॉम्प्लेसेंसी थी, एक हम बिल्कुल बैठे थे आराम से कि देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा एक धरे पे चला आ रहा था पिछले 50-60-70 वर्षों से, वो एक शेकअप हुआ है। और इसलिए ये जो बास्केट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खास तौर से मैं कहूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सच बताऊं आपको, इसका असर आपको 5 वर्ष के बाद मालूम होगा। ये अभी ये एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, इसका असर अगले 6 महीने में या 1 साल में आप नहीं देखेंगे। जो नंबर्स हैं उसमें 2 से 3 वर्ष 4 वर्ष लगेंगे, फिर आप इसका असर देखिएगा।
0: और अभी तो जैसा गोयल जी ने कहा है कि कनाडा, मेक्सिको, चिली और तमाम और देशों के साथ भी भारत इस तरह के समझौते करने
2: करीब
0: वाला है।
2: 50 ऐसे FTAs इन द वर्क्स हैं भारत के लिए, और एक बहुत बड़ा एक नंबर है। देखिए, भारत जैसी अर्थव्यवस्था ही अफोर्ड कर सकती है, छोटे देश तो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था इस पोजीशन में है कि हम ऐसे एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हैं, ये भी एक उपलब्धि है।
3: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी टुडे एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर वन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रिवन बाय इनोवेशन, क्वालिटी एंड कंपेटिटिव प्राइसिंग। एड्रेसिंग द 66th Annual Convention of Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, in New Delhi, Mr. Gadkari said the sector, currently valued at over 22.75 lakh crore rupees, contributes nearly 15% of the country's GST collections and supports around 4 crore direct and indirect jobs. He highlighted that India's automobile exports grew by 24% during 25-26. The Union Minister also expressed confidence that the industry's contribution to the country's economic growth will continue to expand. Puneet, you know, like I just read that

0: The auto sector is really very, very important for us. It contributes to our GDP in a very big way. The exports have grown by 24% in 25-26. What is the way forward? What are the areas where we need to work in this sector?
1: So, Anubhav, like you said, I think if for any country, any economy, automotive sector is central to growth, because it is not only the direct taxes or the employment that it provides, the indirect mobility, the indirect momentum it provides to the economy. So unless the transportation sector grows, you can't have an economy which is growing. So clearly it is that important. However, in India, this industry is transforming because of the way the fuel sector or the energy sector is transforming. So now you have a whole spectrum of vehicles, from electric vehicles to hybrids to ethanol driven to mixed fuel. I think that is the way forward. The industry has to adapt to these new technologies in terms of fuel, in terms of mobility, and that is how we can grow. Also, if you look at exports, if you look at new technologies, I think innovation in automotive sector will be the way forward for us.
0: So R&D is one area where we need to really work for.
1: Absolutely. And I know personally, I know a lot of people who are working in this area, and innovation and technology and research is the heart of this. If we don't do it, we will lag behind for sure. Right.
2: और चलते हैं एशिया के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 0.3% बढ़ा, जबकि जापान का निकेई 225 0.2% गिरा। पुनीत जी, आप क्या कहेंगे आज के बाजारों की परफॉर्मेंस के बारे में?
1: देखिए, एशिया यूरोपीय बाजारों में हमने देखा है कि काफी वॉलिटिलिटी बहुत रही है पीछे, खासतौर से सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वेटेज है कोरिया में, जापान में, ताइवान में, तो वहां पर काफी वॉलेटाइल वो रहा है। और अमेरिका में भी थोड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहा है इकोनॉमीज के लिए। पर मुझे लगता है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये वॉलेटिलिटी एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आप देखेंगे कभी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, और इसके मुकाबले भारत तो काफी स्टेबल है।
0: Let's move on to commodities. Global crude oil prices erased earlier losses and hovered near 6-week highs after fresh U.S. strikes on Iran and renewed Israeli threats against Tehran heightened concerns about supply disruptions. Brent crude was trading 1.6% up at $97.17 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was also trading 2.2% higher at $93 per barrel when reports last came in.
2: और सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1.8% बढ़कर 153,941 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 1.8% बढ़कर 232,533 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पुनीत जी, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बार फिर से हमें तेजी दिखाई दे रही है सोने और चांदी में आज।
1: अम्बरीश जी, देखिए, जैसा शेयर मार्केट में तेजी मंदी चल रही है, काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, ऐसे ही करेंसी मार्केट्स में, यील्ड में हम देख रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ सोने चांदी के बाजारों में लग रहा है। काफी वॉलेटाइल है। परसों बाजार काफी जोर के गिरे थे, फिर वहां पर फिर बढ़त आई। ये भी न्यूज ड्रिवन है, सेंटिमेंट ड्रिवन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये माहौल रहेगा। तो पूरा एक वॉलेटिलिटी का माहौल या इनस्टेबिलिटी का माहौल मार्केट्स के अंदर और इकोनॉमी में भी चल रहा है, और उसी का ही रिफ्लेक्शन है। बट देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत मंदी है, वो 1-2% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऐसा ही रहेगा शायद।
0: अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू पुनीत, यू नो द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे वी कैन लाइक वी सॉ दैट every day it's a volatility, but given the fact that we were earlier discussing our foreign exchange reserves are very comfortable, so it's a good news for us given the way the oil prices are moving.
1: So Anubha, oil prices of course are a matter of concern, and it really hurts the Indian economy, no doubt about it. We wish it were lower. However, it is very political right now, right. And I don't think this is going to sustain. So this may be a short-term challenge for us, but longer-term, I think we'll be in a happy place.
2: पुनीत जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अमरीश जी।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices extend losing streak. Sensex falls over 400 points. Nifty settles below 23,900. India and Belgium agree to double the bilateral trade in next 5 years. Also discuss expanding cooperation in areas including semiconductors and critical minerals, among others. And global crude oil

0: prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने और बनाने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, AI आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉक्टर जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

0: श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। यह एकमुश्त निपटान योजना है जिसमें नियोक्ता कम जुर्माना देकर पुराने विवादों का समाधान कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और इसकी अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी ई मार्केटप्लेस और टेक्सटाइल कमेटी ने पुनर्चक्रित और दोबारा इस्तेमाल किए गए कपड़ा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत कपड़ा कचरे, कतरनों और पुराने कपड़ों से बने उत्पादों को सरकारी ई मार्केटप्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट स्पोर्ट्स स्पेशलिटी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि नए भवन से सेवाओं का विस्तार होगा और अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। देशभर में आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium have reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgium counterpart Bart De Wever welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium exchanged several agreements, including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes, including cybercrime and diplomatic training. In his press statement yesterday, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Foreign Secretary Vikram Misri yesterday hosted the Quad Sherpas meeting in New Delhi. In a social media post, the External Affairs Ministry said that the meeting reviewed progress across key pillars including maritime security, economic prosperity, critical and emerging technologies, and humanitarian assistance and disaster relief. During the meeting, the Sherpas welcomed the strong momentum in Quad interactions and practical activities. They also discussed potential new initiatives for announcement at the next Quad Foreign Ministers meeting. The meeting was attended by US Ambassador to Indigo, Sergio Gore, Australian Secretary of the Strategic Planning and Coordination Group in the Department of Foreign Affairs and Trade, Eleanor Jane Lawson, and Japanese Senior Deputy Minister for Foreign Affairs, Hiroyuki Namazu. Government e-marketplace, GEM and Textiles Committee have signed Memorandum of Understanding, MOU, to boost procurement of recycled and upcycled textiles. The initiative will promote recycled and upcycled products made from pre- and post-consumer textile waste, scrap and second-hand clothes through public procurement, creating new market opportunities for enterprises in the circular textile economy. Ministry of Commerce and Industry said that MOU will create a waste-to-value-to-market ecosystem, enabling textile waste, scrap and second-hand clothes to be transformed into quality, value-added products and made available to government buyers through GEM. President Draupadi Murmu has extended greetings to the citizens on the eve of Janmashtami. In her message, the president said that the life and teachings of Lord Krishna breathe a new life into cultural and philosophical heritage of India. Meanwhile, the city of Lord Krishna, Mathura Vrindavan, is decked up for the grand celebration today on the occasion of Janmashtami. According to our correspondent, preparations are in full swing at Mathura Vrindavan ahead of Janmashtami, with over 5 lakh devotees expected to visit the city. In women's cricket, India stormed into the semi-final of the 2020 Asia Cup, defeating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match at Dubai International Stadium in UAE. Chasing 194 for victory, Hong Kong were bundled out for just 56 runs in 16.2 overs. Earlier put into bat, Indian Eves posted 193 for 5 in stipulated 20 overs. Smriti Mandhana shattered multiple world records with a breathtaking 124 of 64 balls. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में पहला गीत फिल्म अमर प्रेम से, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। कहते हैं कि आसमान में टिमटिमाते जो तारे होते हैं उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो भाषा ऐसी होती है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे आसमान में टिमटिमाते तारों को तो आपको ऐसा लगेगा कि वो तारे कोई संदेश लिख रहे हैं। दूर कहीं बादल भी अपनी धीमी कहानी कहता रहता है और तारे लिखते रहते हैं।

हवा के स्पर्श में आज कुछ नया सा एक एहसास है और संगीत के हर सुर में जैसे दिल के पास आने की बात है। रात की ये घड़ी बता रही है कि ये जो पल है, ये पल अपने आप में कितना खास है। ये जो गीत आप सुन रहे हैं, हर अगला गीत ये हमें बताकर जाता है कि आने वाला हर एक पल बहुत खूबसूरत होगा। और अगर हम अपनी दुनिया में कहीं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, बहुत गुम हैं, तो ये वो पहर है जो हमें खुद से मिलने का मौका देती है। तो भूल जाइए उन सारी बातों को कुछ देर के लिए और आइए सुनते हैं एक और गीत, सुंदर सा आप सभी के लिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, आवाज है लता मंगेशकर की।

जब दिन अपने सारे रंग समेटकर दूर चला जाता है, रात का आकाश नई तस्वीर बनाता है। कहीं नींद पलकों पर धीरे धीरे उतरती है, कहीं कोई धुन मन के किसी कोने में ठहरती है। यही वो समय है, ये रात का ये पहर, जब यादें बिना बुलाए चली आती हैं और कुछ पुरानी धुनें चेहरे पर मुस्कान लेकर आती हैं। तो आइए इस पहर को संगीत की नरम रोशनी में सजाएं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम गीत, आवाज है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

दिन का उजाला जैसे जैसे घटते घटते या यूं कहें कि ढलते ढलते रात की ड्योढ़ी पर दस्तक देता है, वैसे ही रात एक अलग कहानी लिखना शुरू कर देती है। रात की स्याही में डूबकर शहर भी अपना नाम लिखना शुरू कर देता है। दिन भर का किस्सा धीरे धीरे मिटने लग जाता है। दुकानों के जो शटर होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। सुनसान से रस्ते और दूर जाती गाड़ी के धुंधले से उजाले। रात के इस पहर की भी अपनी एक तहजीब होती है। हर आवाज यहां कुछ धीमी पर करीब महसूस होती है। और इस नर्म लय में जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं तो हम खुद को भी खुद के थोड़ा और करीब पाते हैं। ऐसी ही कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है दो दिल, आवाज है आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। वित्त मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। श्री सोनोवाल ने कल गुरुग्राम के ऊर्जा और संसाधन संस्थान के ग्वाल पहाड़ी परिसर का दौरा किया और हरित नौवहन से जुड़ी विभिन्न पहलों की समीक्षा की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इससे त्रिपुरा के किसानों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में राजघाट समाधि स्थित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजघाट स्मारक के रखरखाव, साफ सफाई और प्रबंधन की समीक्षा

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में पहला गीत आवाज है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। फिर एक सांझ हमारे हिस्से में आकर धीरे धीरे विदा हो गई। आंखों के भीतर न जाने कितनी ऋतुएं भीगती रहीं, किंतु अधरों ने बस इतना कहा, फिर मिलेंगे। कितना छोटा सा वाक्य था वह, पर उसके भीतर कितनी दूरियों के पार जाने की एक पूरी शक्ति छिपी थी। एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, एक राह ने मुझे मेरी दिशा दे दी, दूसरी ने उसे बुला लिया। नगर अलग थे, आकाश एक था, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली, और उस एक आकाश के नीचे हमने अपने हिस्से की प्रतीक्षा बांट ली।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयति। किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को, किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी। मैं तो अपने ही दिनों की धूल समेटे सामान्य पथ पर चल रही थी। किंतु किसी अदृश्य स्पर्श ने सांसों के निर्जन आंगन में एक ऐसी रचना लिख दी जिसका अर्थ केवल हृदय पढ़ सकता है। न यह आकर्षण था, न किसी अभिलाषा का विस्तार। यह तो मानो बहुत दूर छूट गई अपनी ही किसी पहचान का अचानक लौट आना था। मेरे भीतर कितने ही स्वर वर्षों से बिना उच्चारण के ठहरे थे, वे किसी वाद्य की प्रतीक्षा में नहीं थे, एक सच्ची अनुभूति के प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही तुम्हारे स्मरण की हल्की रेखा मन की धरती पर उतरी, हर निष्प्रभ कोना, अपने आप अर्थ से भर गया, किसने छेड़ा मेरे अंतर के अनलिखे अक्षरों को कि बिना किसी निमंत्रण के भावों की धरती पर मधुर लहरियां उतरने लगी।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है मिस मेरी, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। आपने कभी झमाझम बरसती बारिश को ध्यान से सुना है? बारिश जब होती है ना, तो बिल्कुल वो लाइन जो है सच साबित हो जाती है कि फिराक की बारिश मलाल का मौसम, फिराक की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जनाब, बारिश हर शहर को कमाल कर देती है। बरसते बारिश में कभी अपने शहर को ध्यान से देखिएगा, रात की आवाज बदल जाती है, छज्जे से गिरती धार कोई पुराना सुर छेड़ देती है, भीगी सड़क पर रोशनी की परछाइयां बहती हैं, और बंद कमरों में तो न जाने कितनी स्मृतियां सांस लेने लग जाती हैं। ऐसे मौसम में जब कोई रात में चाय का एक गरम कप पकड़कर साथ बैठ जाए, कोई अपना पसंदीदा गीत सुनने लग जाए, किसी को घर की याद सताने लग जाए और किसी को अपने पुराने शहर लौट जाने का मन करने लग जाए, तो कहते हैं कि दिल उस वक्त अपनी सच्ची कहानी सुना रहा होता है, यानी आपसे खुद की बात कह रहा होता है। बारिश का मौसम शायद इसलिए भी प्यारा है कि यह बिना कुछ कहे बहुत कुछ याद दिला देता है। बूंदों की धुन जो है वो हमारे मन की धुन के साथ कदम मिलाने लग जाती है। बातें और भी हैं बहुत सारी, फिलहाल इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है कामचोर, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत, फिर करेंगे और बहुत सारी बातें। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वक्त आ चला एक बार फिर से आपको याद दिलाने का कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर, आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स के लिए है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। कभी आपने गौर किया है, एक गीत जब खत्म हो जाती है तो उस गीत के खत्म होने के बाद भी उसकी जो धुन है बहुत देर तक भीतर चलती रहती है। कुछ गीत सुनाई नहीं देते, याद रह जाते हैं। उनसे जुड़े चेहरे, रास्ते, मौसम अचानक फिर से आंखों के सामने आने लग जाते हैं। शायद संगीत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो बीते हुए पल को फिर से जीने का एहसास देता है। और ये जो गीत होते हैं ना, जो हम सुनते हैं, अपने कुछ मनपसंद गीतों की लिस्ट बनाकर रखते हैं, ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे हमारे मन के, यादों के दरवाजे भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोलने लग जाते हैं। कोई भी गीत हो, उसकी धुन आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है। और हमारे और आपके धुन के होने का मतलब कि वो गीत जो हमें बहुत पीछे ले जाए, यादों के पुराने मौसम को फिर से दोहराने का मौका दे, ऐसी धुन आपकी भी हो सकती है और हमारी भी हो सकती है। किसी के मुस्कुराहट का कारण हो सकती है, किसी के याद का कारण बन सकती है। तो सुनते हैं एक और गीत और फिर करेंगे ऐसी ही कुछ और बातें। और अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है रेशमा और सेरा।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयदी। और आज सुरमई में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दीवाना, आवाज है कुमार शानू और अलका याग्निक की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, बस अगली सुबह तक का थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, और जो बिगड़ गया उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब इसी वक्त हो जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, कुछ प्यारे गीत सुनिए, आने वाले कल के लिए थोड़ी सी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है, और शायद अगली सुबह की कहानी आज की रात से ही शुरू हो रही हो। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आशा।

रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, रात गहरी है तो क्या दिल में उजाला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए, नींद आए न आए कोई ख्वाब निराला रखिए। अगला गीत फिल्म लगान से, आवाज है उदित नारायण, आशा भोसले और वैशाली की।

रात कहती है कि इस अंधेरी शिशब में रंग भरते जाइए, इस अंधेरी शिशब में रंग भरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखरते जाइए, कोई भूला हुआ नगमा सा बिखरते जाइए। वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद अर्चित होंगे आपके साथ। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है संजोग, आवाज है लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंट्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने और छोटे मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। इसके अलावा श्री गोयल ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर संस्थाएं कारोबार, नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए तकनीक, एआई और नवाचार को अपनाने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 2 और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया है कि गृह मंत्रालय नेपाल में लापता लोगों की पहचान के लिए डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा। देशभर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:10 हो चुके हैं और रोजाना की तरह अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है पर गुजारा हो ही जाता है। 3:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,

मैंने एक ख्वाब सा देखा। अकेली रात बोलती तो बहुत है, अकेली रात बोलती तो बहुत है, लेकिन सुन सिर्फ वही सकता है जो खुद भी अकेला हो। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुमने कुछ ना कहा, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने, तुमने कुछ ना कहा और ना कुछ सुना हमने, इशारों इशारों में ही सारी बात हो गई, वक्त का दोनों को ही पता ना चला, वक्त का दोनों को ही पता ना चला, देखते ही देखते सारी रात हो गई। 3:37 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

जलाकर हसरत की राह पर, जलाकर हसरत की राह पर चिराग आरजू के, हम तन्हा रातों में आज भी सिर्फ तेरे मिलने का इंतजार करते हैं।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, लिखा है तेरी आंखों में। महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, महफिल में कुछ तो सुनाना पड़ता है, गम छुपाकर अक्सर मुस्कुराना पड़ता है। कभी हम भी थे उनके अजीज, कभी हम भी हुआ करते थे उनके अजीज, आजकल उन्हें ये भी याद दिलाना पड़ता है। 3:52 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इनमें रक्षा सहयोग पर, आशय पत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन का संघर्ष समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिनियम खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग की रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उप सचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाजू और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए। बैठक की तैयारियों के सिलसिले में अगली क्वार्ट विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देशभर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श भी जारी किया है। रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में आज सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर और 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। स्मृति मंधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today.

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं फिर से आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। फिर होंगी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ।
1: चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

दिल से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ ज़्यादा।

हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दीजिए, हौसले बुलंद कर अपने रास्तों पर चल दीजिए, आपका मुकाम आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। बढ़कर अकेले आप पहल करके तो देखिए, बढ़कर अकेले आप पहल करके तो देखिए, आपको देखकर काफिला भी खुद ब खुद बन जाएगा। 4:17 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिल ही जाएंगे, ढूंढोगे अगर तो रास्ते मिल ही जाएंगे, मंजिलों की फितरत है वो खुद से चलकर कभी नहीं आती। 4:23 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, कौन पूछता है पिंजरे में बंद पक्षियों को, याद अक्सर वही आते हैं जो उड़ जाते हैं।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला, मंजिलों पर पहुंचने के बाद ही पता चला कि मंजिल से अच्छा तो सफर ही था। 4:41 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

एस टी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

जीवन में सब कुछ हमारा सोच और विश्वास पर ही निर्भर करता है। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा संदेह समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ भी लगा सकता है।

जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है सुबह होने में कितने जमाने लगते हैं।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया।

0: द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल खनिज खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबेहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की उपसचिव एली लॉसन, जापान के विदेश मामलों के वरिष्ठ उपमंत्री हिरोयुकी नमाज़ू और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल हुए। इस दौरान समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। शेरपाओ ने हिंद प्रशांत और वैश्विक स्तर के घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। ये बैठक अगले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में हुई। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी दी और आवश्यक निर्देश दिए। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर यातायात परामर्श जारी किया है। महिला क्रिकेट में भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 16 ओवर 2 गेंद में 56 रन पर ऑल आउट हो गए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. India's first imaging satellite in geosynchronous orbit was successfully launched by a GSLV rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in the wee hours today. After the completion of a smooth 27-hour countdown, the GSLV F-17 rocket with a 2,367 kg payload mass began its ascent on dot at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. The ISRO said the state-of-the-art Earth Observation Spacecraft EOS-05 successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 8

के साथ 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिलें तो खुद की मेहनत से ही मिलती हैं। 5:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

ये दुनिया भी ठीक हमें वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। किसी को यहाँ पर गुलाबों में कांटे दिखाई देते हैं, तो किसी को कांटों में गुलाब।

जीवन में सब कुछ हासिल करना ही सफल जीवन की निशानी नहीं होती है। एक सफल जीवन की परिभाषा ये भी हो सकती है कि आपने पूरा जीवन कितना सुख और शांति के साथ जिया है और जी रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हासिल तो सब कुछ कर लिया है पर फिर भी जीवन में परेशान ही घूम रहे हैं। 5:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।